तीरत नहाया हथी सिर खोहाए ना भद कराया कुचल रह दिन रात शब्द ना पाया तिन जात ना पात ना

मन तन सच्चा सच मन सच्चे सच्ची सोए अंदर सच्ची भगत है सहजे ही पत होए। कलयुग में घोर अंधार है मनमुख राह न कोय से वडभागी नानका जिन गुरमुख प्रगट होए। महला तीजा इंद वरसै कर दया लोका मन उपजै चाऊ जिसकै हुक्म इंद वरसदा तिसकै सद बलिहारै जाऊ। गुरमुख शब्द संभालिय सच्चे के गुण गाऊ नानक नाम रते जन निर्मले सहजे सच समाऊ। पौड़ी पूरा सतगुर सेव पूरा पाया पूरा कर्म त्याए पूरा शब्द मन वसाया पूरा ज्ञान ध्यान मैल चुकाया हर सर तीर्थ जान मनुआ नाया।

खसम मिट्टी फिर पानी अद गुल्ला चिड़ी का चुगन गैन चढ़ी बिल लाई खसम भावे वोहा चंगी जे

शब्द सलाही है अंतर प्रेम प्यार विण प्रीति भगत ना हो गई विण सतगुर ना लगे प्यार तू प्रभ सब तुद सेम दे एक ढादी करे पुकार देह दान संतोखिया सच्चा नाम मिले आधार सलोक महला पहला राती काल कट है दिन काल सिज्जै काया हुए पराल वर्तन वर्त्या सर्ब जंजाल भुलिया चुक गया तपताल अंधा चख चख पया चेर पिछै रोवह लिया वह फेर बिन बूझे किस

रली नानक सच्चे नाम बिन सिर खुर पत पाटी पौड़ी अमृत नाम सदा सुख दाता अंते होए सखाई बाज गुरु जगत।

सच पछाणिए लिखिया पल्ले पाए सो सच जानिए हुक्मी हुए नबेड़ गया जानिए भौजल तारन हार शब्द पछाणिए चोर जार जुआर पीड़े कहानिए निंदक लाए तबार मिले हड़वाणिए गुरमुख सच समाए सो दरगाह जानिए।

तीर्थ का नाव चौधरी कूड़ी पूरे थाव नानक गुरमुख जानिए कल का इहो नियाव महला पहला हरना बाजा तै सिकदारा इना पढ़िया नाव फांदी लगी जात पहाइन अग्गे नाही थाव सो पढ़िया सो पंडित बीना जिन्नी कमाना नाव पहलो दे जड़ अंदर जमे ता उपर होए शाव राजे सिंह मुकदम कुत्ते जाए जगायन बैठे सुते चाकर नहिंदा पायन कहाऊ रात पित कुत्ते हो।

बिन भरम ना कटिए नाम ना लगे प्यार सतगुर ते पौ उपजे पाइए मूख द्वार पै ते सहज पाइए मिल ज्योति ज्योत अपार पै ते पै जल लंघिए गुरमति विचार पै ते निरपो पाइए जिस

हुए पकड़ पिटे अंड चुपै चंगा नानका विण नावै मोहे गंध महला पहला राजमाल रूप।

पियो तिन क्या खुशियां क्या पीड़, धरती पाताली आकाशी एक दर रहन वजीर, एक ना बड़ी यार जा एक मर होहे जहीर, एक देखा हिन खुटे नाही एक सदा फिर है फकीर, हुक्मी साजे हुक्मी ताहे एक चसे महलाख, सब को नथे नथिया बख्शे तूड़े नाथ, वरना चेहना बाहरा लेखे बाज अलख, क्यों कथिया क्यों आखिए जापै सचो सच, करना कथना कार सब नानक आप अकथ, अकथ की कथा सुने रिद बुद्ध सिद्ध ज्ञान, सदा सुख होए महला पहला।

और बुद्धि मिथ्या बिन सच्चे व्यापार जन्म व्यर्थया अंत ना पारावार ना किन्ही पाया सब जग गर्भ गवार तिन सच ना पाया चले नाम वसार तावन तत्या।

अनक माध कपाह तोय हो त्रिभवन गन्ना तुआ आख हो बो बिदह छा तुए बहुत बेकारा ए तेरा सुछोड़ हो।

लाभ खाम पूजै हिकमत खुदाया मानतवाना तू कुदरती आया सग नानक दे बान मस्ताना नित चढ़ै सवाया आतस दुनिया

तुद बिन दूजा को नहीं, तू रहे आसमाई, तेरी गत मित तू है जानदा, तुद कीमत पाई, तू अलख अगोचर अगम है, गुरमत देखाई, अंतर अज्ञान दुख भरम है, गुर ज्ञान गवाई, जिस कृपा करह तिस मेल लह, सो नाम ते आई, तू करता पुरख अगम है, रविया सब ठाई, जित तू लाए सचिया तित को लगे, नानक गुण गाई शुद्ध।

जाचै भस्मति सुऐसा राजा त्रिभुवनपति जाचै कारे कूर्मा पाल सहस्रफनी बासक सेज वालुआ अठारह भार बनास्पति मालनी सिनवै करोड़ी मेघ माला पानी हारिया नख परसेव जाचै सुरसरी सप्त समुंद जाचै घड़खली एते जी जाचै वर्तनी सो ऐसा राजा त्रिभुवन धनी जाचै कर निकट वर्ती अर्जुन ध्रुव प्रहलाद अम्बरीक नारद निजै सिद्ध बुद्ध गण गंधर्व बान वहेला एते जी जाचै है करी सर्व व्यापक अंत।

तास पत तास सम तुल नहीं आन को एक ही एक अनेक होए बिस्तरयो आन रे आन भरपूर सो रहाओ जाकै भागवत लिखी है अवर नहीं पेखी है तास की जात अशोक।

जप मन राम नाम परगास, हर के संत मिल प्रीत लगानी, विचे ग्रह उदास रहाओ, हम हर हृदय जपयो नाम नर हर, प्रभु कृपा करी कृपास, अन दिन आनंद भया मन बिगसिया, उदम भय मिलन की आस, हम हर स्वामी प्रीत लगाई, जितने सास लिए हम ग्रास, किल बिख दहन भय खिन अंतर, टूट गए माया के फास, क्या हम किर्म क्या कर्म कमाव है, मूर्ख मुग्ध रखे प्रवतास, अवगने आरे पाथर पहारे, सत संगत मिल तरे तरास, जेती सृष्ट करी जगदीशर, ते सब ऊच हम नीच बिख्यास, हमरे अवगुण संग गुर मेटे, जन नानक मेल लिए प्रभ पास, कानड़ा महला चौथा, मेरा मन राम नाम जपियो गुरवाक, हर हर कृपा करी जगदीशर, दुर्मत दूजा पाओ गयो सब चाक रहाओ, नाना रूप रंग हर केरे, कट कट राम रवियो गुपलाक, हर के संत मिले हर प्रगटे, उगर गए बिख्या के ताक, संत जना की बहुत बहु शोभा, जिन उर तारियो हर रस कर साक, हर के संत मिले हर मिलिया, जैसे गऊ देख बछराक, हर के संत जना मह हर हर, ते जने उत्तम जनक जनाक, तिन हर हृदय बास बसानी, छूट गई मुश्की मुश्काक, तुमरे जन तुम ही प्रभ किए, हर राख ले हो आपन अपनाक, जन नानक के सखा हर पाई, मात पिता बंदप हर साक, कानड़ा महला चौथा, मेरे मन हर हर राम नाम जप कीत, हर हर वस्त माया गढ़ वेड़ी, गुर कै शब्द लियो गढ़ जीत रहाओ, मिथ्या भरम भरम बहु भ्रमिया, लुबदो पुत्र कलत्र मोह प्रीत, जैसे तरवर की तुष छाया, किन

परे बिख बिखिया सतगुर काढ लिए देहाथ रहाउ स्वामी अपै निरंजन नर हर तुम राख ले हो हम पापी पात काम क्रोध बिखिया लोभ लुभते काष्ट लोहो तरे संग साथ तुम वड पुरख वड अगम अगोचर।

राम तेहाय सत संगत मिल साधु पाथ हर हर कथा सुनी मिल संगत हर हर जपेओ अकथ कथ काथ हमरे प्रभ जगदीश गुसाई हम राख लेहो जगन्नाथ जन नानक दास दास दासन को प्रभ करहु कृपा राखो जन साथ कानड़ा महला चौथा पड़ताल कर पंजवा।

कानड़ा महला चौथा पाज रामो मन राम जिस रूप नारेख वडाम सत संगत मिल पाज राम बड़ हो भाग मथाम रहाउ जित ग्रह मंदर हर होत जास तित कर।

कुल सगल तराधु कानड़ा महला चौथा। हर जस गावो भगवान जस गावत पाप नहान, मत गुरमत सुन जस कान हर हो किरपान रहाओ। तेरे जन त्याव है एक मन एक चित, ते साधु सुख पाव है जप हर हर नाम निदान। उस्तत करह प्रभ तेरिया मिल साधु साध जना, गुर सत गुरु भगवान जिनकै हृदय तू स्वामी। ते सुख फल पाव है ते तरे भव सिंध, ते भगत हर जान तिन सेवा हम लाए हरे हम लाए हरे। जन नानक के हर तू तू तू तू तू भगवान। कानड़ा महला पंजवा घर दूजा एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद। गाइया गुण गोपाल कृपा निध, दुख बदारन सुख दाते सतगुर। जां को भेटत होए सगल सिद्ध रहाओ, सिमरत नाम मन साधारै वोट पराधी खिन महतारै। जा को चीत आवै गुर अपना, ता को दुख नहीं तिल सुपना। जा को सतगुर अपना राखै, सो जन हर रस रसना चाखै। कहो नानक गुर कीनी मया, हलत पलत मुख उजल भया। कानड़ा महला पंजवां अराधो तुझै स्वामी अपने। उठत बैठत सोवत जागत सास सास सास।

रसना अनकबार कर बंदन संतन ऊहा चरण गोविंद जी के बस न रहाओ अनक भांत कर द्वार न पावो होए कृपाल ता हर हर त्यागो कोट कर्म कर दे न सोदा साध संगत मेहमान प्रबोधा त्रिशन्ना बूजी बहु रंग माया नाम लैत सर्व सुख पाया पार ब्रह्म जब पाया।

तैल संतन की संग साधु का हर नामा जप परम गते रहाओ पूजा चरना ठाकुर सरना सोई कुशल जो प्रभ जियो करना सफल होत ए दुर्लभ देही जां कौ सतगुर मया करे ही अज्ञान भरम बिनसै दुख डेरा जां कै हृदय बसह गुर पैरा साध संग रंग प्रभ त्याया कहु नानक तिन पूरा पाया कानड़ा महला पंजवा भगत भगतन हूं बन आई तन मन गलत भये ठाकुर सिओ।

तेरो जन हर जस सुनत उमाहयो रहाओ मनह प्रगास पेख प्रभ की शोभा जत कत पेखो आहयो सब ते परे परे ते उच्चा गहर गंभीर अथाहयो ओत पोत मिलियो भगतन को जन स्यो परदा लाहयो गुर प्रसाद गावे गुण नानक सहज समाध समाहयो कानड़ा महला पंजवा संतन पह आप उदाहरण आयो रहाओ दर्शन भेट होत पुनीता हर हर मंत्र दृढ़ायो काटे रोग पय मन निर्मल हर हर औखद खायो आस्थित पय बसे सुख थाना बहुर न कतहू तहायो संत प्रसाद तरे कुल लोगा नानक लिपत नाम आयो कानड़ा महला पंजवा बिसर गई सब तात पराई जब ते साथ संगत मोहे पाई रहाओ ना को बैरी नहीं बिगाना सगल संग हम को बन आई जो प्रभु कीनो सो भल मान्यो एह समत साधु ते पाई सब मह रव रहया प्रभ एक है पेख पेख नानक बिगसाई कानड़ा महला पंजवा ठाकुर जियो तुहारो परना मान महत तुम्हारे ऊपर तुमरी ओट तुम्हारी सरना रहाओ तुमरी आस भरोसा तुमरा तुमरा नाम हृदय लै धरना तुमरो बल तुम संग सुहेले।

भोजन तरना अपैदान नाम हर पायो सिर डारियो नानक संत चरना कानड़ा मोहल्ला पंजवा साध सरन चरण चित लाया सुपन की बात सुनी पेखी सुपना नाम मंत्र सतगुरु दरडाया रहाओ नह त्रिपतानो राज जोबन धन बहुर बहुर फिर ताया सुख पाया तृष्णा सब बुझी है शांत पाई गुण गाया।

जिसमाया कानड़ा महला पंजवा हर के चरण हृदय गाए शीतला सुख शांत मूरत सिमर सिमर नित त्याए रहाओ सगल आस होत पूरन कोट जन्म दुख

आन दा सुख सहज मूरत तिस आन नाही भांत सिमरत एक बार हर हर मिट कोट कसमल जात गुण रमंत दुख नास है रिद पयंत शांत अमृता रस पियो रसना नानक।

सब भला ही है रे, हार नहीं सब जीतै, सोग नाही सदा हर की है रे, छोड़ नाही किस लेतै, कहो नानक जन हर हर हर है, कत आवै कत रमतै, कानड़ा महला पंजवां, कि एको प्रीतम बिसर ना जाए, तन मन गलत भये तिह संगे, मोहनी मोहे रही मोरी माए रहाउ, जय जय पै कहो बिरथा हो अपनी, तेऊ तेऊ गहे रहे अटकाए, अनक भांत की एकै जाली, ताकि गंठ नहीं शोराए, फिरत फिरत नानक दास आयो।

लपटायु कछु नहीं नाही कछ फेरो आगे दृष्टि आवत सब परगट हीहा मोहयो परम अंधेरो अटक्यो सुत बनता संग माया देव नहार दा तार बसेरो कहो नानक एकै पार उसो बंधन काटन हार गुर मेरो कानड़ा महला पंजवा बिखै दल संतन तुमरे गाहियो तुमरी टेक भरोसा ठाकुर शरण तुम्हारी आयो रहाओ जन्म जन्म के महापराशत दर्शन भेट मटाहो भयो प्रगास आनंद उजियारा सहज समाध समाहो कौन कह तुम ते कश नाही तुम समरथ अथाहो कृपा निधान रंग रूप रस नाम नानक लै लाहो कानड़ा महला पंजवा बूढ़त प्राणी हर जप धीरै बिनसै मोह भरम दुख पीरै रहाओ सिमरो दिन रैन गुर के चरना जत कत पेखो तुमरी सरना संत प्रसाद हर के गुण गाया गुर भेटत नानक सुख पाया कानड़ा महला पंजवा सिमरत नाम मन है सुख पाईऐ साध जना मिल हर जस गाईऐ रहाओ कर कृपा प्रभु हृदय बसेरो चरण संतन कै माथा मेरो पार ब्रह्म कौ सिमरहो मना गुरमुख नानक हर जस सुना कानड़ा महला पंजवा मेरे मन प्रीत चरण प्रभ परसन रसना हर हर भोजन तृप्तानी अखियन कौ संतोख प्रभ दर्शन रहाओ करनन पूर रहो जस प्रीतम कल मल दोख सगल मल हरसन पावन धावन स्वामी सुख पंथा अंग संग काया संत सरसन शरण गही पूर्ण अबनासी आन अपाव थकत नहीं करसन कर गह लिए नानक जने अपने अंध घोर सागर नहीं मरसन कानड़ा महला पंजवा कोहकत कपट खपट खल गरजत मरजत मीच अनक बरिया रहाओ अहं मत अनरत कुमित हित प्रीतम पेखत भ्रमत लाख गरिया अनित व्यवहार अचार बिदहीनत मम मत मात कोप जरिया करुण कृपाल गोपाल दीन बंद नानक उधर सरन परिया कानड़ा महला पंजवा जी प्राण मान दाता हर बिसरते ही हान रहाउ गोविंद त्याग आन लाग है अमृतो डार भूम पाग है दिखे रस स्यो असक्त मूडे काहे सुख मान काम क्रोध लोभ व्याप्यो।

अरबिंद खोजत खोजत रतन पायो बिसरी सब चिंद रहाउ चरण कमल हृदय धार उतरिया दुख मंद राज धन परवार मेरा सर्ब सो गोविंद साध संगम लाभ पायो नानक फिर ना मरंद कानड़ा महला पंजवां घर पंजवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद प्रभ पूजो नाम अराद गुर सतगुर चरणी लाग हर पाव हो मन आगाद जग जीतो हो गुर कृपाद रहाउ अनक पूजा मैं बहु विद खोजी सा पूजा जे हर पवास माटी की एह पुत्री जोरी क्या एह कर्म कमास प्रभ बहां पकर जिस मार्ग पावहु सो तुद जंत मलास अवर ओट मैं कोई ना सूजै एक हर की ओट मैं आस क्या दीन करे अरदास जो सब घट प्रभु निवास प्रभ चरणन की मन प्यास जन नानक दास कहियत है तुमरा हौं बल बल सद बल जास।

गुरप्रसाद। जगत उदाहरण नाम प्रिय तेरै, नवनिध नाम निधान हर केरै, हर रंग रंग रंग अनुपेरै, काहे रे मन मोहि मगनेरै, नैनो देख साध दर्शेरै।

दर्शन प्यास बहुत मन मेरा, मिल नानक देव जगत गुर केरा, कानला महला पंजवा, ऐसी कौन विदे दर्शन परसना रहाऊ, आस प्यास सफल मूरत उमंग ही ओ तरसना।

ईत हस्त पूर्ण सब संगा रहाव वर्त नेम तीर्थ सहत गंगा जल हेवत भूख अरनंगा पूजा चार करत मेलंगा चक्कर कर्म तिलक खाटंगा दर्शन भेटे बिन सतसंगा हठन ग्रह अत रहत बटंगा हौ रोग व्यापै चुकै ना पंगा काम क्रोध अत त्रिशन जरंगा सो मुक्त नानक जिस सतगुर चंगा कानड़ा महला पंजवां कर सतवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद देख बूझ गई गई मिल साध जना पंच भागे चोर।

मना हर जाप, जो संत वेद कहत पंथ गाखरु, मोह मगन अहंताप रहाउ, जो राते माते संग बपरी माया, मोह संताप, नाम जपत सो जन उदरह, जिसह उदार हो आप, बिन सजाए मोह पै परमा, नानक संत प्रताप, कानड़ा महला पंजवां कर दसवां, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, ऐसो दान देहो जी संतो, जाप जियो बलिहार, मान मोही पंच दोही, उर्ज निकट बसेओ, ताकि सरन साधुआ दूत संग निवार, रहाओ कोट जन्म जोन भ्रम्यो, हार परयो द्वार, कृपा गोविंद पई, मिलियो नाम आधार, दलभ जन्म सफल नानक, पाव उतार पार, कानड़ा महला पंजवा घर ग्यारवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सहज सुपाहे अपने आए, कछु न जाने।

जाए कर है बसाए गुण ननान प्रगट्यो एह चोले चरण लुभाए आनत जाए थान थनाए सर्व समाए रसक रसक नानक गुण बोले कानड़ा महला पंजवां गोविंद ठाकुर मिलन दुराई परमत रूप अगम अगोचर रहियो सर्व समाई रहाउ कहन भवन नाही पायो पायो अनक उकत चतराई जतन जतन अनक उपावरे तौ मिलियो जो कृपाई प्रभु दयार कृपार कृपा निद जन नानक संतरे नाई।

अरबिंद सासन निस भोर रहाओ लाए प्रीत कीन आपन टूटत नहीं जोर प्राण मन धन सर्ब सु हर गुण निजे सुख मोर ईत ऊत राम पूरन निरखत रिद खोर संत सरन तरन नानक बिन से ओ दुख कोर कानड़ा।

तान मांगौ तन लक्ष्मी सुत दे मुकत जुगत भुगत पूरन परमानंद परम निदान पै पाए भगत निहाल नानक।

मृत निकट निकट सदा ही हर हरे हरे पाज कहत नानक सुनो रे मूड़ बिन भजन भजन भजन अहला जन्म गई कानड़ा अष्टपदिया महला चौथा कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद जप मन राम नाम सुख पावै गो ज्यो ज्यो जपै तिवै सुख पावै सतगुर सेव समावै गो रहाउ भगत जना की खिन खिन लोचा नाम जपत सुख पावै गो अनरस साध गए सब नीकर बिन नावै किस ना सखावै गु गुरमत हर हर मीठा लागा गुर मीठे बचन कढावै गु सतगुर बाणी पुरख पुरखोतम बाणी स्यों चित लावै गु गुरबाणी सुनत मेरा मन द्रव्या मन भीना निज कर आवै गु तह अनहत धुनी बाजह नित बाजी नीच हर धार चवावै गु राम नाम एक तिल तिल गावै मन गुरमत नाम समावै गु नाम सुनै नामो मन पावै नामे ही तृप्तावै गु कनक कनक पहरे बहु कंगना कापर पांत बनावै गु नाम बिना सब फीक फिकाने जन्म मरै फिर आवै गु माया पटल पटल है भारी कर घूमन घेर कलावै गु पाप बकार मनूर सब भारी दिख दुत्तर तरियो ना जावै गु भौ बैराग भया है बोहित गुर खेवट शब्द तरावै गु राम नाम हर भेटी है हर रामै नाम समावै गु अज्ञान लाए सवालिया।

हर हर नाम तुरावे गु जो जो जपै सोई गत पावे ज्यो ध्रुव प्रहलाद समावे गु रहाउ कृपा कृपा कृपा कर हर जियो कर कृपा नाम लगावे गु कर कृपा सतगुरु मलावहु मिल सतगुरु नाम त्यावे गु जन्म जन्म की हम मल लागी मिल संगत मल लह जावे गु ज्यो लोहा तरियो संग कास्ट लग शब्द गुरु हर पावे गु संगत संत मिल हो सत संगत मिल संगत हर रस आवे गु बिन संगत कर्म करे अभमानी कड पानी कीकड़ पावे गु भगत जना के हर रखवारी जन हर रस मीठ लगावे गु खिन खिन नाम दे वडियाई सतगुर उपदेश समावे गु भगत जना को सदा निव रही है जन निवह ता फल गुण पावे गु जो निंदा दुष्ट करह भगता की हरनाक्ष ज्यो पच जावे गु ब्रह्म कमल पुत मीन ब्यासा तप तापन पूज करावे गु जो जो भगत होए सो पूजो हो परमन परम चुकावे गु जात निजात देख मत परम हो सुख जनक पगी लग त्यावे गु जूठन जूठ पई सिर ऊपर खिन मनुआ तिल ना डलावे गु जनक जनक बैठे सिंघासन नौ मुनि धूर लै लावे गु नानक कृपा कृपा कर ठाकुर मैं दासन दास करावे गु कानड़ा महला चौथा मन गुरमत रस गुण गावे गु जिहवा एक होए लख कोटि कोट त्यावे गु रहाउ सहस फनी जप्यो सेख नागे हर जपत्या अंत न पावे गु तू अथाह अत अगम अगम है मत गुरमत मन ठहरावे गु जिन तू जप्यो तेई जन नीके हर जपत्या कौ सुख पावे गु बिदरदासी सुत छोक शोहरा कृष्ण अंक गल लावे गु जल ते ओपत पई है कासत कासत अंग तरावे गु राम जना हर आप सुवारी अपना बिरद रखावे गु हम पाथर लोहो लोहो बड पाथर गुर संगत नाव तरावे गु ज्यो सत संगत तरयो जुलाहो संत जना मन पावे गु खरे खरोए बैठत उठत मार्ग पंथ त्यावे गु सतगुर बचन बचन है सतगुर पाधर मुक्त जनावे गु सासन सास सास बल पाई है निह सासन नाम त्यावे गु गुर प्रसादी हम मैं बूझे तौ गुरमत नाम समावे गु सतगुर दाता जी जीअन को भागहीन नहीं पावे गु फिर एह वेला हाथ न आवे पर तापै पछतावे गु जे को भला लोड़ै भले अपना गुरु आगै टह टह पावे गु नानक दया दया कर ठाकुर

दुख पावे गो अनेक जन्म बिछड़े मेरे प्रीतम कर कृपा गुरु मलावे गो सतगुर मिलत महा सुख पाया मत मलीन बिगसावे गो हर हर कृपा करो जग जीवन मैं श्रद्धा नाम लगावे गो नानक गुरु गुरु है।

लै खर्च चले पत पावै गू, खाए खर्च देवै बहुतेरा, हर दिन दे तोट ना आवै गू। राम नाम धन है हृदय अंतर, धन गुरु।

सतगुर सरन त्यावै गु लोहा हिरन हुवै संग पारस गुण पारस को हुए आवै गु रहाउ। सतगुर महापुरख है पारस जो लागै सो फल पावै गु ज्यों गुर उपदेश तरे प्रहलादा गुर सेवक पैज रखावै गु। सतगुर बचन बचन है नीको गुर बचनी अमृत पावै गु ज्यों अमरीक अमरा पद पाई सतगुर मुख बचन त्यावै गु। सतगुर सरन सरन मन पाई सुधा सुधा कर त्यावै गु दयाल दीन भए है सतगुर हर मार्ग पंथ दिखावै गु। सतगुर सरन पए से थापे तिन राखन को प्रभ आवै गु जे को सर समदै जन ऊपर फिर उल्टो तिसै लगावै गु। हर हर हर हर हर सर सेवह तिन दरगाह मान दवावै गु। गुरमत गुरमत गुरमत त्यावह हर गल मेल मेल मलावै गु। गुरमुख नाद वेद है गुरमुख गुर परचै नाम त्यावै गु। हर हर रूपो होवै हर जन को पूज करावै गु। साकत नर सतगुर नहीं पिया ते बेमुख हर परमावै गु। लोभ लहर सुवान की संगत भिख माया करंग लगावै गु। राम नाम सब जग का तारक लग संगत नाम त्यावै गु। नानक राख राख प्रभ मेरे सत संगत राख।

आए, जतन माया के काम न आए, राम ते आए सब फल पाए, तन तन ते बड़ भागिया, सतसंग जागे नाम लागे, एक स्यों लिव लागिया, तज मान मोह बेकार साधु, लग तरहु तिन कै पाए, बिनवंत नानक शरण स्वामी, बड़ भाग दर्शन पाए, मिल साधु नित भजै नारायण, रसक रसक स्वामी गुण गायन, गुण गाए जीवह हर अम्यो पीवह, जन्म मरना भागे, सतसंग पाइय हर त्याइय, बहुड़ दुख ना लागे, कर दया दाते पुरख बधाते, संत सेव कमायन, बिनवंत नानक जन तूर बांछ, हर दर्श सहज समायन, सगले जंत भजो गोपाल, जप तप संयम पूरन काल, नित भजो स्वामी अंतर जामी, सफल जन्म सुबाया, गोविंद गाइय नित त्याइय, प्रवान सोई आया, जप ताप संयम हर हर निरंजन, गोविंद धन संग चाल, बिनवंत नानक कर दया दीजै, हर रत्न बांधो पाल, मंगल चार चोज अनंदा, कर कृपा मिले परमानंदा, प्रभ मिले स्वामी सुखा गामी।

हर करहो कृपा जग जीवना, गुर सत गुर मेल दयाल, गुर सेवा हर हम पाईया, हर हुआ हर कृपाल, सब आसा मनसा विसरी, मन चूका आल जंजाल, गुर तुठे नाम दरडाया, हम किए शब्द निहाल, जन नानक अतुट धन पाया, हर नामा हर धन माल पौड़ी, हर तुम वड वड्डे वड्डे वड ऊचे, सब ऊपर वड्डे वडौना, जो त्यावे है हर अपरंपर हर हर, हर त्याए हरे ते होना, जो गावे है सुने है तेरा जस स्वामी, तिन काटे पाप कटोना, तुम जैसे हर पुरख जाने मत गुरमत, मुख वड वड भाग वडोना, सब त्याव हो आद सते, जुगाद सते, प्रतख सते।

सतगुरु जिनको तुर मस्तक लेखिया हर अगम त्याया गुरमति तिस रूप नहीं प्रभ रेखिया गुरबचन त्याया जिन्ना अगम हर ते ठाकुर सेव करल एकिया सब कहो मुखो नर नर हरे नर नर हरे नर नर हरे हर लाहा हर भगत सेखिया। श्लोक महला चौथा राम नाम रम रव रहे रम रामो राम रमीत कट कट।

नाम उपजे तृष्णा भुख सब जाय, नानक नामे रतिया नामो पल्ले पाई पौड़ी। तुद आपे जगत पाए कै, तुद आपे वसगत कीता, एक मनमुख कर हरायन, एक ना मेल गुरु तिना जीता। हर उत्तम हर प्रभ नाम है, गुरबचन सुभागै लीता। दुख दालद सबो लह गया, जा नाउ गुरु हर दीता। सब सेव हो मोहनो मन मोहनो जग मोहनो, जिन जगत अपाए सबो वस कीता। श्लोक महला चौथा। मन अंतर हो मै रोग है, भ्रम भूले मनमुख दुर्जना। नानक रोग बंजाए मिल सतगुर साधु सज्जना। महला चौथा। मन तन ताम संघार।

तारी तुमरे तू बड़ पुरख पिता मेरा माया रहाऊ हर के नाम असंख अगम है अगम अगम हर राया गुणी ज्ञानी सुरत बहु कीनी एक तिल नहीं कीमत पाया गोविंद गुण गोविंद सद गाव है गुण गोविंद अंत ना पाया तू अमित अतोल अपरंपर स्वामी बहु जपिया थाहा ना पाया पुस्तत कर है तुमरी जन माधो गुण गाव है हर राया तुम जल निद हम मीने तुमरे तेरा अंत ना कतहूं पाया जन को कृपा करहो मधुसूदन हर देव हो नाम जपाया मैं मूर्ख अंधले नाम टेक है जन नानक गुरमुख पाया कल्याण महला चौथा हर जन गुण गावत हसिया हर हर भगत बनी मत गुरमत तुर मस्तक प्रभ लिखिया रहाउ गुर के पग सिमरों दिन राती मन हर हर हर बसिया हर हर हर कीरत जग सारी कस चंदन जस कसिया हर जन हर हर हर लिव लाई सब साकत खोज पया जो किरत संजोग चल्यो नर निंदक पग नागन शोहे जलिया जन के तुम हर राखे स्वामी तुम जुग जुग जन रखिया कहा पया दैत करी बखीली सब कर कर झर परिया जेते जी जंत प्रभ किए सब काले मुख ग्रसिया हर जन हर हर हर प्रभ राखी जन नानक सरन पया कल्याण महला चौथा मेरे मन जप जप जगन्नाथे गुरुपदेश हर नाम ते आयु सब किल बिख दुख लाथे रहाउ रसना एक जस गाए ना साकै बहु कीजै बहु रसनथे बार बार खिल पल सब गाव है गुण कह ना सकै प्रभ तुमन्थे हम बहु प्रीत लगी प्रभ स्वामी।

या की भगत मेरा प्रभ मान हर के चोज वडान देख जान जो खोटा खरा एक निमख पछान ताते जान को आनंद भया है।

आस प्रभ मोहे कब गल लावहंगे रहाउ हम बारिक मुग्ध इयान पिता समझावहंगे सुत खिन खिन भूल बिगार जगत पित पावहंगे जो हर स्वामी तुम देहो सोई हम पावहंगे मोहे दूजी नाही ठौर जिस पह हम जावहंगे जो हर पावह भगत

आप लिव लावेंगी जन नानक सरन द्वार, हर लाज रखावेंगी छका एक कल्याण को पाली महा।

दर्श रे परस परस गुण गाई है, नानक तात तात स्यों मिली है, हीरे हीर बेधाई है, कल्याण महला पंजवा मेरे लालन की शोभा।

वेद कथत सुनत मुन जना मिल संत मंडली रहाउ ज्ञान ध्यान मान दान मन रसक रसन नाम जपत तह पाप खंडली जोग जुगत ज्ञान भुगत सुरत शब्द तत बेते जप तप अखंडली ओत पोत मिल जोत नानक कछु दुख ना डंडली कल्याण महला पंजवा कौन बिद ता की कहां करूं धरत ध्यान ज्ञान शस्त्र गया अजर पद कैसे जरूं रहाउ बिशन महेश सिद्ध मुन इंद्रा कै दर सरन परूं काहू पहराज काहू पह सुरगा कोट मदे मुक्त कहूं कहो नानक नाम रस पाई साधु चरण गहूं कल्याण महला पंजवा प्राण पत दयाल पुरख प्रभ सखे गर्भ जून कल काल जाल दुख बनासन।

मन तन जापिया भगवान गुरपूरे सो प्रसन्न भय सदा सुख कल्याण रहाउ सर्व कार्य सिद्ध भय गाए गुण गोपाल मिल साध संगत प्रभु सिमरे नाठिया दुख काल कर कृपा प्रभ मेरिया करो दिन रहन सेव नानक दास शरणागति हर पुरख।

जुगत अनक सुख, हर भगत लवै ना लावनो, प्रव दर्श लुभद दास नानक, बहुड़ जोन ना धामनो। कल्याण महला चौथा अष्टपदिया, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, रामा राम रामो सुन मन भीजै, हर हर नाम अमृत रस मीठा, गुरमत सहजे पीजै रहाउ, काष्ट मह ज्यो है बै संतर, मत संयम काढ़ कढ़ीजै, राम नाम है जोत सबाई, तत गुरमत काढ़ लीजै, नौ दरवाज नवे दर फीके, रस अमृत दसवें चुईजै, किरपा किरपा किरपा कर प्यारे, गुर शब्दी हर रस पीजै, काया नगर नगर है नीको, विच सौदा हर रस कीजै, रतन लाल अमोल अमोलक, सतगुर सेवा लीजै, सतगुर अगम अगम है ठाकुर।

लाल लाल है रंगन, मन रंगन कौ गुर दीजै। राम राम राम रंग राते, रस रसक घटक नित पीजै। वसुधा सप्त दीप है सागर, कड कंचन काड तरीजै। मेरे ठाकुर के जन इन्हो ना बांछ है, हर मांग है हर रस दीजै। साकत नर प्राणी सद भूखे, नित भूखन भूख करीजै। तावत ताए तावह प्रीत माया, लख कोसन को बिथ दीजै। हर हर हर हर हर जन उत्तम, क्या उपमा तिन दीजै। राम नाम तुल और ना उपमा, जन नानक कृपा करीजै। कल्याण महला चौथा, राम गुर पारस परस करीजै। हम निर्गुणी मनूर अत फीके, मिल सतगुर पारस की जय रहाओ। सुर्ग मुक्त बैकुंठ सब बांछ है, नित आसा आस करीजै। हर दर्शन के जन मुक्त ना मांग है, मिल दर्शन तृप्त मन तीजै। माया मोह सबल है भारी, मोह कालख दाग लगीजै। मेरे ठाकुर के जन अलिपत है मुक्ते, ज्यो मरगाई पंक ना पीजै। चंदन वास पोयंगम वेड़ी, किव मिलिए चंदन लीजै। काड खड़ग गुर ज्ञान करारा, बिख छेद छेद रस पीजै। आन आन समदा बहु कीनी, पल बै संतर पसम करीजै। महा उगर पाप साकत नर कीने, मिल साधु लूकी दीजै। साधु साध साध जननी के, जिन अंतर नाम तरीजै। परस न परस भय साधु जन, जन हर भगवान दिखीजै। साकत सूत बहु गुर जी भरिया, क्यों करतान तनीजै। तंत सूत किस निकसै नाही, साकत संग ना कीजै। सतगुर साध संगत है नीकी, मिल संगत राम रवीजै। अंतर रतन जवे हर मानक, गुर किरपा ते लीजै। मेरा ठाकुर वड्डा वड्डा है।

साध जननी के मिल साधु हर रंग की जय रहाओ। जी जंत सब जग है जेता मन डोलत डोल करी जय। कृपा कृपा कर साध मलाव हो जग थमन को थम दीजै। बसदा तलै तलै सब ऊपर मिल साधु चरण रलीजै। अति उत्तम अत उत्तम हो वो सब सिष्ट चरण तल दीजै। गुरमुख जोत भली सिवनी की आन पानी सकत परीजै। मैन दंत निक

बास बसीजै निर्मल निर्मल कर्म बहु कीने नित साखा हरी जड़ीजै धर्म फुल फल गुर ज्ञान दृढ़ाया बहकार बास जग दीजै एक जोत एको मन वसिया सब ब्रह्म दृष्ट एक कीजै आत्म राम सब एक है पसरे सब चरण तले सिर दीजै नाम बिना नकटे नर देखो तिन कस कस नाक वडीजै साकत नार अहंकारी कही है बिन नावे त्रिग जीवीजै जब लग सास सास मन अंतर तत बेगल सरन परीजै नानक कृपा कृपा कर धारो मैं साधु चरण पखीजै कल्याण महला चौथा रामा मैं साधु चरण तवीजै तिल बिख दहन होहे खिन अंतर मेरे ठाकुर कृपा कीजै रहाउ मंगत जन दीन खरे दर ठाढे अत तरसन को दान दीजै त्राहे त्राहे सरन प्रभ आए मोको गुरमत नाम दृढ़ीजै काम क्रोध नगर मह सबला नित उठ उठ जूज करीजै अंगीकार करहु रख लेवहु गुर पूरा काड कढ़ीजै अंतर अग्न सबल अत बिखिया हिव शीतल शब्द गुर दीजै तन मन शांत हुए अधिकाई रोग काटै सूख सवीजै ज्यो सूरज किरन रविया सरबठाई सब घट घट राम रवीजै साधु साध मिले रस पावै तत निज घर बैठिया पीजै जन को प्रीत लगी गुर सेती ज्यो चकवी देख सूरीजै निरखत निरखत रैन सब निरखी मुख काढ़ै अमृत पीजै साकत सुहान कहिया बहु लोभी बहु दुर्मत मैल परीजै आपन सवाए करह बहु बाता तिना का वसाहु क्या कीजै साधु साध सरन मिल संगत जित हर रस काढ़ कढ़ीजै पर उपकार बोलह बहु गुणिया मुख संत भगत हर दीजै तू अगम दयाल दया पत दाता सब दया धार रख लीजै सर्ब जी जग जीवन एको नानक प्रतपाल करीजै कल्याण महला चौथा रामा हम दासन दास करीजै जब लग सास होए मन अंदर।

जाय। प्रभाती महला पहला तेरा नाम रखन कर्म चानन सुरत तिथै लोए अंधेरे अंधी वापरै सगल लीजै खोए। इहो संसार सगल बेकार तेरा नाम दारू अवर नासत करन हार अपार रहाओ। पताल पुरियां एक पार हो वह लाख करोड़।

प्रभाती महला पहला जय कारण वेद ब्रह्म उच्चरे शंकर छोड़ी माया जय कारण सिद्ध भये उदासी देवी मर्म ना पाया बाबा मन साचा मुख साचा कहिए तरिय साचा होई

तलब ना होई प्रभाती महला पहला जा कै रूप नाही जात नाही नाही मुख मासा सतगुर मिले निरंजन पाया तेरा नाम है निवास।

जाय। प्रभाती महला पहला अमृत नीर ज्ञान मन मज्जन अठ सठ तीरथ संग गए गुरु उपदेश जवाहर मान।

पंच तस्कर तावत राखी चूका मन अभमान दिष्ट विकारी दुर्मत भागी ऐसा ब्रह्म ज्ञान। जत सत चावल दया कणक कर प्राप्त पाती तान दूध कर्म संतोख कियो कर ऐसा मांगो दान। खिमा धीरज कर गऊ लवेरी सहजे बछरा खीर पिया सिफत शर्म का कपड़ा मांगो हर गुण नानक रवत रह। प्रभाती महला पहला आवत किने ना राखिया

जैसे अरहट की माला टिंड लगत है, एक सखनी होर फेर भरियत है, तैसो ही एहो खेल खसम का, ज्यों उसकी वडियाई सुरती कै मार्ग चल कै उल्टी नदर पर गास्ती, मन विचार देख ब्रह्म ज्ञानी, कौन गिरही कौन उदासी, जिसकी आसा तिस ही सौंप कै एहो रहया निर्वाण, जिसते हो आसोई कर मानिया, नानक गिरही उदासी सो प्रवान, प्रभाती महला पहला, दिष्ट बिकारी बंधन बंद है, हाँ।

मन जोगी मन भोगिया मन मूर्ख गावार मन दाता मन मंगता मन सिर गुर करतार पंच मार सुख पाया ऐसा ब्रह्म विचार घट घट एक वखाणिय कहो ना देखिया जाए खोटो पूठो।

आई जात जन्म नह पूछी है सच घर लेहो बताई सा जात सा पत है जेहे कर्म कमाए जन्म मरण दुख काटी है नानक छूट सुनाई प्रभाती महा।

कह कहावै सोई प्रभाती मोहल्ला पहला खाया मैल बधाया पहंदै घर की हान बक बक वाद गलाया बिन नावै बिख जान बाबा ऐसा बिकम जाल मन वासिया बिबल झाग सहज प्रगासिया रहाउ बिख खाना बिख बोलना बिख की कार कमाए जम दरबादे मारिया छूटस साच नाई जिव आया तिव जाए सी किया लिख ले जाए मन मुख मूल गवाया दरगाह मिले सजाए जग खोटो सच निर्मलो

निझर चरै अमर आनंद स्वरूप नानक जल को मीन सै थे पावै राखो प्रीत प्रभाती महला पहला गीत नाद हरक चतुराई।

नानक त्रापियो तन सुख होए, प्रभाती महला पहला, अंतर देख शब्द मन मानिया, अवर न रंग नहारा, अहनस जिया देख समाले, तिस ही की सरकारा, मेरा प्रभ रंग कणो अतरूड़ो, दीन दयाल प्रीतम मन मोहन, आतरस लाल संगूड़ो रहाओ, ऊपर कूप गगन पनिहारी।

रस कमल बिगासे सस कर सूर समाया काल बिंदु मनसा मन मारी गुर प्रसाद प्रभ पाया आतरस रंग च लूलै राती दूजा रंग ना कोई नानक रसन रसाए राते रव रहे प्रभ सोई प्रभाती महला पहला बारह मह रावल खप जावे चौ छे मह सन्यासी जोगी कापड़िया सिर कूथे बिन शब्द गल पासी शब्द रते पूरे बैरागी औ हट हस्त मह भीखे आ जाची एक पाए लिव लागी रहा ब्राह्मण वाद पढ़े कर क्रिया करनी कर्म कराई बिन बूझे किस सूझे नाही मन मुख विछड़ दुख पाए शब्द मिले से सूचा चारी साची दरगाह माने आन दिन नाम रतन लिव लागे जुग जुग साच समाने सगले कर्म धर्म सुच संयम जप तप तीरथ शब्द वसे नानक सतगुर मिले मलाया दुख परासत काल नसे प्रभाती महला पहला संता की रेण साध जन संगत हर कीरत तर तारी कहां करे बपरा जम डर पै गुरमुख हृदय मुरारी जल जाओ जीवन नाम बिना हर जप जाप जपो जप माली गुरमुख आवे साध मना रहाऊ गुर उपदेश साच सुख जाको क्या तिस उपमा कही है लाल जवेहर रतन पदार्थ खोजत गुरमुख लही है तीना ज्ञान ध्यान तन साचो एक शब्द लिव लावे निरालंब निरहार ने केवल निरपहु ताड़ी लावे शायर सप्त भरे जल निर्मल उल्टी नाव तरावे बाहर जातो ठाक रहावे गुरमुख सहज समावे सो गिरही सो दास उदासी जिन गुरमुख आप पछानिया नानक कह अवर नहीं दूजा साच शब्द मन मानिया राग प्रभाती महला तीजा चौपदी।

साच रहै लिवलाई, हर हर नाम जपहु जन पाई। गुर प्रसाद मन अस्थिर हुवै, अन दिन हर रस रहिया आगाई रहाउ। अन दिन भगत करहु दिन राती, इस जुग काला हा पहाई।

सच पाई। प्रभाती महला तीजा, जो तेरी सरनाई हर जियो, तिन तू राखन जोग। तुद जेवड़ मैं अवर ना सूजै, ना को हुआ ना होग। हर जियो सदा तेरी सरनाई, ज्यों पावै त्यों

राम कट कट पूर रहया प्रभ एको गुरमुख प्रगट हर हर नाम रहाउ गुप्ता नाम वरतै विच कल युग कट कट हर भरपूर रहया नाम रतन तिन्ना हिरदय प्रगटिया जो गुर सरनाई भज पया इंद्री पंच पंचे वसियाण खिमा संतोख गुरमत पावे सो धन धन।

कहया ना चित धरै, कर आचार बो संपो संचय, जो किछ करै सो नरक परै। एको शब्द एको प्रभु वरतै, सब एकसते उत्पत चलै। नानक गुरमुख मेल मलाए, गुरमुख हर हर जाए रलै। प्रभाती महला तीजा, मेरे मन गुर अपना सहलाए। पूरा भाग हुवै मुख मस्तक, सदा हर के गुण गाहे रहाउ। अमृत नाम भोजन हर दे, कोट मदे कोई बिरला ले। जिसनो अपनी नदर करे, गुर के चरण मन माहे वसाए। दुख अनेरा अंदर हो जाए, आपे साचा लए मलाए। गुर की बाणी स्यो लाए प्यार, ऐथै उथै हो आधार। आपे देवै सिरजनहार, सच्चा मनाए अपना पाणा। सोई भगत सुगड़ सुजाणा, नानक तिस कै सद कुरबाणा। प्रभाती महला चौथा बेपास, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। रसक रसक गुण गावह गुरमत।

अमर दे अंतर पायो गुरमंत दियो हर कान रहाओ। आवहु संत मिलो मेरे पाई मिल हर हर नाम बखान। कित बिद क्यों पाइय प्रभ अपना मोको करहो उपदेश हर दान। सत संगत मह हर हर वसिया मिल संगत हर गुण जान। बड़े भाग सत संगत पाई गुर सत गुर परस भगवान। गुण गाव है प्रभ अगम ठाकुर के गुण गाए रहे हैरान। जन नानक को गुर कृपा तारी हर नाम दियो खिन दान। प्रभाती महला चौथा उगवै सूर गुरमुख हर बोल है सब रैन संभाल है हर गाल। हमरे प्रभ हम लोच लगाई हम करह प्रभु हर पाल। मेरा मन साधु धूर रवाल हर हर नाम दरडायो गुर मीठा। गुर पग झारह हम बाल रहाओ साकर।

साध संगत में बसे गोपाल, गुर मिल आए तुमरे द्वार, जन नानक दर्शन देहु मरार, प्रभाती महला पंजवा, प्रभ की सेवा जन की सोभा, काम क्रोध मिटे तिस लोभा, नाम तेरा जन कै भंडार।

जो जन राता प्रभ कै रंग तिन सुख पाया प्रभ कै संग जिस रस आया सोई जानै पेख पेख मन मह हैरानै सो सुखिया सब ते उत्तम होए जा कै हृदय वस्या प्रभ सोए सोई निश्चल आवै ना जाए अन दिन प्रभ के

देवा, नानक उदर है जन की सेवा। प्रभाती महला पंजवा, गुण गावत मन हुए आनंद, आठ पहर सिमरो भगवंत, जा कै सिमरन कल मल जाहि, तिस गुर की हम चल

सगल त्याग नाम हर जीदा किस गुर कै सदा बल जाइए हर सिमरन जिस गुर ते पाइए बूढ़त प्राणी जिन गुरह तराया जिस प्रसाद मोह नहीं माया हलत पलत जिन गुरह सवारिया।

बल जाई अगमे अगोचर बेअंत स्वामी ताका अंत न पाइए लाहा खाट हुई है तनवंता अपना प्रभु ते आइए आठ पहर पार ब्रह्म ते आई सदा सदा गुण गाया कहो नानक मेरे पूरे मनोरथ पार ब्रह्म गुर पाया प्रभाती महला पंजवा सिमरत नाम किलबिख सब नास्ते सच नाम गुरदीनी रास्ते प्रभ की दरगाह सुभावंते सेवक सेव सदा सोहंते हर हर नाम जपो मेरे भाई सगले रोग दोख सब बिन सह अज्ञान

गुरपूरा पाइय वड भागी निर्मल पूर्ण रीत रहाउ पाया लाभ बजी वधाई संत प्रसाद हर के गुण गाई सफल जन्म जीवन परवान गुर प्रसादी हर रंग मान बिरसे काम क्रोध अहंकार नानक गुरमुख उतरह पार प्रभाती महला।

चरण पूजारी मुख उज्जल साचे दरबारी जिस मस्तक गुर तरिया हाथ कोट मदे को विरला दास जल खल मैयल पेख भरपूर नानक उदरस तिस जन की तूर प्रभाती महला पंजवां कुरबान जाई गुर पूरे अपने जिस प्रसाद हर हर जप जपने रहाउ अमृत बाणी सुनत निहाल बिनस गए बिखिया जंजाल साच शब्द स्यों लागी प्रीत हर प्रभ अपना आया चीत नाम जपत हुआ प्रगास गुर शब्दे की नारदय निवास गुर समरथ सदा दयाल हर जप जप नानक भय निहाल प्रभाती महला पंजवां।

संत संगत मिल भया प्रगास, हर हर जपत पूर्ण भई आस, सर्ब कल्याण सुख मन बूठे, हर गुण गाए गुरु नानक तूठे, प्रभाती महला।

क्रोध अहंकार बिनसै लगै कै प्रीत रहाउ। नाम लागै दुख भागै शरण पालन जोग। सतगुर भेटै जमना तेटै जिस तुर होवै संजोग। रैन दिन सत्याए हर हर तजहो मन के परम। साध संगत हर मिलै

फुन बंद ना पाया, सतगुर राखे नाम दिरडाया, ना मन मरे ना माया मरे, जिन किश किया सोई जाने, शब्द विचार भव सागर तरे, रहाउ माया संच राजे अहंकारी, माया साथ ना चले प्यारी, माया ममता है बहुरंगी।

नानक खोज लह जन कोई प्रभाती महला पहला माया मोहे सगल जग छाया कामन देख काम लुभाया सुत कंचन सिंहो हेत बधाया सब किसे अपना एक राम पराया ऐसा जाप जपो जप माली दुख सुख पर हर भगत निराली रहाउ गुण निदान तेरा अंत न पाया साच शब्द तुझ माहे समाया आवा गौण तुद आप रचाया से भगत जिन सच चित लाया ज्ञान ध्यान नरहर निर्बाणी बिन सतगुरु भेटे।

मन वसाए विषम बनोद रहे परमादी गुरमत मानिया एक लिव लागी देख नवारिया जल मह आगी सो बूझै होवै बड़ भागी।

हं करन है खसम ना पावे साध बिन नावे होर कमावना फिकाया वै साध दुष्टि सभा विगुती है बिकवाती जीवन बाद ए ब्रह्म भूले मरो ना कोई सतगुर सेव सदा सुख होई बिन सतगुर मुक्त किने ना पाई आवह जाहे मरह मर जाई एहो शरीर है त्रै गुण धात विष्णु व्यापै सोग संताप सो सेव हो जिस माई ना बाप विचों चूकै किसना अर आप जह जह देखा तह तह सोई बिन सतगुर भेट।

गौतम तपा अहल्या स्त्री तिस देख इंद्र लोभाया सहस शरीर चिन्ह पग हुए ता मन पछोताया कोई जान न भूलै पहा।

आई करो अढ़ाई धरती मांगी बावन रूप बहाने क्यों पयाल जाए क्यों चलिए जे बल रूप पछाने राजा जनमेजा दे मती बर्ज ब्यास पढ़ाया तिन कर जग अठारह कहाई कीर्तना चले चलाया गणतना गणी हुक्म पछाणा बोली भाई सुपाई।

सरनाई मनमुख मुगद आगे चीतै नाही दुख लागे पछताई आपे करे कराए करता जिन एह रचना रचिय हर अवमान न जाई जियो अवमाने पै पचिय भुलण विच किया सब कोई करता आप न भुलै नानक सच नाम निस्तारा को गुर प्रसाद अकुलै प्रभाती महला पहला आखना सुनना नाम आधार धंधा चुक गया बेकार ज्यों मनमुख दूजे पत

इस मन माया मोहे बनास, तुर हुक्म लिखिया ता कहिए कास। गुरमुख विरला चीनै कोई, नाम बिहु नाम मुक्त ना होई। ब्रह्म ब्रह्म डोलै लख चौरासी, बिन गुर बूझे जम की फासी। एहो मनुआ खिन खिन ऊब पयाल, गुरमुख छूटै नाम संभाल। आपे सदे ढिल ना होई, शब्द मरे सहला जीवै सोए। बिन गुर सोजी किसै ना होए, आपे करै करावै सोए। झगड़ चुकावै हर गुण गावै, पूरा सतगुर सहज समावै। एहो मन

कर्म धर्म पत पूजा काम क्रोध अग्नि मैं पूजा हर रस चाखिया तो मन पीजा प्रणवत नानक अवर ना दूजा प्रभाती महला पहला राम नाम जप अंतर पूजा गुर शब्द विचार अवर नहीं दूजा एको रव रहया सब ठाई अवर ना दिसै किस पूज चढ़ाई रहाउ मन तन आगे जियड़ा तुझ पास ज्यो पावै त्यो रखो अरदास सच जिहवा हर रसन रसाई गुरमत छूटस प्र

पाई। प्रभाती महला पहला, एक तोर बख्श लए गुरपूरे, सच्ची बणत बनाई। हर रंग राते सदा रंग साचा, दुख बिसरे पत पाई। झूठी दुर्मत की चतुराई।

बिन सतबार न लागे काई रहाउ। मनमुख कहो दुख दर्द व्यापस, मनमुख दुख ना जाई। सुख दुख दाता गुरमुख जाता, मेल लई सरनाई। मनमुख ते अब भगत ना होवस, हउ मैं पचै दीवानी। इह मनुआ खिन ऊब पयाली, जब लग शब्द ना जानी। भूख प्यासा जग पया, तिप्त नहीं बिन सतगुर पाई। सहजै सहज मिलै सुख पाईए, दरगाह पैंदा जाई। दरगाह दाना बिना एक आपी,

खुन त्रै मिल जगती उपाया ऐसा बल चल तिनको दिया हुक्मी ठाक रहाया कैसी जन विरले जागे अंदर

तीर्थ से निर्मल दुख हो मैं मैल चुकाया। नानक तिनके चरण पखाले जिन्ना गुरमुख साचा पाया।

ज्ञान रतन प्रगट होए, मनमुख मूल ना जाननी, मानस हर मंदर ना होए, हर मंदर हर जियो साजिया,

जन निर्मल हर कै नाम समाई, हर मंदिर हर का हाट है रखिया शब्द सवार, तिस विच सौदा एक नाम गुरमुख नैन सवार, हर मंदिर में मन लोहट है मोहया दूजै पाई, पारस भेटिया कंचन भया कीमत कही ना जाई, हर मंदिर में हर वसै सर्ब निरंतर सोई, नानक गुरमुख वणजिया सच्चा सौदा होई, प्रभाती महला तीजा पै पाए जागे से जन जागरण करह, हम मैं मैल उतार सदा जाग है कार अपना राख है, पंच तस्कर का डह मार मन मेरे गुरमुख नाम ते आए, जित मार्ग हर पाई है मन से ही कर्म कमाए रहाओ, गुरमुख सहज तुन उपजै दुख हों मैं विचों जाए, हर नामा हर मन वसै सहजे हर गुण गाई, गुरमती मुख सोहणे हर राखिया उर तार, ऐतै उतै सुख घणा जप हर हर उतरे पार, हों मैं विच जागरण ना होवई हर भगत।

हुए भाग ता दर्शन पाईए आप तरह सब कुटुंब तराइए रहाउ दूजा प्रभाती महला पंजवा सिमरत नाम किल बिक सब काटे धर्म राय के कागर फाटे साध संगत मिल हर रस पाया पार ब्रह्म रिद माहि समाया राम रमत हर हर सुख पाया तेरे दास चरण सरनाया रहाउ चूका गौण मिटिया अंधियार गुर दिखलाया मुक्त।

सोए तिस बिन बीजो नाई कोए बैर बरोध शेडे पै परमा प्रभ पुन आत्मै कीने धर्मा महा तरंग ते कांडै लागा जन्म जन्म का टूटा गांडा जप तप संयम नाम संभालिया अपने ठाकुर नदर निहालिया मंगल सूख कल्याण तथाई जह सेवक गोपाल गुसाई प्रभ सो परसा

निम खरीदै तारी गोबिंद जपत सब कार्य सारी उच्चे ते उच्चा प्रभ थान हर जन लावे सहज ध्यान दास दासन की बांछो तूर सर्व कला प्रीतम भरपूर।

कहिए सोई अलह अलख न जाई लखिया गुर गुर दीना मीठा कह कबीर मेरी शंका नासी सर्व निरंजन दीठा प्रभाती वेद कतेब कहो मत झूठे।

तेरे मन का भरम ना जाई रहा। पकड़ जियो आनिया देह बिनासी, माटी को बिस्मिल किया, ज्योत स्वरूप अनाहत लागी, कहो हलाल क्या किया। क्या उजू पाक किया मुंह धोया, क्या मसीत सिर लाया, जो दिल में कपट नवाज गुजार हो, क्या हज का बह जाया। तू ना पाक पाक नहीं सूझिया, तिसका मर्म ना जानिया, कह कबीर पिस्त ते चूका, दोजक स्यो मन मानिया। प्रभाती सुन संध्या तेरी देव देवाकर, अदपत आद समाई, सिद्ध समाधि अंत नहीं पाया, लाग रहे सरनाई। लेहो आरती हो पुरख निरंजन, सतगुर पूजो पहाई, ठाडा ब्रह्मा निगम बीचार, अलख ना लखिया जाई। रहाओ तत तेल नाम किया बाती, दीपक दे उजियारा, ज्योत लाए जगदीश जगाया, बूझे बूझनहारा। पंचे शब्द अनाहद बाजी, संगे सारिंग पानी, कबीर दास तेरी आरती कीनी, निरंकार निर्बाणी।

है आपे निर्भउ समत बिचारी जो जन जान भजह पुरखोत्तम ताकि अवगत बाणी नामा कह जग जीवन पाया हृदय अलख बिडाणी प्रभाती आद जुगाद जुगाद जुगो जुग ताका अंत ना जानिया सर्व निरंतर राम रहिया रव ऐसा रूप बखानिया गोविंद गाजै शब्द बाजै आनंद रूपी मेरो रामैया रहाउ बावन बीखु बन बीखे बास ते सुख लागेला सर्वे आद परमलाद काष्ट चंदन पहला तुम चे पारस हम चे लोहा संगे कंचन पहला तू दयाल रतन लाल नामा साच समायला प्रभाती अकुल पुरख एक चलते उपाया काट काट अंतर ब्रह्म लुकाया।

आपै जो किसी की आसो आपै आपै प्रणवत नाम देओ एहो जियो चितवै सो लहै अमर हुए सद आखुल रहै प्रभाती भगत बेणी जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद तन चंदन मस्तक पाती हृदय अंतर कर तल काती ठग दिष्ट बग्गा लिव लागा देख वैष्णो प्राण मुख भागा कल भगवत बंद चिरामं क्रूर दिष्ट रता निस्बादं रहाउ नित प्रत इशनान शरीरं द्वे धोती कर्म मुख खीरं हृदय छुरी संध्यानी पर दर्भ हिरन की बानी सिल पूजस चक्र गणेशं निस जागस भगत परवेशं पग नाचस चित अकर्मं ए लंपट नाच अधर्मं मृग आसन तुलसी माला हरिजल तिलक कपाला हृदय कूड़ कंठ रुद्राखं रे लंपट कृष्ण अपाखं जिन आत्म तत् ना चीनिया सब फोकट धर्म अभिनिया कहो बेणी गुरमुख त्यावै बिन सतगुर बाट ना पावै।

बिखियन स्यो अत लुभान मत नाहिन फेरी रहाउ मानस को जन्म लीन सिमरन नह निमख कीन दारा सुख पयो दीन पगहों परी बेरी नानक।

पहला पढ़ पुस्तक संध्या बादं सिल पूजस बगल समाधं मुख झूठ बेपूखन सारं त्रैपाल तिहाल विचारं गल माला तिलक लाटं दोए धोती बस्तर कपाटं जो जानस ब्रह्मं कर्मं सब फोकट निश्चय कर्मं कहो नानक निश्चौ त्यावै बिन सतगुर बाट ना पावै निःपलंग तस्य जन्म से जावद ब्रह्म ना बिंदते।

प्यार कारण करते वस है जिन काल रखी तार योग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ता ब्राह्मण है क्षत्रिय शब्दं सूर शब्दं शूद्र शब्दं प्राकृत है सर्व शब्दं ता एक शब्दं जे को जानस पेओ नानक ता को दास है।

पुरुख निरपहु निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैपं गुरप्रसाद कतंच माता कतंच पिता कतंच बनता विनोद सुत है कतंच प्रात मीत हित बंधव कतंच मोह कटंबयति कतंच चपल मोहनी रूपं पेखंते त्यागं क्रोत रहंत संग भगवान सिमरन नानक लभदेहं अचुत तन है किरगंत मात पिता स्नेहं त्रिग स्नेहं प्रात बांधवह त्रिग स्नेहं बंता बलास सुत है त्रिग स्नेहं गिरहार्थ कह साध संग स्नेहे सत्यं सुखियं बसंत नानक है मिथ्यंत देहं खिनंत बलनं बरदंत जरुआ हित्यंत माया अत्यंत आसा अथित्य पवनं गनंत स्वासा पयान धर्मं पतंत मोह कूप दुर्लभ्य देहं तात आश्रयं नानक गोविंद गोविंद गोविंद गोपाल कृपा काच कोटं रचंत तोयं लेपनं रक्त चरमण है नमंता द्वारं पीत रहतं बाय रूपं असथंबन है गोविंद नामं नह सिमरंत अज्ञानी जानंत अस्त्रिं दुर्लभ दे उदरंत साध सरन नानक हर हर हर हर हर हरे जपंत सुभंत त्वं अच्युत गुणज्ञं।

विलंब पापं दृढ़ंत नामं तजंत लोभं सरण संतं किल बिखनासं प्राप्तं धर्म लखियण नानक जेह सो प्रसन्न माधवह मृत मोहं अल्प बुद्धिहं अरचंत बनता बनोद साहं जौवन बह क्रम कनक कुंडल विचित्र मंदर सुभंत बस्तरा इत्यंत माया व्यापकं हे अच्युत सरण संत नानक ओ भगवानी नमः जन्मं ता मरणं।

तंत बनासन गोविंद भजन साध संगेन अस्त्रिं नानक भगवंत भजनासन किरपंत हरियं मत तत् ज्ञान बख्शी देह बुधा कुशल थान बसंतरिक्षं त्याग मान शीतलंत हृदय दृढ़ संत ज्ञान अरहंत जन्म।

एक जठरागन नह सिमरंत मलीन बुद्धि हं हे गोविंद करत माया नानक पतत उदारन साध संग मह गिरंत गिर पतत पतालं जलंत दे दीपे वैसवांतर है बहंत अगाह तोयं तरंगं दुखंत ग्रह चिंता जन्मं तामरन है अनक साधन ना सिद्ध्यते नानक अस्थंबं अस्थंबं अस्थंबं शब्द साध स्वजन है कोर दुखियं अनक हत्यं जन्म दारिद्रं महाभिख्यादं मिटंत सगल सिमरंत हर नाम नानक जैसे पावक काष्ट पसमं करोत अंधकार सिमरत प्रकाशं गुण रमंत अग खंडन है रिद बसंत भय भीत दूत है कर्म करत महा निर्मल है जन्म मरण अरहंत सरोता सुख समूह अमोघ दर्शन है शरण जोगं संत प्रिय नानक सो भगवान खेमं करोत पाशं क्रोत अग्रणी वह निरासंग आस पूर्ण है निर्तन भयं तनवंत है रोगियं रोग खंडन है भगत्यं भगत दानं राम नाम गुण कीर्तन है पार ब्रह्म पुरख दाता है नानक गुर सेवा क्यं ना लभ्यते अतरंग तरंग धारण है निर्तनंग धन नाम नरहर है अनाथ नाथ गोविंद है बालहीन बल केशव है सर्वभूत दयाल अचुत दीन बांधव दामोदर है सर्वज्ञ है पूर्ण पुरख भगवान है भगत वचल करना मय घट घट बसंत बास देव है पार ब्रह्म परमेश्वर है जा चंत नानक कृपाल प्रसादं नह बिसरंत नारायण है नह समरथं नह सेवकं नह प्रीत परम प्रखोत्मं ताव प्रसाद सिमरते नामं नानक कृपाल हर हर गुरं भरण पोखण करंत जिया विश्राम साधन देवंत दानं सिरजंत रत्न जन्म चतुर चेतन है वर्तंत सुख आनंद प्रसाद है सिमरंत नानक हर हर हरि अनित्य है रचना निर्मोहते दानं परापूर्वेण पूचन्ते महीपते विपरीत बुद्धिं मार्त लोक है नानक चिरंकाल दुख भोगते दृता अनुग्रहंग बिंद है जस्य सिमरन रदंतर है।

पीवतं संत ना त्रिप्यते सहनशील संतं सममित्रस्य दुर्जनः नानक भोजन अनक प्रकारेण निंदक आवद होए उपतिष्ठते तिरस्कार नह पवंत नह पवंत मान भंग नह सोबाहीन नह पवंत नह पोहंत संसार दुख नह गोविंद नाम जपंत मिल साध संग है नानक से प्राणी सुख बासन है सेना साध समूह सूर अजितं सन्नाहंग तन निमरता आवदह गुण गोबिंद रमण ओट गुर शब्द कर चरमण है अरूढ़ते अश्वरथ नाग है बुझंते प्रभ मार्ग है विचरते निर्भयं सत्र सेना तायंते गोपाल कीर्तन है जितते विश्व संसार है नानक वस्यं क्रोत पांच तस्कर है मृग तृष्णा गंधर्व नगरं द्रुम छाया रच दुर्मत है ततः कुटंब मोह मिथ्या सिमरंत नानक राम राम नाम है नाच विद्या निदान निगमं नाच गुणज्ञ है नाम कीर्तन है नाच राग रतन

जत कतह ततह दृष्टं स्वर्ग मर्त पयाल लोकह सर्वत्र रमण गोबिंद है नानक लेप शेप ना लिप्यते विख्या पयंत अमृतं दृष्टां सखा सुवजन है दुखियं पयंत सुखियं तय पीतंगता निर्भय है थान बिहून विश्राम नामं नानक कृपाल हर हर गुर है सर्वशील ममं शीलं सर्व पावन मम पावन है सर्व कर्तव ममं कर्ता नानक लेप छेप ना लिप्यते।

नानक शीतलं साध स्वजन है मंत्रं राम राम नामं ध्यानं सर्वत्र पूर्ण है ज्ञानं सम दुख सुखं जुगत निर्मल निर्वैर है दयालं सर्वत्र जिया पंच दुख विवर्जित है भोजनं गोपाल कीर्तनं अल्प माया जल कमल रहत है उपदेशं सम मित्र सत्र है भगवंत भगत पावनी पर निंदा नह सुरूत श्रवणं आप त्याग सगल रेणु कह खट लखियन पूर्णं पुरख है नानक नाम साध स्वजन है अजापो गंत कांड मूलं।

पाल नामं रमंत गुण गोबिंद नित प्रत है तरन सरन स्वामी रमन सील परमेश्वर है करण कारण समर्थ है दान देत प्रभ पूर्ण है निराश आस करन सगल अर्थ आलिय गुण निधान सिमरंत नानक सगल जाचंत जाच कह दुर्गम स्थान सुगम महादुख सर्व सूखण है दुर्वचन भेद भरम साकत पिसनं ता सुरजन है अस्थितं सोग हरखं पै खीनं ता निर्भवै है पै अटवियं महानगर वासं धर्म लखियन प्रभमय साध संगम राम राम रमणं शरण नानक हर हर दयाल चरणं के अजित सूर संग्रामं हत बलना बहुमर्दन है गण गंधर्व देव मनुखियं पास पंखी बमोहन है हर करण हारं नमस्कारं शरण नानक जगदीश्वर है एकामं नरक विश्रामं बहु जोनी परमावन है चित हरनं त्रैलोक गम्यं जप तप सील बदारन है अल्प सुख अवित चंचल ऊच नीच समावन है।

कदंच करुणा न उपर्जते विखियंत जीवं वस्यं क्रोत नृत्यं क्रोत जथा मर्कट है अनक शासन ताड़ंत जमदूत है तब संगे अदमंग नर है दीन दुख भंजन दयाल प्रभ नानक सर्ब जी रख्या करोत हे लोबा लंपट संग सिर मोर है अनक लहरी कलोलते तावंत जिया बहु प्रकार अनक भांत बहु डोलते नच मित्रं नच इष्टं नच बांधो नच मात पिता तब लज्जिया अकरणं क्रोध अखाद्य है खाद्यं असाज्यं।

अहंकारं पापात्मा मित्रं त्यजन्त शत्रुं दृढ़न्त अनक माया बस्तीर्ण है आवंत जावंत थकंत जिया दुख सुख बहु भोगण है ब्रह्म प्यान उद्यान रमण महाबिकट असाध रोगण है वैद्यं पार ब्रह्म परमेश्वर अराध नानक हर हर हरे।

तरह है। सिर मस्तक रखिया पार ब्रह्म, हस्त काया रखिया परमेश्वर है। आत्म रखिया गोपाल स्वामी, तन चरण रखिया जगदीश्वर है। सर्ब रखिया गुरदयाल है, भय दुख विनाशन है। भगत वछल अनाथ नाथी,

सिमरणं सर्वत्र जीवन है लब्धहं संत संगेन नानक श्वास मार्ग हर भगतन है मस्कं पगनंत सैलं कर्दमं तरंत पपील कह सागरं लगंत पिंगं तम प्रकाश अंध कह साध संगेन सिमरंत गोविंद शरण नानक हर हर हरि तिलकहीनंग जथा विपरा अमरहीनंग जथा।

श्यामं आश्चर्य रूपं रहंत जन्मं नेत नेत कथंत बेदा ऊच मूच अपार गोविंद है बसंत साध हृदयं अच्युत बुजंत नानक बड़ भागी है उद्यान बसनं संसारं संबंधी स्वान सियान खर है विखम स्थान मन मोह मद्रं महा असाध पंच तस्कर है हीत मोह पै भरम भ्रमण अहं फांस तीक्षण कठन है पावक तो असाध कोरं अगम तीर नह लंघन है भज साध संग गोपाल नानक हर चरण सरण उदरहन कृपा कृपा क्रंत गोविंद गोपाल है सगले अंग रोग खंडन है।

समंतर साध बचना कोट दुख बनासन है हर चरण कमल त्यानंग नानक कुल समूह उदाहरण है सुंदर मंदर सैन है जेण मध्य है हर कीर्तन है मुक्ते रमन गोबिंद है नानक लब्ध अंग बड़ भागन है हर लब्धो मित्र सुमितो।

नानक हर पूर्व लिखण है दसन बिहून पयंगं मंत्रं गारडी निवारं ब्याद उपारन संतं नानक लब्द कर्मण है जात काथ रमणं सरणं सर्वत्र जियण है तत लगणं प्रेम नानक प्रसादं गुर दर्शन है चरणार बिंद मन भिद्यं सिद्धं सर्व कुशलन है गाथा गावंत नानक पभ्यं परापूर्वण है शुभ बचन रमणं गवणं साध संगेन उदरन है संसार सागरं नानक पुनरप जन्म न लभ्यति वेद पुराण शास्त्र विचारं एकंकार नाम उरतारं कुलह समूह सगल उदारं बड़भागी नानक को तारं सिमरणं गोविंद नामं उदरणं कुल समूहन है लब्धं साध संगेन नानक बड़भागी भेटंत दर्शन है सर्व दोख प्रंत्यागी सर्व धर्म दृढ़ंतरन है लब्धेन साध संगेन नानक मस्तक लिखियन है होयो है होवंतो हरन भरन संपूर्ण है।

कसो वरंगण है। रोग सोग बियोग नानक सुख ना सुपन है। हुनहे महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हाथ कलम अगम मस्तक लेखावती। उर्ज रहे हो सब संग अनूप रूपावती। उस्तत कहन न जाए मुख तोहारिया। मोही देख दर्स नानक बलिहारिया। संत सभा में बैस के कीर्त मैं कहा। हरपी सब शिंगार एहो जियो सब देवा। आस प्यासी सेज सो कंत बछाई। हर हां मस्तक होवे भाग तां साजन पाई है। सखी काजल हार तंबोल सबे किस साजिया। सोलह किए शिंगार के अंजन पाजिया। जे घर आवे कंत तां सब किछ पाई है। हर हां कंते बाज शिंगार सब बिरथा जाई है। जिस घर वसिया कंत सा वड भागणे। तिस बनिया हब शिंगार साई सोहागणे। हौ सुती होए अचिंत मन आस पुराइया। हर हां जां घर आया कंत तां सब किछ पाइया। आसा इती आस के आस पुराइया। सतगुर भये दयाल तां पूरा पाइया। मैं तन अवगण बहुत के अवगण छाया। हर हां सतगुर भये दयाल तां मन ठहराया। कहो नानक बेअंत बेअंत ते आया। दुत्तर

गोपाल सगल सुख रास हर हर हां रिद्ध सिद्ध नव निध बस है जिस सदा कर पर त्रय रावण जाहे से ता लाजी है नित प्रत हिरह पर दर्भ छिदर कत ढाकी है हर गुण रमत पवित्र सगल कुल तारई हर हां सुनते पये पनीत पार ब्रह्म बीचारई ऊपर बने आकाश तले तर सोहती दह दिस चमकै बीजल मुख को जोहती खोजत फिरो उपदेश पियो कत पाइए हर हां जे मस्तक होवे भाग तां दर्श समाइए दिठे सबे थाम नहीं तुद जेहया बदहो पुरख बधाते तां तू सोहया वसदी सगन अपार अनूप राम दास पुर हर हां नानक कसमल जाहे नाय रामदास सार चात्रक चित सुचित सो साजन चाहिए जिस संग लागे प्राण तिसै कहो आहिए बन बन फिरते उदास बूंद जल कारने हर हां त्यों हर जन मांगे नाम नानक बलिहार ने मित का चित अनूप मरम ना जानी है गाहक गुनी अपार सोता।

वह सच धना सुपन उभी भई गहयो की ना अंचला सुंदर पुरख विराजत पेख मन बंचला।

सब जावै औखद नाम अपार अमोलक पीजई मिल मिल खावे संत सगल कौ दीजई जिसे प्राप्त हुए तिसे ही पावनी हर हां हां बलिहारी तिन जे हर रंग रावनी वैदा संदा संग इकट्ठा होया औख दे आए रास विच आप खलोया जो जो ओना कर्म सुकर्म होए पसरे।

की दम के हो होती साठ रावण हुते सो रंक नह जिन सिर दीने काट प्रीत प्रेम तन खच रहया बीच नाराई होत चरण कमल मन बेदे हो बूजन सुरत संयोग सागर मेर उद्यान बन नवखंड बसदा परम मूसन प्रेम परम कै गनो एक कर करम मूसन मस कर प्रेम की रही जो अंबर छाए बीते बांधे कमल मह भवर रहे लपटाए जप तप संयम हरख सुख मान महत अर गर्भ मूसन निमखक प्रेम पर वार वार देओ सर्ब मूसन मर्म ना जाने मर्त हिरत संसार प्रेम पिरम ना बेदेओ उर्जे हो मिथ व्यवहार कब दब जब जारी।

पवन च फूलन हार, संतोह माखन खाया छाछ पिए संसार, कबीर माया डोलनी पवन वह हेवतार, जिन बुलोया

एक हजार हरुए हरुए तिर गए डूबे जिन सिर पार कबीर हाड जरे ज्यों ला करी केस जरे ज्यों कास

होई, अजो सोना उस समुंदर में क्या जानू क्या होई। कबीर गर्व ना कीजिए देही देख सुरंग, आज काल तज जाओगे ज्यों कांचुरी पोयांग। कबीर लूटना है ता लूट ले, राम नाम है लूट,

कोई सांझा करे कबीर स्यों हर संग बणज करे कबीर एह चेतावनी मत सहसा रह जाए पाछे भोग जो

त्याग खिंता जल कोयला पई तागे आंच ना लाग कबीर खिंता जल कोयला पई खापर फूट मफूट जोगी बपड़ा खेलो आसन रही बेपूत कबीर थोड़ा जल माछुली चीवर मेले ओ जाल ए टोगने ना सूट सह फिर कर समुंद संभाल कबीर समुंद ना छोड़ी है जो अत खारू होए पोखर पोखर ढूंढते

वैष्णव की कुकर भली साकत की बुरी माई। ओ नित सुने हर नाम जस ओ पाप बसाहन जाए। कबीर हर

शरीर बिन हर भगत ना मुक्त होए यूं कह रमे कबीर। कबीर मन निर्मल भया जैसा गंगा नीर, पाछे लागो हर फिरे कहत कबीर कबीर।

गोर काया हांडी काठ की ना उह चरह बोहोर कबीर ऐसी होए परी मन को भावत कीन मरने ते क्या डरपना जब हाथ से दोहरा लीन कबीर रस को गांडो चूसी है गुण को मरिया रोए अवगुण यारे मानस है भलो ना कह है कोय कबीर गागर जल भरी आज काल जय है फूट गुर जो ना चेत है अपनो अदमाजली।

कंठ में चूक है सर्व जंजाल, कबीर ऐसा को नहीं मंदर दे जराय, पांचों लड़के मार के रह राम लियो लाय, कबीर ऐसा को नहीं

फिर सती पकार चेहे चढ़ी, सुन हो वीर मसान, लोग सबाया चल गयो, हम तुम काम निदान। कबीर मन पंखी पयो, उड़ उड़ दह दिस जाए, जो जैसी संगत मिले

हुए चार पुरख दोए नार। कबीर देख देख जग ढूंढिया कहूं ना पाया ठोर। जिन हर का नाम ना चेतेऊ

आए जिन हर का नाम ना चेतेओ बाद है जन्मे आए कबीर आसा करिए राम की अवरै आस नरास नरक पर है।

क्या करे जो राम ना करे सहाय। जेह जेह डाली पग धरो सोई मुर मुर जाय। कबीर अवरह को उपदेश ते

जौ की भूसी खाओ, होनहार सो होए है, साकत संग ना जाओ, कबीर संगत साध की दिन दिन दूना हेत, साकत कारी कांबरी तोए हुए ना सेत, कबीर

आई सर्पन हुए कह अवतर जाए अपने खाई कबीर हर का सिमरन छाड़ के ओहो ही राख नार गद ही हुई कै अवतरे पार सह मन चार कबीर चतराई अत कणी

कबीर सोई कुल भली जा कुल हर को दास जेहे कुल दास ना उपजै सो कुल ढाक पलास। कबीर है गए बाहन सगन कन लाख तजा फहराहे या सुख ते भिख्या भली जो

आए जोत बिना जगदीश की जगत उलंगे जाए। बूढ़ा वंश कबीर का उपजयो पूत कमाल,

कैसे बच रह कूंज मन माया ममतारे, कबीर अंबर कन हर्षाया बरख परे सरताल चात्रक ज्यों।

रात जो नर बिसरे राम सिंह ना दिन मिले ना रात कबीर रैनायर बिशोरिया रहो रे संख मजूर देवल देवल ताहड़ी देस है उगवत सूर कबीर सूता क्या करह जाग रोए पै दुख जा का बासा गोर मह सो क्यों सो है सुख कबीर सूता क्या करह उठ के ना जपह मरार एक दिन सोवन होए गो लांबे गोड पसार।

सो जपया परवदगार कबीर कस्तूरी भया पवर पये सब दास ज्यों ज्यों भगत कबीर की त्यों त्यों राम निवास कबीर गह गच परयो कटंब कै कंठ रह गयो राम आए परे धर्म राय के बीच है धूमा धाम कबीर साकत ते सूकर भला राख आछा गांव ओह साकत बपरा मर गया कोई ना लह नाम कबीर कौडी कौडी जोर कै।

बाहर कंचन बारहा भीतर परी पंगार। कबीर रोड़ा हुए रहो बात का तज मन का अपमान, ऐसा कोई दास हुए ताहे

आए मान मुनि मुनिवर गले मान सब है को खाए। कबीर साचा सतगुर मैं मिलया शब्द जो बाहया एक लागत ही पोए मिल गया पढ़या कलेजे शेक। कबीर साचा सतगुर क्या कर है जो सिखा मह चूक अंधे एक ना लागई ज्यो बांस बजाइए फूक। कबीर है गै बाहन सगन कन छत्रपति की नार ताश पतंतर ना पुजै

हाथ जब ही पाई है पारखू तब ही रन की साठ। कबीर काम परे हर सिमरी है ऐसा सिमर हो नित, अमरापुर बासा करहु हर गया बोहर बेत। कबीर सेवा को दोए भले।

पाच परी बहीर एक अवघट काटी राम की तेह चढ़ रहे हो कबीर कबीर दुनिया के दोखे मुआ चालत कुल की कान तब कुल किस काल।

संत मनयागर पोयंगम बेदेव ता शीतलता नात जंत कबीर मन शीतल भया पाया ब्रह्म ज्ञान जिन ज्वाला जग जारिया सो जन के उदक समान कबीर सारी सिर जनहार की जाने नाही कोई कै जाने आपन तनी कै दास देवानी होए कबीर भली पई जो पौ परया दिशा गई सब भूल उरा घर पानी पया।

पास चोट सहारे शब्द की पास गुरु मैं दास कबीर मुन्ना मनारे क्या चढ़ है साई ना बहरा होए जा कारण तू बांग दे दिल ही पीतर जोए सेख सबूरी बाहरा क्या हज काबे जाए कबीर जाकी दिल साबत नहीं ताको कहां खुदाए कबीर अल्लाह की कर बंदगी जेहे सिमरत

दिया, तब हुई गो कौन हवाल। कबीर खूब खाना खीचरी, जा मह अमृत लोन। हेरा रोटी कार ने गला कता वह कौन। कबीर गुर लागा तब जानिए, मिटै मोह तन ताप। हरख सोग दाजै नहीं, तब हरे आपह आप। कबीर राम कहन मैं भेद है, ता मह एक विचार। सोई राम सबै कह, सोई कौतकहार। कबीर रामे राम कहो, कहबे माहे बबेक। एक अन्य

आई ते कर मरहत सारखे भूत बस है तिन माहे कबीर गूंगा हुआ बावरा बहरा हुआ कान पावहु ते पिंगल भया मारिया सतगुर बाण कबीर सतगुर सूर में बाहया बाण जो एक लागत ही पोए गिर परिया परा करे जे शेक कबीर निर्मल बूंद आकाश की पर गई भूम बेकार बिन संगत इओ मानी होए गई पाठशार कबीर निर्मल बूंद आकाश।

मन में पल्ला ना पकड़े कोई, कबीर धरती अर आकाश में दुए तू बरी आवद, हट दर्शन संसे परे हर चौरासी सिद्ध, कबीर मेरा मुझ में किछ नहीं।

दास कबीर हर का सिमरण जो करे सो सुखिया संसार इतोत कतह ना डोले जिस राखै सिर जनहार कबीर कहानी पीड़ते सतगुर लिए छडाए परापूर्व ली पावनी प्रगट होई आए कबीर टालह टोलै दिन गया ब्याज बढ़ंतो जाए ना हर भजियो ना खत फटियो काल पहुंचो आए महला पंजवां कबीर कूकर भौंकना करंग पिछे उठ ताए करमी सतगुर पाया जिन्हों लिया छडाए महला पंजवां कबीर धरती साध की तस्कर बै सहगाए धरती भार ना ब्या

आए संगुक संगी बैसते तब पूछे धर्म राय नामा माया मोहया कहत लोचन मीत काहे सी पोषाय ले राम ना लावो चीत नामा।

कोठे मंडप हेत कर काहे मरहो सवार कारज साडे तीन हाथ कनी ता पौने चार कबीर जो मैं चितमो ना करे या मेरे चितवे होए अपना चितवे आ हर करे जो मेरे चित ना होए महला तीजा चिंता पे आप कराए सी अचिंत पे आपे दे नानक सो सला।

पर दया फल उपकारी जीवंत पंखी चले दसावरी बिरखा सुफल फलंत कबीर साधु संग प्राप्ति लिखिया हुए ललाट मुक्त पदार्थ पाइए ठाक ना अवकट घाट कबीर एक घड़ी आदि घड़ी आदि हूं ते आद भगतन सेती गोसटे।

नीचे लोहन कर रहो ले साजन घट माहे सब रस खेलो पीसो किसी लखावो नाहे आठ जाम चौसठ करी तो निरखत रह जियो नीचे लोहन क्यों करो सब घट देखो पियो।

वामन गुरु है जगत का, भगतन का गुर नाहि। अर्ज उर्ज कह पच मुआ, चारो बेदो माहि। हर है खांड रेत में बिखरी, हाथी चुनी ना जाए। कह कबीर गुर भली बुझाई, कीती होए कह खाए। कबीर जो तुहे साध पिरम की, सीस काट कर गोए। खेलत खेलत हाल कर, जो किश होए ता होए। कबीर जो तुहे साध पिरम की, पाके से ती खेल। काची सरसों पेल कै, ना खाल पई ना तेल। टूंडत डोल है अंधगत, हर चीनत ना ही संत। कह नामा क्यों पाईए, बिन भगत हो भगवंत। हर सो हीरा छाड़ कै, करह आन की आस। ते नर दोजक जाहेंगे, सत पाख है रविदास। कबीर जो ग्रह करह ता धर्म कर।

इति जोबन प्रीत बेन सुख गए कुमलाय फ्रीदा चिंत खटोला वाण दुख बिरह बिछावन लीप यो हमारा जीवना।

तन बिहो ना उपजे सो तन जान मसान। फरीदा ए विस गंदला तरियां खंड लिवाड़, एक राहिंदे रह गए एक राधी गए उजाड़। फरीदा चार गवाया हंड कै चार गवाया सम, लेखा रब मगेसिया तू आहू केरे कम। फरीदा दर दरवा जय जाए कै क्यों दिठो कड़ियाल, एहो न दोषा मारिए हम दोषा दा क्या हाल। कड़िए कड़िए

कंध कुहाड़ा सिर कड़ा वन कै सर लोहार फरीदा हो लोड़ी सोह अपना तू लोड़ है अंगियार फरीदा इकना आटा अगला इकना ना ही लोण अगे गए संजापसन चोटा खासी कौन पास दमामी सत सिर भेरी सडो रड जाए सुते जीरान मह किए अतिमा गढ़।

प्रीदा कन मसला सूफ गल गिलकाती गुड़वात बाहर दिसै चानना दिल अंधियारी रात प्रीदा रत्ती रत ना निकलै जे तन चीरै कोय जो तन रत्ते रब स्यों तिन तन रत ना होय महला तीजा एहो तन सबो रत है रत बिन तन ना होय जो सह रत्ते अपने तित तन लोभ रत ना होय पै पै तन खीण होय लोभ रत विचों जाय ज्यों बैसंतर धात सुध होय त्यों हर का पौ दुरमत महल गवाय नानक ते जन सोहणे जे रत्ते हर रंग लाय फरीदा सोई सरवर ढूंढ लहो।

मिट्टी पई अतोलवी कोई ना हो सी मेता फरीदा मंडप माल ना लाए मर्ग सपाणी चित धार साई जाए संभाल जिथे ही तो वंजना फरीदा जिन्नी कमी नाहे गुण ते कमड़े वसार मत शर्मिंदा थी वही साई दरबार फरीदा साहिब दी कर चाकरी।

वत कुवारी ना थीय कलर केरी छपड़ी आए उलथे हंज चिंजू बोड़न ना पीवे उड्डन संधी डंज हंस उडर कुदरे पया लोक बडारन जाय गहला लोक ना जानदा हंस ना कुदरा खाय चल चल गईया पंखिया जिन्नी वसाए तल फरीदा सर भरिया पी चल सी थके कवल अकल।

पास फरीदा पन्नी कड़ी समन्नवी टूटी नागर लज अजराइल फरिश्ता कै घर नाथी अज फरीदा पन्नी कड़ी सम

चल गए फरीदा बुरे दा भला कर गुस्सा मन ना हंडाए देही रोग ना लगई पल्ले सब किश पाए फरीदा पंख परहोनी दुनी सुहावा बाग नौबत वजी सुबह स्यों चलन का कर साज फरीदा रात कठूरी वंडी है सुत्या मिले ना पाऊ जिन्ना नैन निंदराव ने तिन्ना मिलन को आऊ फरीदा मैं जानिया दुख मुझको दुख सबाया जग ऊचे चढ़ के देखिया ता घर करे हा अग महला पंजवा फरीदा भूम रंगावली मांज वसूला बाग जो जन पीर निवाजिया तिना अंचना लाग महला पंजवा फरीदा उमर सुहावड़ी संग सुमनड़ी दे विरले के पाईन जिन्ना प्यारे ने कंदी वहन ना ताहे तो पी लेखा देवना जिद्दर रबर जाए वहन तदाऊ गौ करे फरीदा दुखा सेती देह गया सूना सेती रात खड़ा पकारे पातनी बेड़ा कपरवात।

चल गई फरीदा लोका आपो अपनी मैं अपनी पई आप सवार है मैं मिले मैं मिलिया सुख हो।

आप ही धारण धारी कुदरत है देखारी वर्ण चिन्ह नाही मुख नाम सारी जन नानक भगत दर तुल ब्रह्म समसार एक जी ही क्या बखाने हां की बल बल बल बल सद बलिहार सर्व गुण निदानं कीमत ना ज्ञानं ध्यानं ऊचे ते ऊचो जा नीचे प्रभ तेरो थानं मन धन तेरो प्राणं एक है सूत है जहानं कवन उपमा देओ बड़े ते बडानं जाने कौन तेरो पेओ अलाख अपार देओ अकाल कला है प्रभ सर्व को तानं जन नानक भगत दार।

हर हर पयो हर गुरु नानक जिन परसियो से जन्म मरण दोहों थे रहियो सत सत हर सत सत सती सत पनिये दूसर आन ना अवर पुरख पौरा तन सुनिए अमृत हर को नाम लैक मन सब

पव जल तरना, बिनत करो अरदास, सुनो जे ठाकुर पावे, देहो दर्श मन चाऊ, भगत एहो मन ठहरावे, बलिओ चिराग अंधियार मह, सब कल उदरी एक नाम धर्म, प्रगत सगल हर पवन मह, जन नानक गुर पार ब्रह्म।

मद माता विचरत बिकल बड़ो अभमानी पर तन पर अपवाद नार निंदा यह मीठी जी माहे हतानी।

नानक काट भ्रम भरी रे मन मूस बिला मह गर्भत करतब करत महामुगना संपत दोल झोल संग झूलत माया मगन भ्रमत कुगना सुत बनता साजन सुख बंदप तां स्यों मोह बढ़ियो सो कना बोयो बीज अहं मम अंकुर बीतत औध करत अगना मृत मंजार पसार मुख निरखत उंचत भुगत भूख भुखना सिमर गोपाल दयाल सत संगत नानक जग जानत सुपना।

असव ना गज सिंघासन छिन मह त्यागत नाग सदारु सूर ना वीर ना मीर ना खानम संग ना को दृष्ट निहारु कोट ना ओट ना कोस ना छोटा करत विकार दू कर चारु मित्र ना पुत्र कलत्तर साजन साख

ज्ञान हे भगवंत कृपा करता रहु प्राण मान दान मग जोहन हीत चीत दे ले ले पारी साजन सहन मीत सुत पाई।

सगल बिदहारी पास पंखी बिरख अस्थावर बहु विद जोन प्रम्यो अत पारी हिन पल चसा नाम नहीं सिमरियो दीना नाथ प्राण पत सारी खान पान मीठ रस भोजन अंत की बार होत कत खारी नानक संत।

मनीसर रसक रसक ठाकुर गुण गावत इंदर मुनिंदर खोजते गोरख धरन गगन आवत फुन तावत

रे मन मूड सिमर सुख दाता, नानक दास तुझ समझावत। माया रंग बरंग करत भ्रम, मोह कै कूप गुबार परियो है। एता गब आकाश नाम आवत, बिस्ता अस्त क्रिम उदर परियो है। दह दिस ताए महा बिखिया को, पर धन शीन अज्ञान हरियो है। जोबन बीत जरा रोग ग्रसियो, जम दूतन दन मृत मरियो है। अनक जोन संकट नरक पुंचत, शासन दुख गर्त गरियो है। प्रेम भगत उदर है से नानक, कर कृपा संत आप करियो है। गुण समूह फल सगल मनोरथ, पूरन होई आस हमारी। औखद मंत्र तंत्र पर दुख हर, सर्व रोग खंडन गुणकारी। काम क्रोध मद मत सर तृष्णा, बिनस जाहे हर नाम उचारी। स्नान दान तापन सुच क्रिया, चरण कमल हृदय प्रवतारी। साजन मीत सखा हर बंदप, जी तान प्रभ प्राण अधारी। ओट गही स्वामी समर्थ है, नानक दास सदा बलिहारी। आवद कट्यो ना जात, प्रेम रस चरण कमल संग। दामन बंध्यो ना जात, विदे मन दर्स मग। पावक जरियो ना जात, रहियो जन तूर लग। नीर ना साकस बोर, चलह हर पंथ पग। नानक रोग दोख अग मोह, छिदे हर नाम खग। उदम कर लागे बहु पांति, विचरह अनक शास्त्र बहु खटुआ। भस्म लगाए तीर्थ बहु भ्रमते, सूखम देह बंद है बहु जटुआ। बिन हर भजन सगल दुख पावत, ज्यो प्रेम बढ़ाए सूत के हटुआ। पूजा चक्र करत सोम पाका, अनक पांत

सागर दुर्त निवारण शब्द सरे गावह गंभीर तीर मत सागर जोगी जंगम ध्यान धरे गावह इंद्राद भगत प्रहलादक आत्म रस जिन जानियो कब कल सुजास।

हर रस पूरन सर्व कला गावह सनकाद साध सदादिक मन जन गावह अशल चला गावह गुण धूम अटल मंडल वै भगत पाए रस जानियो कब कल सुजस गावो गुरु नानक राज जोग जिन मानियो गावह कपलाद आद जुगेश्वर अपरंपर अवतार वरु गावै जम दगन परसरमेश्वर कर कुठार रग तेज हरियो उदो अक्रूर बिदर गुण गावै सर्वात्म जिन जानियो कब कल सुजस गावो गुरु नानक राज जोग जिन मानियो गावह गुण बरन चार खत दर्शन ब्रह्मादिक सिमरंत गुना गावह गुण शेष सहस जिहवा रस आद अंत लिव लाग तुना गावह गुण महादेव बैरागी जिन ध्यान निरंतर जानियो कब कल सुजस गावो गुरु नानक राज जोग जिन मानियो राज जोग मानियो बस्यो निर्वैर रिदंतर सृष्ट सगल उदरी नाम ले तरियो निरंतर गुण गावह सनकाद आद जनकाद जुगह लग धन धन गुर धन जन्म सकियत भलो जग पाताल पुरी जयकार धुन कब जन कल बखाणियो हर नाम रसक नानक गुर राज जोग तै मानियो सत जुग तै मानियो छलियो बल बावन पायो त्रेतै तै मानियो राम रघुवंश कहायो द्वापर कृष्ण मरार कंस किरतारत कियो उग्र सैन कौराज अपै भगत है जन दियो कल युग प्रमाण नानक गुर अंगद अमर कहायो श्री गुरु राज अबचल अटल।

सपत दीप मजार लहना जगतर गुर पर समरार दृष्ट धरत तम हरन दहन अग पाप प्रनासन शब्द सूर बलवंत काम अर क्रोध बनासन लोभ मोह वस करन सरन जाचक प्रतपालन आत्मरत संग्रहण कहन अमृत काल ढालन सतगुरु काल सतगुर तिलक सत लागै सो पै तरै गुर जगत फिरन सिंह अंगरो राज जोग लहना करै सदा अकल लिवरहै कर्म स्यों इच्छा चारहै द्रुमस पूर ज्यों निवै खवै कस बिमल बीचारहै एह तत जानियो सर्वगत अलख बिडाणी सहज भाए संचियो किरण अमृत कल बाणी गुरगम प्रमाण तै पायो सत संतोख ग्राहज लयो हर परसे कल समुल वै।

0: है
1: नाम परस जिन पायो सत प्रगट्यो रब लोए दर्शन परसे है गुरु कै अठ सठ मज्जन होए सच तीर्थ सच स्नान अर भोजन भाओ सच सदा सच पाखंत सो है सच पायो गुर शब्द सच नाम संगति बो है जिस सच संयम वर्त सच कब जन कल बखान दर्शन परसे है गुरु कै सच जन्म परवान हमें दृष्ट शुभ करे हरे अग पाप सकल मल काम क्रोध अर लोभ मोह वस करे सबे बल सदा सुख मन वसे दुख संसार है खोवे गुर नव निद दरियाओ जन्म हम कालख धोवे सो कहो टल गुर सेविए अहनस सहज सुपाई दर्शन परसे है गुरु कै जन्म मरण दुख जाई सोइये महले तीजे के

सारी जिन भगत भवजन तारी सिमरहो सोई नाम प्रधान तित नाम रसक नानक लहना थपियो जीन सर्ब सिधि कव जन कल सुबुद्धि कीर्त जन अमरदास बिस्तरिया कीर्त रव किरण प्रगट संसार है साख तरोवर मबल सरा उत्तर दक्षिण है पुब अर पश्चिम जय जय कार्य पंथ नरा हर नाम रसन गुरमुख बरदायु उल्ट गंग पश्चिम धरिया सोई नाम अशल भगत है भव तारण अमरदास गुर कौ फुरिया सिमरह सोई नाम जख अर किन्नर साधक सिद्ध समाध हरा सिमरह नखियतर अवर ध्रुव मंडल नारदाद प्रहलाद वरा ससियर अरसूर नाम उलास है सैल लोजिन उदरिया सोई नाम अशल भगत है भव तारण अमरदास गुर कौ फुरिया सोई नाम सिवर नवनाथ निरंजन शिव सनकाज समुत्तरिया चौरासी सिद्ध बुद्ध जित राती अम्बरीक भवजन तरिया।

अमर गुर तुस दियो करतार। सत सूरो सीर बलवंत सत पहाए, संगत सघन गुरु मत निर्वैर लीना। जिस धीरज तुर धवल तुजा।

नाम नावन नाम रस खान अर भोजन नाम रस सदा चाहे मुख मिष्ट बाणी तन सतगुर सेवियो जिस पसाए गति अगम जानी कुल संभूह समुद्धरे पायो नाम निवास सके अठ जन्म कल उचरै गुर परसेउ अमर प्रगास बारज कर दाहिणै सिद्ध सनमुख मुख

गुरु अमरदास परसीय सिद्ध साधक असासह। गुरु अमरदास परसीय ध्यान लहिया पौ मुकह। गुर अमरदास परसीय अपौ लबे गौ चुकह। एक बिन दुगण जो तौ रह जा समंतर मान वह लह। जाल पाप दार्थ इतड़े गुरु अमरदास दिथे मिलह। सच नाम करतार सो दृढ़ नानक संग रहियो। ताते अंगत लहना प्रगट तास चरण है लिव रहियो। तित कुल गुर अमरदास आसा निवास तास गुण कवण बखाणो। जो गुण अलख अगम।

गुण अंत ना जानो बोहिथो विधातै निर्मयो सब संगत कुल अधरन गुर अमरदास कीरत कह त्राहे त्राहे तो पासरन आप नारायण कलातार जग मह परवरियु निरंकार आकार ज्योत जग मंडल करियो जह कहत है भरपूर शब्द दीपक दीपायो जेहे सिख है संग्रहियो तात हर चरण मलायो नानक कुल निम्मल अवतरियो अंगद लहने संग हो गुरु अमरदास तारन तरन जन्म जन्म पासरन तो जप तप सत संतोख पिख दर्शन गुर सिख है सरन पर है ते उबर है छोड़ जमपुर की लिख है भगत भाई भरपूर हृदय उचरै करतार है गुर गौहर दरियाऊ पलक डबंत्य है तार है नानक कुल निम्मल अवतरियु गुण करतार है उचरै गुरु अमरदास जिन सेवियो तिन दुख दरिद्र।

पास साध संगत हो तको तेरा हुक्म पवै निशान तो करो साहिब की सेवा जब गुर देखे शुभ दिष्ट नाम करता मुख मेवा अगम अलख कारण पुरख जो परमाव है सो कहूं गुरु अमरदास कारण करन जिव तू रख है तिव रहूं पिखे के गुर ज्ञान अर ध्यान तत स्यों तत मिलावे सच सच जानिए एक चित्त है लिव लावे काम क्रोध वस करे पवन उडंत ना तावे निरंकार कै वसै देश हुक्म बुझ।

आदसनाह ज्ञान है आसन चढ़यो ध्रम तनक कर गहयो भगत सील है सर लड़यो तै निरभउ हर अटल मन शब्द गुर नीजा गड्यो काम क्रोध लोभ मोह अपत पंच दूत बिख

इव जोद कार कनहर बूंद बसो रोमावल कुसुम बसंत गनंत ना आवे राव सास किरण उदर सागर को गंग तरंग अंत को पावे रुद्र ध्यान ज्ञान सतगुर के

कब कल ठकुर हरदास तनी गुर रामदास सार अपार परी सतगुर मत गूढ़ बिमल सत संगत आत्म रंग चलूल भया जागिया मन कवल सहज प्रकाशिया अपै निरंजन करह लहा सतगुर दयाल हर नाम दिरडाया तिस प्रसाद वस पंच करे कब कल ठकुर हरदास तनी गुर रामदास सार अपार परी अनभव उन्मान अकल लिव लागी पारस भेटिया सहज करी सतगुर प्रसाद परम पद पाया भगत पाए भंडार परी मेटिया जन्मांत मरण भउ भागा चित लागा संतोख सरे कब कल ठकुर हरदास तनी गुर रामदास सार अपार परे अपार परे पायो अपार हृदय अंतर तारियो दुख भंजन आत्म प्रबोध मन

माणे नानक प्रसाद अंगद सुमत गुर अमर अमर वरतायु गुर रामदास कल उचरे तैं अटल अमर पद पायु संतोख सरोवर बसे अमै रस रसन प्रकाशे मिलत शांत उपजे दुरत दूर अंतर नासे सुख सागर पायो दिंत हर मगना हुटे संजम सत संतोख सील सनाहुम फुटे सतगुर प्रमाण बिदने सिरियो जग जस तूर बजायो गुर रामदास कल उचरे तैं अपै अमर पद पायो जग जितो सतगुर प्रमाण मन एक त्यायो तन तन सतगुर अमरदास जिन नाम दिरडायो नव निध नाम निदान रिध सिद्ध ता की दासी सहज सरोवर मिलियो पुरख भेट्यो अबनासी आदले भगत जित लग तर

कै सतगुर शब्द अथाह अमै तारा रस गुटै मत माता संतोख पिता सर सहज समायो अजूनी संभवयो जगत गुर बचन तरायो अवगत अगोचर अपर पर मन गुर शब्द वसायो गुर रामदास कल उच्चरै तै जगत उदाहरण पायो जगत उदाहरण नव निदान भगत है भव तारन अमृत बूंद हर नाम बिस की बिखै निवारण सहज तरोवर फलियो ज्ञान अमृत फल लागी गुर प्रसाद पाई है तन ते जन बड़ भागी ते मुक्त भय सतगुर शब्द मन गुर परचा पायो गुरु रामदास कल उचरै

गुर पायो तिन सकी अथो जन्म जग श्री गुरु सरन भज कल कब भुगत मुकत सब गुरु लग सतगुर खेमा तानिया जुग जूथ समाणी अनपहु नेजा नाम टेक जित भगत आगाणी गुरु नानक।

रस जानी जनक सोए जिन जानिया उन मन रथ धरिया सत संतोख समाचरे अपरा सर भरिया अकथ कथा अमरापुरी जिस दे सो पावे त्यो जनक राज गुर रामदास तुझ ही बण आवै।

खिन मातर जा कौ दृष्ट तारै शब्द रिद बीचारै काम क्रोध खोवै जियो जियन सभन दाता अगम ज्ञान बिख्याता अहनस ध्यान तावै पलक ना सोवै जियो जा को देखत दरिद्र जावै नाम सो निदान पावै गुरमुख ज्ञान दुर्मत मैल धोवै जियो सतगुर नाम एक लिव मन जपै दृढ़ तिन जन दुख पाप कहो कत होवै जियो धर्म कर्म पूरै सतगुर पाई है जा की सेवा सिद्ध साध मुन जन सुर नर जाचै।

ओंकार अकथ कथनहार तुझ बुझाई है परम भूले संसार छुट हो जूनी संगार जम को ना दंड काल गुरमत।

ज्ञान पांच भूत बस कीने जमत ना त्रास गुरु अमर गुरु श्री सत कल जोग राखी पत अघन देखत गत चरण कवल जास सब विद मान्यो मन तब ही भयो परसन राज जोग तखत दीयन गुर रामदास रड जिसह धार्यो तरत अर व्योम अर पवन ते नीर सर अवर अनल अनाद कियो सास रेख निस सूर दिन सैल तरु फल फूल दियो सुर नर सप्त समुंदर के धार्यो त्रि भवन जास सोई एक नाम हर नाम सत पायो गुर अमर परगास कच्चो हो कंचन भयो शब्द गुर श्रवण है सुनियो बिख ते अमृत होयो नाम सतगुर मुख भण्यो लोहो होयो लाल नदर सतगुर जद धारै पाहण माणिक करै ज्ञान गुर कहियो बीचारै काठो श्री खंड सतगुर कियो दुख दरिद्र तिनके गए सतगुरु चरण जिन परसिया से पास परेत सुर नर भए

ते अकियत संसार में गुरु गुरु गुर कर मन मेरे तारन तरन समरथ कल युग सुनत समाध शब्द जिस केरे हुन दुखन नास सुखदायक सूरो जो धरत ध्यान।

जो हर बुद्ध रिद्ध सिद्ध चाहत गुरु गुरु गुर कर मन मेरे गुरु मुख देख गुरु सुख पायो पुती जो प्यास पियूस पिवन की बंचत सिद्ध कहो बिद मलायो पूरन पो मन ठौर बसो रस बासन स्यो जो दहं दिस तायो गोबिंद वाल गोबिंद पुरी सम जलन तीर बेपास बनायो गयो दुख दूर बरखन को सो गुरु मुख देख गुरु सुख पायो समरथ गुरु सिर हाथ धरयो गुरु कीनी कृपा हर नाम दियो जिस देख चरन अगन हरयो निस बासर एक समान ध्यान सो नाम सुने सुत पान डरयो पान दास सो आस जगतर गुरु की पारस भेट परस करयो रामदास गुरु हर सत कियो समरथ गुरु सिर हाथ धरयो अब राखो दास पाठ की लाज जैसी राखी लाज भगत प्रहलाद की हर नाखश फारे कर आज फुन द्रौपदी लाज रखी हर प्रभ जी सीनत बस्तर दीन बहु साज सोदामा अपदा ते राखिया।

शब्द हर हर जपै नाम नव निध अपै रसन एहन सरसै सत कर जानी ओहो हुन प्रेम रंग पाईऐ गुरमुख है त्याईऐ अन मार्ग तजहो भजहो हर ज्ञानी ओहो बचन गुर रिद धरहो पंच भू बस करहो जन्म कुल उधरहो द्वार हर मानी ओहो ज्यो ता सब सुख इत उत तुम बंचवहो गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप प्राणी ओहो गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप सत कर अगम गुण जान निदान हर मन धरहो ध्यान अहनस करहो बचन गुर हृदय धार हुन गुरु जल बिमल अथाह मज्जन करहो संत गुर सिख तरहो नाम सच रंग सार सदा निर्वैर निरंकार निर्भउ जपै प्रेम गुर शब्द रस करत दृढ़ भगत हार मुग्ध मन भ्रम तजहो नाम गुरमुख भजहो गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप सत कर गुरु गुर गुर करहो गुरु हर पाईऐ उदद गुर गहर गंभीर बेअंत हर नाम नग हीर मन मिलत लिव लाईऐ हुन गुरु परमल सरस करत कंचन परस मैल दुरमत हिरत शब्द गुर त्याईऐ अमृत प्रवाह छुटकंत सद द्वार जिस ज्ञान गुर बिमल सर संत सिख नाईऐ नाम निर्वाण निदान हर उर धरहो गुरु गुर गुर करहो गुरु हर पाईऐ।

जी तारहु मानस जन्म देह निस्तारहु गुर जहाज खेवट गुरु गुर बिन तरिया ना कोए गुर प्रसाद प्रभ पाई है गुर बिन मुक्त ना होए गुर नानक निकट बसे बनवारी तिन लहना थाप जोत जग तारी लहने पंथ धर्म का किया अमरदास भले कौ दिया तिन श्री रामदास सोडी थिर थप्यो हर का नाम अखै निद अप्यो अप्यो हर नाम अखै निद चौहो जुग गुर सेवा कर फल लहियन बंद है जो चरण सरण सुख पाव है परमानंद गुरमुख कहियन प्रताख दे पार ब्रह्म स्वामी आद रूप पोखण भरन सत गुर गुर सेव अलख गत जाकी श्री राम दास तारन तरन जे अमृत बचन बाणी साधु जन जप है कर बेचित चाओ आनंद नित मंगल गुर दर्शन सफल संसार संसार सफल गंगा गुर दर्शन परसन परम पवित्र गति जीता है जम लोक पतत जे प्राणी हर जन शिव गुर ज्ञान रते रघुवंश तिलक सुंदर दशरथ घर मुन वंश है जाकी सरनं सतगुर गुर सेव अलख गत जाकी।

जग जन्म मरण भगा ए आई ही है प्रतीत प्रतीत ही है आई जिन जन कै तिन को पदवी उच भई तज माया मोह लोभ अर लालच काम क्रोध की बिरथा गई अवलोकया ब्रह्म परम सब छुटकया दिव दृष्ट कारण करन सत गुर गुर सेव अलख गत जाकी श्री राम दास तारन करन प्रताप सदा गुर का घट घट प्रगास भया जस जन कै एक पढ़ है सुनह गाव है प्रभाते है करह स्नान स्नान करह प्रभात शुद्ध मन गुर पूजा विद सहत करन कंचन तन होए परस पारस कहो जोत स्वरूपी ध्यान धरं जग जीवन जगन्नाथ जल थल मह रहया पूर बहु विद वर्ण सत गुर गुर सेव अलख गत जाकी श्री राम दास तारन तरन जिन्हों बात निश्चल ध्रुव जानी ते जीव काल ते बचा तिन तरयो समुद्र रुद्र खिन इक मह जल हर बिंब जुगत जग रचा कुंडलनी सुरजी सत संगत परमानंद गुरु।

देख रूप अत अनूप मोह महामग पई किंकनी शब्द चनतकार खेल पाहे जियो काल कलम हुक्म हाथ कहो कौन मेट सकै ईस बम्यो ज्ञान ध्यान धरत ही है चाहे जियो सत साच श्री निवास आदि।

परम धाम शुद्ध बुद्ध निरीकार बेशुमार सरबर कौ काहे जियो सुथर चित भगत हित भेख धरियो हरनाख शहरियो नाख बेदार जियो शंख चक्र गदा पदम आप आप कियो शदम अपरंपर पार ब्रह्म लखै कौन ताहे जियो सत साच श्री निवास आ

संभाल मुकट शीश मोर पंख चाहे दियो देव जीर बड़े तीर तर्म अंग अलाके अगम खेल किया अपने उशाहे दियो अकथ कथा कथी ना जाए तीन लोक रहे आसमाए सुतह सिद्ध रूप धरयो साहन कै साहे जियो सत साच श्री निवास आदि।

मतरा पन भाग भले उनके मन इच्छत ही फल पावत है। रब के सुत को तिन त्रास कहां, जो चरण गुरु चित लावत है। निर्मल नाम सुदा पर पूरन, शब्द तरंग प्रगटत दिन आगर। गह

कर देखो दर्शन गुरु सगल सुख सागर जा को मन ध्यान धरै फिरत सगल जुग कबहू का को पावै आत्म परगास को वेद बाणी सहत बिरंच जस गावै जाको शिव मुन गह नात जात कबलास को जा को जोगी जति सिद्ध साधक अनेक तप जटा जूट पेख किए फिरत उदास को सो तिन सतगुरु सुख पाए कृपा धारी जी नाम की बढ़ाई दई गुर रामदास को नाम निदान ध्यान अंतरगत तेज पुंज तिहों लोग परगासे देखत दर्श भटक भ्रम भजत दुख पर हर सुख सहज बिगासी सेवक सिख सदा अत लुभित अल समूह जो कुसुम सुबासी विदह मान गुरे आप थप्यो थिर।

परमात्मा अवर कबीर पणन तिनको अवतार पयो कल पिंतर जस जगतर पर छायो श्री गुरु रामदास जयो जय जग मह तैं हर परम पद पायो मनसा कर सिमरंत तुझे नर काम क्रोध मिट्यो जो तिनं बाचा कर सिमरंत तुझे तिन दुख दरिद्र मिट्यो जो खिण कर्म कर तो दर्श परस पारस सर बल भट जस गायो श्री गुरु रामदास जयो जय जग मह तै हर परम पद पायो जेहे सतगुर सिमरंत नैन के तिमर मिटह खिन जेहे सतगुर सिमरंत हृदय हर नाम दिनो दिन जेहे सतगुर सिमरंत जी की तपत मिटावै जेहे सतगुर सिमरंत रिद सिद्ध नव निद पावै सोई रामदास गुर बल पाण मिल संगत धन धन करहो जेहे सतगुर लग प्रभ पाईऐ सो सतगुर सिमरहो नरहो जिन शब्द कमाए परम पद पायो सेवा करतना छोड्यो पास ताते गौहर ज्ञान प्रगट उजियारू दुख दरिद्र अंधियार को नास कब कीर्त जो संत चरण मुड़ लाग है तिन काम क्रोध जम को नहीं त्रास जिव अंगद अंग संग नानक गुर तिव गुर अमरदास कै गुर रामदास जिन सतगुर सेव पदार्थ पायो निसबासर हर चरण निवास ताते संगत सगन

अत हुए रहस मन सोई संत सहार गुरु रामदास नानक नाम निरंजन जानियो किन्नी भगत प्रेम लिवलाई तांते अंगद अंग संग भयो शायर तिन शब्द।

लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, ते मलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ

तो हे जस बक्ता कुल सोडी गुर राम दास तन धर्म तुजा अर्जन हर भगता त्रम धीर गुरमत गंभीर पर दुख बसारन शब्द सार हर सम उधार अहमेव निवारण महादान सतगुर ज्ञान मन चाओ न हुटै सतवंत हर नाम मंत्र नव निध नान खुटै गुर राम दास तन सर्ब मैं सहज चंदुआ ताण्यो गुर अर्जन कल उचरै तै राज जोग रस जानियो पै निरपहु माणियो लाख मह अलख लखायो अगम अगोचर गत गंभीर।

हर पूरन ब्रह्म निवास लियो, जब लो नहीं भाग ललार उदय, तब लो भ्रमते फिरते बहुत आयो, कल घोर समुन्दर मैं बूढ़त थे, कबहू मिट है नहीं रे पछतायो। तत विचार यह मथुरा, जग तारन को अवतार बनायो, जप्यो जिन अर्जन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ न आयो। कल समुन्दर भय रूप, प्रगट हर नाम उदारन, बस है संत जिस हृदय, दुख दारिद्र निवारण, निर्मल भेख अपार, तास बिन अवर ना कोई, मन बच जिन जानियो, भयो ते समसर सोई।

खहर अजय गंग जल अटल सिख संगत सब नावे नित पुराण बाची है वेद ब्रह्मा मुख गावे अजय चवर सिर टुले नाम अमृत मुख लियो गुरु अर्जन सिर शतर आप परमेश्वर दियो मिल नानक अंगद अमर गुर गुर रामदास हर पह गयो हर वंश जगत जस संचरयो सो कवन कह श्री गुरमुयो देवपुरी मह गयो आप परमेश्वर पायो हर सिंघासन दियो श्री गुरु तह बैठायो रहस कियो सुर देव तोहे जस जय जय जंपह असुर गए ते भाग पाप तिन भीतर कंपह काटे सो पाप तिन नरहु के गुर राम दास जिन पायो छत्र सिंघासन पृथ्वी गुरे

किव करी निवन ना जाए थनी गच जे लगा गिड़बड़ी सखिए तौल हरी से पी तहंदे डिठ मैं मुंद ना गर्भ थनी सुन मुंदे हर नाखिए गूड़ा वैन अपार पहला

होए। ज्ञानी जीवे सदा सदा सुरती ही पत होए। सर्फे सर्फे सदा सदा एवे गई विहाय। नानक किसनो आखिए बिन पुछिया ही ले जाए। दोष ना दे ओ राए नो मत चले जा बुढ़ा होवे। गल्लां करे कनेरियां ता अन्ने पवना खाती तोवे। पूरे का किया सब कुछ पूरा घट।

ठग मनमुख बन चलाई है ना मिलही वग सग आप भुलाए भुलिया आपे मेल मलाए नानक गुरमुख छुटिया जे चले सतगुर पाई साला ही सालाहना पी सच्चा सालाही।

गुर शब्दी हर मन वसै माया की भुख जाय से जन निर्मल उजले जे गुरमुख नाम समाय नानक होर पातशाहियां कूड़ियां नाम रते पातशाह ज्यों पुरख है कर भगती नार है अत लोचै भगती पाए बहु रस सालने सवार दी खट रस मीठे पाए त्यों बाणी भगत सलाह दे हर नामै चित लाए मन तन धन आगै राखिया सिर वेचिया गुर आगै जाए तै भगती भगत बहु लोच दे प्रभ लोचा पूर मिलाए हर प्रभ भी परवाह है।

जिव है मन चढ़िया दसवें आकाश किथे ऊग ना भुख है हर अमृत नाम सुख वास नानक दुख सुख व्यापत नहीं जिथे आत्म राम परगास काम क्रोध का चोलड़ा सब गल आए पाए एक उपजह एक बिनस जाहि हुक्म आवे जाए जम्मण मरण ना चुकई रंग लगा दूजे पाए बंधन बंद पवाईयन करना कछु ना जाए जिनको कृपा धारियन तिन्ना सतगुरु मिलिया आई सतगुरु मिले उल्टी पई मर जीविया सहज सुपाई नानक भगती रतिया हर हर नाम समाय मन मुख चंचल मत है अंतर बहुत चतुराई कीता करत्या बिरथा गया एक तिल थाए ना पाई पुन दान जो बीज दे सब धर्म राय कह जाई बिन सतगुरु जम काल ना छोड़ई दूजे भाए खुआई जो बन जांदा नदर ना आवई जर पहुंचे मर जाई पुत कलात मोह हेत है अंत बेली को ना सखाई सतगुर सेवे सो सुख पाई नाओ वसे मन आई नानक से वड्डे वड भागी जे

अंधले तिसमह अग्नि का वास, वाणी सुरत न बुझनी शब्द न करह परगास। ओना अपनी अंदर शुद्ध नहीं गुर बचन न करह विसास। ज्ञानिया अंदर गुर शब्द है नित हर लिव सदा विगास। हर ज्ञानिया की राखदा हौ सद बलिहारी तास। गुरमुख जो हर सेम दे जन नानक तां का दास। माया पुयंगम सर्प है जग घेरिया बिख माए। बिख का मारन हर नाम है गुर गरुड़ शब्द मुख पाए। जिनको पूर्व लिखिया तिन सतगुर मिलिया आए। मिल सतगुर निर्म

नानक बिन नावे सुख नहीं, आए गए पछताहे, चिंता तावत रह गए, ता मन भया आनंद, गुर प्रसादी बुझी है, सा तन सुती निचिंद, जिनको पूर्व लिखिया, तिन्ना भेटिया गुर गोविंद, नानक सहजे मिल रहे, हर पाया परमानंद, सतगुर सेवन अपना, गुर शब्दी विचार, सतगुर

पास एहो मन शब्द ना भेजो क्यों होवै घर वास मन मुखियां दोहागनी आवन जान मुयास गुरमुख नाम सुहाग है मस्तक मणि लिख।

उर तार तिसना बुझै तिपत होए हर कै नाए प्यार नानक गुरमुख पाईऐ हर अपनी कृपा तार बिन शब्द है।

आई नानक करता सब किश जानदा जिन रखी बणत बनाई होम जग सब तीर्था पढ़ पंडित थके पुराण बिख माया मोह ना मिटई विच हूं मैं आवन जान सतगुर मिले मल उत्तरी हर

बहु चित्तवदि बहु आशा लोभ विकार मन मुख अस्तर ना थी मर बिन सजाई खिनवार।

पाए। सत संगत हर मेल प्रभ, हर नाम बसै मन आए। जन्म मरण की मल उत्तरै, जन नानक हर गुण गाए। तुर हर प्रभ करतै लिखिया, सो मेटना न जाई। जियो पिंड सब तिसदा, प्रतपाल करे हर राय। चुगल निंदक भुखे रुल मोए, इना हाथ ना कथाऊ पाए। बाहर पखंड सब कर्म करह, मन हिरदय कपट कम।

मिटिया अंतर अज्ञान गुबार। तब नर सुत्ता जागिया सिर डंड लगा बहु पार। गुरमुख करा उपर हर चीतिया।

गुर प्रसादी हर रस त्रापै, हर दरगह गुर शब्द सिंघापै, बिन शब्द मुआ है सब कोई, मन मुख मुआ अपना जन्म खोए, हर नाम ना चेत है अंत दुख रोए।

सदा सदा हर गुण रवहै, अंतर सहज ध्यान ओए सदा आनंद विवेक रहै, दुख सुख एक समान तिन्ना नदरी इको आया, सब आत्म राम पछान मनमुख बालक बिरद समान है, जिन्ना अंतर हर सुरत नाही विच हम मैं कर्म कमाव दे, सब धर्म राय कै जाही गुरमुख हच्छे निर्मले, गुर कै शब्द सुपाई ओना मैल पतंग ना लगई, जे चलन सतगुर पाई मनमुख झूठ ना उतरै, जे सौ धोवन पाई नानक गुरमुख मेलियन, गुर कै अंक समाई बुरा करे सो केहा सिजै, अपने रोहे आपे ही दज्जै, मनमुख कमला रगड़ै लुजै, गुरमुख होए इस सब किस सुजै।

हर जग जीवन उर धार, नानक गुरमुख सोहणे तित सच्चै दरबार। हर मंदर हर साजिया

सुख पाया हत तिसना तज विकार जन्म मरण का दुख गया जन नानक शब्द बीचार हर हर नाम त्याए मन हर दरगाह पावह मान किल विख पाप सब कटी है हौ मैं चुकै गुमान गुरमुख कमल विगसिया सब आत्म ब्रह्म पछान हर हर कृपा धार प्रभ जन नानक जप हर नाम तनासरी तनवंती जानी है भाई।

तिसका क्या सलाही है भाई, दर्शन को बल जाय। सतगुर विच वड्डियां वड्याईयां भाई, कर्म मिले ता पाई। एक हुक्म मन ना जाननी भाई, दूजे भाए फराय। संगत ढोई ना मिले भाई, बैसन मिले ना खाऊ। नानक हुक्म तिना मनाए सी भाई, जिन्ना तुरे कमाया नाउ। तिन विटहु हौ वारिया भाई, तिन कौ सद बलिहार जाऊ। से दाड़ियां सचियां जे गुर चरनी लगन, अनदिन सेवन गुर अपना अनदिर अनद रहन। नानक से मुह सोहणे सच्चे दर दिसन, मुख सच्चे सच दाड़ियां, सच बोले है सच कमाहे। सच्चा शब्द मन वसिया, सतगुर माहे समाहे। सच्ची राशि सच धन, उत्तम पदवी पाहे। सच सुन है सच मन लैन, सच्ची कार कमाहे। सच्ची दरगाह बैसना, सच्चे माहे समाहे। नानक बिन सतगुर सच ना पाईऐ, मनमुख भूले जाहे। बाबी हा प्रियो प्रियो करे, जल निद प्रेम प्यार। गुर मिले सीतल जल पाया, सब दुख निवारण हार। तिस चुकै सहज उपजै, चुकै कूक पुकार। नानक गुरमुख शाह।

बूंद पवै सहज सुभाय जल ही ते सब उपजै बिन जल प्यास ना जाय नानक हर जल जिन पिया तिस भूख ना लागै आय बाबी हा तू सहज बोल सच्चै शब्द सुभाय सब किश तेरे नाल है सतगुर दिया दिखाय आप पछाण है प्रीतम मिले वुठा शह पर लाय चिम चिम अमृत वरसदा तिसना भुख सब जाय कूक पुकार ना हो गई ज्योति ज्योत मिलाय नानक सुख समन सुहागनी सच्चै नाम समाय तुरों खसम भेजिया।

हे तन मन सुख होए जा तत बूंद मोहे पाए अन धन बहुता उपजै धरती शोभा पाए अन दिन लोक भगत करे गुर कै शब्द समाए आपे सच्चा बख्श लए कर कृपा करै रजाए हर गुण गावो कामणी सच्चै शब्द समाए भय का सहज श्रृंगार करे हो।

पास सतगुर मिले है जल पाई है चूकै भूख प्यास जियो पिंड सब तिसका सब किश तिसकै पास बिन बोलिया सब किश जानदा किस आग्या कीचै अरदास नानक घट घट एको वरतदा शब्द करे परगास नानक तिसै बसंत है जे सतगुर सेव समाए हर गुठा मन तन सब परफड़ै सब जग हरियावल होए शब्दे सदा बसंत है जित तन मन हरिया होए नानक नाम ना विसरै जिन सिरिया सब कोए नानक तिना बसंत है जिन्ना गुरमुख वस्या मन सोए हर उठै मन तन परफड़ै सब जग हरिया होए वडड़ै चाल चाल चलंबलै।

योग पाइए सतगुर कै उपदेश चारे कुंडा जे पवह वेद पढ़ह जुग चार नानक साचा भेटै हर मन वसै पावह मोख द्वार नानक हुक्म वरतै खसम का मत पवी फिरह चल चित मन मुख सहु कर दोस्ती सुख के पुछह मित गुरमुख सहु कर दोस्ती।

नानक सतगुरु वाह वाह जिसके नाम प्राप्त होए हर प्रभ सच्चा सोहिला गुरमुख नाम गोविंद अन दिन नाम सलाहना हर जपिया मन आनंद वड भागी हर पाया पूर्ण पर

नानक थीवन पी हरे जिन्ना गुरमुख अंदर ने हो तै प्रीतम सच्चै लाया राती अतै दे हो नानक प्रेम समाया गुरमुख सच्ची आशकी जित प्रीतम सच्चा पाईऐ अन दिन रह आनंद नानक सहज समाईऐ।

हुक्म अरादि हुक्मे समय समाय हुक्म वर्त नियम सोच संयम मन चिंदिया पल पाए सदा सुहागण।

कूड करे आहार भिख माया धन संच मर है अंते हुए सब शार कर्म धर्म सुच संजम कर है अंतर लोभ विकार नानक मनमुख जे कमावे सो थाए ना पवे दरगाह हुए खुआर सबना रागा विच सो भला पाई जित वसिया मन आए राग ना

आए जम्मन मरन ना चुकई हौ मैं कर्म कमाए गुर सरनाई उबरे नानक लय छडाए सतगुर पुरख हर त्याईंदा सत संगत सतगुर पाए सत संगत सतगुर सेवंदे हर मेले गुर मेलाए एहो भौजल जग

पार लंघाए, गुरसिखा की हर तूड़ देह, हम पापी पी गत पाहे, तुर मस्तक हर प्रभ लिखिया, गुर नानक मिलिया आए, जम कंकर मार बधारियन,

राग जीते पंच बैराइया नानक सफल मारू एहो राग जामू एक ता लख तो जीती।

जागन जे रसना नाम उचारने मृग तिसना पेख भुलने वुठे नगर गंधर्व जिन्नी सच अरादिया नानक मन तन फब पतत उदाहरण पार ब्रह्म समरथ पुरखे अपार जिस है उदारे नानका सो सिमरे सिरजनहार।

निस दिन जो नानक भजे सफल होहे ते काम। जिह बागुन गोबिंद भजो करन सुनो।

कहो नानक बिन हर भजन परत ताही जम फंद जो सुख कौ चाहे सदा शरण राम की ले कहो नानक सुन रे मना दुर्लभ मानुख दे माया कारण तावही मूरख लोग अजान कहो नानक बिन हर भजन बिरता जन्म सिरान जो प्राणी निस दिन भजे रूप राम ते जान हर जन हर

कहो नानक हर भज माना अंत सहाई होए जन्म जन्म परमत फिरयो मिटयो ना जम को त्रास कहो नानक।

पहारा कौ खटियो पौरा नद गाई अष्टमाल कौ सक संग लाई पुन आयो हिंडोल पंच नार संग अष्ट सोतन।

गवरी गावह असावरी तेह पासह सिंधवी अलापी श्री राग स्यों पांचों थापी सालू सारग सागरा और गोंड गंभीर

असंख भाव, असंख पूजा, असंख तपताओ, असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख योग मान रह उदास, असंख भगत गुण ज्ञान।

ते सूचे कौ जाने सोए, जेवड आप जाने आप आप, नानक नदरी करमी दात, बहुता कर्म लिखिया ना जाए, वड्डा दाता तिल ना तुमाए, केते मंगह जोध अपा।

हम कीरे किरम सतगुर शरणाई तर दया नाम परगास। मेरे मीत गुरदेव मुख और राम नाम परगास। गुरमत नाम मेरा प्राण सुखाई।

तिनका पौ सब गवासी, जिन सेव्या जिन सेव्या मेरा हर जी, ते हर का रूप समासी, से तन जिन हर त्याया जी, जन नानक तिन बल जासी, तेरी भगत पंडार जी, परे बेंत बेंता, तेरे भगत सलाहंतु जी, हर अनक अनेक अनंता, तेरी अनक करे घर पूजा जी, तब तप है जपे बेंता, तेरे अनेक पड़े बो सिमरत साहत जी, कर क्रिया खड़ कर्म करंता, से भगत पले जन नानक जी, जो पावे मेरे घर भगवंता। तू आद पुरख परंपर करता जी, तो जेवड़ अवर न कोई।

नित नित जीड़े समालियन देखेगा देवनहार तेरे दाने कीमत ना पवे ते दाते तमन सुमार संबत साहा लिखिया मिलकर पावो तेल देव सज्जन असीसड़िया जो होवे सह सो मेल कर कर एहो।

क्रोध नगर बो परया मिल साधु खंडल खंडा है। पूर्व लिखत लिखे गुर पाया मान हर लिव मंडल मंडा है। कर साधु अंजलि पुन वड्डा है। कर नौत पुन वड्डा है। रखाओ साकत हर साधु।

तन सास अड़सठ तीर्थ का मुटिकता तिरकड़ मत विगास उत्मति सालहाना सच नाम गुणतास बाबा होर मत होर जे सो वेर कमाई है कूड़े कूड़ा जोर रहाव पूजल के पीर आखिए ता मिले संसार नाओ सदाए अपना होवे सिद्ध समार जापत लेखे ना पवे सबा पूज खुवार जिनको सा गुर थापिया तिन मेट न सके कोय ओ न अंदर ना मनदान है नामो प्रगट होए नाओ पूजिए नाओ मनिए अखंड सदा सच सोए खेऊ खेर लाइए ता जियो के आ होए जलियां सब सियाणपा उठी चलिया रोए नानक नाम सा।

सुख होए। जग सुपना बाजी बनी फिर मैं खेल खिलाए, संजोगी मिल एक से वियोगी उठ जाए। जो भाणा सोती है अवरना करना जाए, गुरमुख वस्त विसाई है सच वखर सच रास। जिन्नी सच वणजया गुर पूरे साबास, नानक वस्त पछाण सी सज सौदा जिस पास। श्री राग महल पहला।

बल माटी पया मन माया मोहे मनूर औगुण फिर लागू पये पूर्व जावे तूर बिन शब्दे परमाई है दुबदा डोबे पूर मन रे शब्द तरो चित लाए जिन गुरमुख नाम ना बूझिया मर जन्मे आवे जाए राव तन सूचा सु आखिए जिसमें सचा नाव पय सच राती देहोरी जेवा सच सुवाओ सची नगर निहालिए बौड़ न पावे ताओ साचे ते पवना भया पवने ते जल होए जलते ते पवन साजया घड़ घड़ जोत समोए निर्मल मैला नाथिए सब दरते पद होए यो मन साज संतोखिया नदर करे तसमाहे पंच भूत सज पैरते जोत सची मन माहे नानक अवगुण विसरे गुर राखे पद तागे श्री राग महला पहला नानक बेड़ी सच की तरिये गुर विचार एक आवे एक जावही पूर परे अहंकार मन हट मत्ती बूढ़ी है गुरमुख सच सो तार गुरबिन क्यों तरिये सुख होए जो भावे त्यों राख तू मैं अवरना दूजा कोए रहाओ आगे देखो डाओ जलै पाछे हरेओ अंगूर जिसते उपजे तिसते बिनसे घड़ घड़ सच भरपूर आपे मेल मिलावही ताचे महल हदूर साहे साहे तुस्तमला कदे राम सारे ओ ज्यो ज्यो साहब मन से गुरमुख अमृत पेयो मन तन ते रातू तनी गर्भ निवार समेयो जित्यो जगत्यो पाया तिर पवन कर आकार गुरमुख चानन जानिए मनमुख मुग्ध गुबार घड़ घड़ जोत निरंतरी बूझे गुरमुख सार गुरमुख जिन्नी जाने।

पोते ना पवे, इन हर गुर दर्श ना होए, खोटे जात ना पात गए, खोड़ ना सीज सकोए, खोटे खोड़ कमावना आए गया पद खोए, नानक मन समझाई है, गुर के शब्द सालाहा, राम नाम रंग रतिया, पार ना परम तिनाहा, हर जप लहा अगला, निरपो हर मन माहा।

अमृत सच्चा नाम है, तैना कछु न जाए, पीवत हु परवान पया, पूरे शब्द समाए, आपे देता पाई है, होर करना किशु न

क्या जप करी सतगुर पूछो जाए, सतगुर का पाणा मन लई विचों आप गवाए, एहा सेवा चाकरी नाम से मन आए, नामे ही ते सुख पाईए सच्चे शब्द सुहाए, मन मेरे अनदिन जाग हर चेत, अपनी खेती रख ले ऊंज पड़ेगी खेत, हरहाओ मन की इच्छा पूरिया शब्द रहा भरपूर, पए पाए भगत करे दिन राती हरजू वेखे सदा हदूर, सच्चे शब्द सदा मन राता भ्रम गया शरीरों दूर, निर्मल साहिब पाया साचा गुणी धीर, जो जागे से उबरे सूते गए मुहाए, सच्चा शब्द ना पछाण्यो सुपना गया विहाय, सुन्ये कर का पौना ज्यो आया त्यों जाए, मानव जन्म बिरता गया क्या मोदे सी जाए, सब कुछ आपे आप है होमे विच कहन ना जाए, गुर के शब्द पछाणिए दुख होमे विचों गवाए, सतगुर से मन अपना हों तिनके लागो पाए, नानक दर सच्चे।

आपे सतगुर आप हर, आपे मेल मिलाए, आप दया कर मेल सी, गुर सतगुर पीछे पाए, सब जग जीवन जग आप है, नानक जल जले सुमाए, त्री राग महला चौथा, रस अमृत नाम रस अब भला, केत बिद मिले रसकाए, जाय पुछो सुहागणी, तुसा क्यों कर मिलया प्रभ आए, कोय वे प्रवाह ना बोलनी, हो मरमल धोवा तिन पाए, भाई रे मिल सज्जन हर गुणसार, सज्जन स गुरपुरख है, दुख कड्ढे हो मे मार, हरहाओ गुरमुखिया सुहागणी, तिन दया पई मन आए, सतगुर वजनर तन है, जो मने सो हर रस खाए, सेवड भागी वड जानिए, जेन हर रस खादा गुर पाए, यो हर रस वणतन सबत है, भागहीन नहीं खाए, बिन सतगुर पल्ले ना पवे, मानमुख रहे बिरलाए, कोई सतगुर आगे नानवे, उन्ना अंतर क्रोध बलाए, हर हर हर रस आप है, आपे हर रस होए, आप दया कर देवसी, गुरमुख अमृत टोए, सब तन मन हरिया होया, नानक हर वसया मन सोए।

गुरपूरा आराध नित एक सकी लिवलाग हरहाओ इको भाई मित एक इको मात पिता एक सकी मन टेक है जिन जियो पिंड दिता तोपरा मनो ना विसर जिन सब किश।

तिनकी शोभा निर्मली प्रगट पई जहान। जिन्नी मेरा प्रत्याया नानक तिन कुर्बान। श्री राग मोहल्ला पंजवां। मिल सतगुर सब दुख गया, हर सुख वस्या मन आए। अंतर जोत प्रगासिया एक सिउ लिवलाए। मिल साधु मुख उजला

काट, संत संग हर सिमरना, मल जन्म जन्म की काट, मन मेरे राम नाम जप जाप, मन इच्छे फल पहुंच तू।

संता संगत मानस प्रीतम भग सिंध जिन सेव्या प्रवे अपन सोई राज नरेंद्र अवसर हर जस गुण रावण जित कोड मजन इस

निर्मल तिस बिन रहन ना जाए। मेरे मन तन पुख अत अगली हुई आन मिलावे माए, चारे कुंडा पालियां सह बिन अवर ना जाए। इस आगे अरदास कर जो मिले करतार, तल गुरदाता नाम का पूरा जिस पंडार,

पौ संत सरणी लाग चरणी, मिटे दुख अंधार, सत संतोख दया कमावे एक करनी सार। आव छोड़ सब होए रेणा, जे दे प्रभ निरंकार, जो दिसे सो सगल तू है पसरिया पासार। कहो नानक गुर परम काटिया सगल ब्रह्म विचार। श्री राग महला पंजवा, दुकृत सुकृत मंद संसार सगलाना, दूते रहत भगत है कोई विरला जाना। ठाकुर सर्वे समाना, क्या को सुनो स्वामी तू वड़ पुरख सो जाना। रखाओ मान अवमान मंद सो सेवक नाही, तत्समदर्शी संतो कोई कोड़ मंदाही। कैन कहामन यो कीर्त करला, कथन कैन ते मुक्ता गुरमुख कोई विरला। गात अवगत कछ नदर न आया, संतन की रेण नानक दान पाया।

सबसे दे आधार सतगुर भजन कमावणे सच्चा इहो वीचार बिन साधु संगत रत्या माया मोह सब शार मेरे साजन हर हर नाम समाल साधु संगत मन वस पूर्ण होवे काल अरहाओ गुर समरथ अपार गुर वड़भागी दर्शन होए गुर अगोचर निर्मला गुर जेवड़ अवर ना कोए गुर करता गुर करण हार गुरमुख सती सोए गुर ते बाहर किश नहीं गुर कीता लोड़े सो होए गुर तीर्थ गुर पार जात गुर मनसा पूर्ण हार गुर दाता हर नाम दे उदरे सब संसार गुर समरथ गुण रंकार गुर ऊंचा अगम्य पार गुर की महिमा अगम है क्या कथ है कथन हार जितड़े फल मन बाचिए तितड़े सब गुर पास पूर्व लिखे पावणे साच नाम दे रास सतगुर सरणी आया बाहुड़ नहीं विनाश हर नानक कदे ना विसरो यो जियो पिंड तेरा सास श्री राग महला पंजवा संत जनो सुन पाई हो चूटन सा ते नाए गुर के चरण सरेवणे

रावे रंग सच सुहागण सा भली फिर मोही गुण संग भूली भूली थल चढ़ा थल चढ़ डूंगर जाओ बन में भूली जे फिरा बिन गुर बूझ न पाओ नावो भूली जे फिरा फिर आवो जाओ पुछो जाए पधाऊआ चले चक्कर होए राजन जाने अपना दर कर ठाक न होए नानक एको रब रहा दूजा अवर न कोए श्री राग महला पहला गुरते निर्मल जानिए

मैल नाही निर्मल जल नहाए, निर्मल साचा एक तू और मैल परी सब जाए। अरहाओ हरका मंदिर सोना किया करने हार, रसा दीप अनूप जोत तेर पवन जोत पार, हाड पटनगढ़ कोचड़ी स सौदा व्यापार, ज्ञान अंजन पै पंजना देख नरंजन पाए, गोबत प्रट सब जानिए ये मन रखे ठाए, ऐसा सतगुरु जे मिले ता सहजे लय मिलाए, कस कस वट्टी लाई है परखे हित चित लाए, खोटे ठौर न पाए नी खरे खजाने पाए, आस अंदेसा दूर कर यूं मल जाए सुमाए, सुख को मांगे सब को दुख न मांगे कोए, सुखे को दुख अगला मन मुख बूझ न होए, सुख दुख समकर जानिए शब्द ते सुख होए, वेद पुकारे वाचिए बाणी ब्रह्म व्यास, मुन जन सेवक साधक नाम रते गुणतास, सब दरते से जिन गए हाऊ सब बलिहारे जास, चौदुख मैले मल भरे जिन मुख नाम न होए, भक्ति पाए विगुणिया मोकाला पद खोए, जिन्नी नाम सारे अवगुण मुठी रोए, खोजत खोजत पाया

वारो वार सब सल आए आपको वडो वडेरी होए। गुरबिन आप ना चीनिए कै सुने क्या होए। नानक शब्द पछाणिए होमे करे न कोए। श्री राग महला पहला बिन पिर तन सी गारिये जो बनबाद खुआर। ना माने सुख सेजड़ी बिन पिर बा सीगार। दू कणो दोहा गणी ना कर सेज पतार। मान रे राम जपो सुख होए। बिन गुर प्रेम न पाईए शब्द मिले रंग होए। हरहाओ पुर सेवा सुख पाईए हर वर सह सीगार। सच माने पिर सेजड़ी गूड़ा हेत प्यार। गुरमुख

साचो साहिब सेवी है गुरमुख अकथो कात आवे जाए पवाई है पए किरत कमाए पूर्व लिखिया क्यों मेटी है लिखिया लेख रजाए बिन घर नाम।

राम नाम मन वेदया अवर के करी विचार शब्द सुरत सुख उपजे प्रवरतो सुख सार क्यों पावे त्यों राख तू मैं हर नाम आधार मन रे सची खसम रजाए किन तन मन सा सिगारिया ते सेती लिवलाए हरहाओ तन बै संतर होमिए एक रत्ती तोल कटाए तन मन समदा जे करी अन्तन अग्न जलाए।

मन विद्या गुरदिया सदान मन बुद्धि केतिया केते वेद विचार केते बंधन जी के गुरमुख मोख द्वार सच्चो ओरे सबको ऊपर सच आचार सबको ऊंचा आखिए नीच न दिसे कोए एक ने पांडे साजे एक चानन क्यों लोए कर मिले सच पाइए दुर्बक्ष न मेटे कोए साध मिले साधु जने संतोख से गुर पाए अकथ कथा विचारिये ये सदगुरु महेश माए ई अमृत संतोखया दर गए पैदा जाए काड़कड़ वाजे किंगुरी अन दिन शब्द सुखाए विरले को सोजी पई गुरमुख मन समझाए

आगे पूछना हो भई जबेली कुर करतार, आप चिड़ाए छुट्टी है आपे बख्शन हार, मानुख जाने अपने धिया पूत संजोग, नारी देख विगासी है नाले हरख सो सोग, गुरमुख शब्द रंगावले तहे निस हर रस भोग, चित लेवित जामुन सागत डोल डोलाए, बार टूंड गुची है कर्म वस्त सुधाए, मन मुखो में कर्म सी गुरमुख पल्ले पाए, साकत निर्गुण आरिया अपना मूल पछाण, रगत बिंद का यो तनो अग्नि पास पिराण, पावने के बस देवरी मस्तक सच निशान, बहुता जीवन मंगिए मुआ न लोड़े कोए, सुख जीवन तिसिया किए जिस गुरमुख वसिया सोए, नाम विहूने क्या गणी जिस हर गुर दर्शन होए, जो सुपने निस पुलिए जब लग निंद्रा होए, तू सरपन केवस जीड़ा अंतर होमे दोए, गुरमत होए विचारिए सुबना एव जग लोए, अग्न मरे जल पाईए जो बारक दूते माए, बिंदल कमन सो नाथिए

सिद्ध बह देश दान सोर सिद्ध गण गंधर्व मुन जन शेख पीर सलार तार कूज कूचा कर गए अवरे पे चलन हार सुल्तान खान मलूक उमरे गए कर कर कूच कड़ी मोत के चलना दिल समझ तू पे पहुच सबदा माए वखाणी है विरला ता बूझे कोए नानक वखाणे बेनती जलथल मही अल सोए अलाओ अलाखे गम कादर करनगार करीम सब दुनी आवन जावनी मुकाम एक रहीम मुकाम तिसनू आखिए जिस सिस न हो भी लेख असमार तरपी चलसी मुकाम ओही एक दिन रव चले निस सा चले तारका लख परोए मुकाम ओही एक है नानका सच बगोए महले पहले सतारे अष्टपदियां श्री राग महला तीजा तार पहला अष्टपदियां एक ओंकार सदगुर प्रसाद गुरमुख कृपा करे भगत कीजे।

सदगुर सेव गुण धान पाया, तिसकी कीम न पाई, प्रभ सख हर जी ओ मेरा, अंते हुए सखाई, पेयड़े जग जीवन दाता, मानमुख पत गवाई, बिन सदगुर को मग न जाने, अंधे ठौर न काई, हर सुख दाता मन नहीं वसया, अंत गया पछताई, पेयड़े जग जीवन दाता, गुरम

परम खुलाए, पढ़िए कुणिए क्या कथिए, क्या मुंडो कुत्था जाए। चौथे पग में सहज है, पुरमुख पल्ले पाए, निर्गुण नाम निधान है, फैजे सोजी होए। गुणवंती सालाया, सच्चे सच्ची सोए, उलिया सहज मिलाए सी, शब्द मिलावा होए। फिर सहजे सब अंध है, माया मोह गुबार, सहजे की सोजी पई, सच्चे शब्द पार। आपे बख्स मलायन, पूरे गुर करतार, सहजे अदिष्ट पछाणिए, निर्भव ज्योत निरंकार। हवना जिया का एक दाता, ज्योति ज्योत मिलावन हार। पूरे शब्द सराई है, जिदा अंत न पारावार। ज्ञानिया का तन नाम है, सहज करे व्यापार, अन्न लहार नाम लैन,

तेरे अंतर शब्द वसाया सईयां से सोहागनी जिन सई नाल प्यार जियो जिन्ना भाणे का रस आया तिन विचो परम चुकाया नानक सतगुर ऐसा जानिए जो सबसे लय मिलाए जियो सतगुर मिले फल पाया जिन विचो ऐ करण चुकाया दुरमत का दुख कटिया भाग बैठा मस्तक आए जियो अमृत तेरी बाणिया तेरिया भगतां हृदय सुमाणिया सुख सेवा।

ब्रह्म विचारया जन्म सवारया पूर्ण कृपा प्रभ करी कर गए लीने हर जसो दीने जोन ना तावे नै मरी सतगुरदयाल कृपाल भेटत हरे काम क्रोध लोभ मारिया कथन ना जाए अकथ सुवामी।

आया रंग रतला हारंग रत हर त्यावो हर प्रभ सत गुर बचनी हर प्रभ जानिया सब हर प्रभ ते उत्पत हर हाव जिनको पूर्व लिखिया ते आए मिले गुर पास सेवक पाए बन जा रहा मित्रा गुर हर घर नाम प्रकास तन तन वणजवा पारिया जिन वखर लदेड़ा हर रास गुरमुखा दरमुख उजले से आए मिले हर पास जन नानक गुर तिन पाया किन्ना आत उठा गुणतास हर त्यावो साज ग्रास मन प्रीत लगी तिना गुरमुखा हर नाम जिन्ना रहे रास हर हाव एक ओंकार सदगुरु।

उत्तम होए। नानक सच समावै सोए महला तीजा, अंतर कपट भगौती कहाए। पाखंड पार ब्रह्म कदे न पाए, पर निंदा करे अंतर मल लाए। बार मल धोवे मन की झूठ न जाए, सत संग स्यों बाद रचाए। अन दिन दुखिया दूजे पाए रचाए, हर नाम न चेतै बहु कर्म कमाए। पूर्व लिखिया सो मिटना न जाए, नानक बिन सतगुर सेवे मोख न पाए। पौड़ी सतगुरु जिनी त्याया से करन स्वाही, सतगुरु जिनी त्याया से तृप्त अगाही। सतगुरु जिनी त्याया तेन जम डर नाही, जिन को हुआ कृपाल हर से सतगुर पैरी पाही। तेन ऐथे ओथे मुख उजले, हर दरगे पैदे जाही। श्लोक महला दूजा, जो सिर साई नानवे सो सिर दीजे डार। नानक जिस पिंजर में बिरहा नहीं,

जननी जानत सुध बड़ा होत है, इतना को ना जाने, जे दिन दिन अवध कटत है, मोर मोर कर अटक लागत तार, पेगत ही जामरा हसे, ऐसा तैं जग परमलाया, कैसे बूझे, जम होया है माया रखाओ, कैद कबीर छोड़ बिखिया रस, इत संगत नेचो मरना, रमैया जपो प्राणी, अंत जीवन बाणी, एन वेद पवसागर तरना, जत भावे तां लागे पाओ, परम पुलाव चू जाए, उपजे सहज ज्ञान मत जागे, गुर प्रसाद अंतर लिव लागे, इत संगत ना ही मरना, हुं पछाण तां खसमें मिलना, रहाओ दूजा, श्री राग त्रिलोचन का, माया मोह मन अग लड़ा प्राणी, जरा मरण पौ मिसर गया, कुटंब देख विसे कमला ज्यों, पर कर जोह है कपट नरा, दूड़ा आयोह जमह तना, दिन आगलड़े में रहन न जाए, कोई कोई साजन आए कहे, मिल मेरे बीठला ले भाड़ी वलाए, मिल मेरे रमैया मैं ले छड़ाए रहाव, अनक अनक भोगराज बिसरे प्राणी, संसार सागर पे अमर भया, माया मूठा चेत सनाही, जन्म गवायो आलसिया, बिगम कोर पंथ चलना प्राणी, रवस तय ना प्रवेशन, माया मोह तब बिसर गया, जा तजियले संसारं, आज मेरे मन प्रगट पया है, पेखियले तरमराओ, तय करदल करन महाबली, तिन आगलड़े में रहन न जाए, जे को मुंह उपदेश करत है, ता वण त्रिण रतड़ा नारायण, ऐ जी तू आपे सबके जानदा, बदत त्रिलोचन रामैया, श्री राग भगत कबीर जियो का, अचरज एक सुनो रे पंडिया, आप किस कहन न जाई, छोड़ नाल गणक दर्बजन मोह, तिर पौन मेख लीलाई, राजा राम अनहद किंगुरी बाजे, जाकी दुष्ट नाद लिव लागे रखाओ, पाठी गगन सिंगिया अर चुंगिया, कनक कलश एक पाया, जमे तार चोहत निर्मल, रसमय रसन चोआया, ए जो बात अनूप बनी है, पवन प्याला साजया, तीन पवन में एको जोगी, कहो कमन है राजा, ऐसे गण प्रगटिया पुरखोत्तम, कहो कबीर रंग रत, और दुनी सब परम पुलानी, मन राम रसायन माता।

प्रसाद हर हर नाम में हर मन पाया, वडभागी हर नाम ते आया, गुरपूरे हर नाम सिद्ध पाई, ओ विरला गुरमत चले जियो, मैं हर खच लया बन पल्ले, मेरा प्राण सकाई सदा नाल चले, गुरपूरे हर नाम दड़ाया, हर नित हर तन पल्ले जियो, हर हर सज्जन मेरा प्रीत मराया, कोई आन मिलावे मेरे प्राण जीवाया, हों रह न सका बिन देखे प्रीतमा, मैं नीर वह वह चले जियो, सगुर मित्र मेरा बाल सकाई, हों रह न सका बिन देखे मेरी माई, हर जियो कृपा करो गुर मिलो, जन नानक हर तन पल्ले जियो, माझ महला चौथा मधुसूदन मेरे मंत्र प्राणा, हों हर बिन दूजा अवर न जाना, कोई सज्जन संत मिले बड़भागी, मैं हर प्रप्यारा दसे जियो, हो मन तन खोजी पाल पाल आई, क्यों प्यारा प्रीत मिले मेरी माई, मेल सत संगत खोज दसाई, विज संगत हर प्रावस्ते जियो, मेरा प्यारा प्रीतम सदगुरु खवाला, हम बारक दीन करो प्रतपाला, मेरा मात पिता गुर सदगुर पूरा, गुर जल मिल कमल विकसे जियो, मैं बिन गुर देखे नींदन आवे, मेरे मन तन वेदन गुर बेहो लगावे, हर घर दया करो गुर मिलो, जन नानक गुर मिल रसे जियो, माझ महला चौथा हर गुण पढ़िए हर गुण गुणिए, हर हर नाम कथा ने सुनिए, मेर सत संगत हर गुण गाए, जग पौजल दुत्र तरिए जियो, औसकी हर मेल करेगा, मेरे प्रीतम का मैं दे स्नेहा, मेरा मित्र सखा सो प्रीतम भाई, मैं दसे हर नर हरिए जियो, मेरी बेदन हर गुर पूरा जाने, और रह न सका बिन नाम खाने, मैं औखद मंत्र दीजे गुरपूरे, मैं हर हर नाम उधरिए जियो, हम चातक दीन सदगुर शरणाई, हर हर नाम बूंद मुख पाई, हर जल निध हम जल के मीने, जन नानक जल बिन मरी गए जियो, माझ महला चौथा हर जन संत मिलो मेरे भाई, मेरा हर पर दसो मैं भुख लगाई, मेरी श्रद्धा पूर जग जीवन दाते, मेल हर दर्शन मन पीजे जियो, मेल सत संग बोली हर बाणी, हर कथा मेरे मन पाणी, हर घर अमृत हर मन पावे, मेल सतगुर अमृत पीजे जियो, वडभागी हर संगत पावे, पागहीन पाँव चोटा खावे, बिन भागा सत संग न लभे, बिन संगत मैल भरीजे जियो, मैं आय मिलो जग जीवन प्यारे, हर हर नाम दया मन धारे, गुरमत नाम मीठा मन पाया, जन नानक नाम मन भीजे जियो, माझ महला चौथा हर गुर ज्ञान हर रस हर पाया, मन हर अंगराता हर रस पी आया, हर हर नाम मुख हर हर बोली, मन हर रस टोल टोल पौंदा जियो, आवो संत मैं गल में लाइए, मेरे प्रीतम की मैं कथा सुनाईए, हर के संत मिलो मन देवा, जो गुरबाणी मुख चौंदा जियो, वडभागी हर संत मिलाया, गुर पूरे हर रस मुख पाया, पागहीन सतगुर नहीं पाया, मन मुख गर्भ जूनी नित पौंदा जियो, आप दयाल दया प्रतारी, मलहोमे बिखिया सब निवारी, नानक हट पटन विच काया, हर लेंदे गुरमुख सौदा जियो, माझ महला चौथा हों गुण गोविंद हर नाम त्याई, मिल संगत मन नाम साई, हर प्र अगम गोचर स्वामी, मिल सतगुर हर की चे जियो, धन तन हर जन जिन हर प्रजाता, जाए पुछा जन हर की बाता, पा मलोवा मलमल धोवा, मिल हर जन हर रस पी चे जियो, सतगुरदाते नाम दड़ाया, वडभागी गुर दर्शन पाया, अमृत रस सच अमृत बोली, गुर पूरे अमृत लीचे जियो, हर सत संगत सतपुरख मिलाइए, मेल सत संगत हर नाम ते आइए, नानक हर कथा सुनी मुख बोली, गुरमत

ठाकुर ही संग जहार जीव अपने ठाकुर जो पैराया बोर ना लेखा पुछ बुलाया ते सेवक के नान कुर्बानी जो गैर गंभीरा गहोर जियो माज महला पंजवा सबज करमे बार नाही बार टोले सो परम पुलाही गुर प्रसादी जिनी अंतर पाया सो अंतर बार सुहिला जियो केम चुंबर से अमृत तारा मन पीवे सुन शब्द बीचारा अंध विरोध करे दिन राती सदा सुधार केला जियो जन्म जन्म का विछड़ा मिलया सद कृपा ते सुका हरिया सुमत पाए नाम त्याए गुरमुख होए मेला जियो जल तरंग ज्यो जले समाया त्यों ज्योति संग ज्योत मलाया कहो नानक फ्रम कटे किवाड़ा बोड़ न होइए जौला जियो माज महला पंजवा तिस कुरबाणी जिन तू सुनिया तिस बलिहारी जिन रसना भणिया वार वार जाई तिस विटो जो मन तन तुद आराधे जियो ते चरण पखाली जो तेरे मार्ग चाले नैन निहाली ते पुरख दयाले मन देवा ते अपने साजन जिन गुरमन सो प्रहलाद दे जियो सेवड़ पागी जिन तुम जाने सबके मध्य अलिप्त निर्बाणे साध के संग उन पोजल तरिया सगल दूत उन साध दे जियो तिन की शरण परया मन मेरा मान तान ताज मोह अंधेरा नाम दन दी जे नानक कहो ते प्रगम अगा दे जियो माज महला पंजवा तू पेड़ साग तेरी फूली तू सूखम होवा अस्तूली तू जलने दे तू फेन बुदबदा तुम अवर ना पाली गए जियो तू सूत मणिये पीतू है तू गंठी मेर सिर तू है आद मध अंत प्रसोई अवर ना कोई दिखा लिगे जियो तू निर्गुण सरगुण सुखदाता तू निर्वाण सिया रंगराता अपने कर्तव्य आपे जाने आपे तू समा लिगे जियो तू ठाकुर सेवक फुने आपे तू गुप्त प्रगट प्रवे आपे नानक दास सदा गुण गावे एक पूरी नजर निखाल लिगे जियो माज महला पंजवा सबर सोबाणी जित नाम खाणी गुर प्रसाद किनवर ले जानी तन सोवेला जित रगात सुनना आए ते परवाना जियो से नेत्र प्रवान जिन्नी दर्शन पेखा से कर भले जिन्नी हरस लेखा से चरण सुहावे जो हर मार्ग चले हाउ बाल तिन संग पछाणा जियो सुन सज्जन मेरे मीत प्यारे साध संग खिनमाए उधारे किलव काट हुआ मन निर्मल मिट गए आमन जाना जियो दोए कर जोड़ एक बनो कुरीजे कर कृपा डुबदा पत्थर लीजे नानक को प्रभ कृपाला प्रभ नानक मन पाणा जियो माज महला पंजवा अमृत बाणी घर घर तेरी सुन सुन होवे परम गत मेरी जल बुझी शीतल होए मनुआ सगुर का दर्शन पाए जियो सुख पय दुख दूर पराना संत रसन हर नाम खाना जल थल नीर परे सरसुबर बिरथा कोई ना जाए जियो दया तारी तिन सृजन हारे जी जंत सगले प्रत पारे मेहरवान कृपाल दयाला सगले तृप्त अगाए जियो वाण त्रैण त्रिपवन की तोन हरिया करण हार खिन पीतर करया गुरमुख नानक तसे अरध मन की आस पुजाए जियो माज महला पंजवा तू मेरा पिता तू है मेरा माता तू मेरा बंधप तू मेरा भ्राता तू मेरा राखा सबनी ताई ता पो केहा काड़ा जियो तुमरी कृपा ते तुद पछाणा तू मेरी ओट तू है मेरा माणा तुझ बिन दूजा अवर न कोई तब तेरा खेल अखाड़ा जियो जी जंत तुद उपाय जित जित पाणा तित तित लाए तब कीता तेरा होए नाई किस असाड़ा जियो नाम त्याए महासुख पाया हर गुण गाए मेरा मन शीतलाया गुरपूरे वजी वाधाई नानक जिता बिखाड़ा जियो माज महला पंजवा जी प्राण प्रमने अधारा भगत जीवे गुण गाए अपारा गुण निधान अमृत हर नामा हर त्याए तैसो पाया जियो मनसा तार जो करते आवे साध संग जन्म मरण मिटावे आस मनोरथ पूर्ण होवे भेड़त गुर दरसाया जियो आगम अगोचर कश्मितनी जानी साधक सिद्ध त्यावे ज्ञानी खुद मिटी चूका भोलावा गुरमानी मैं प्रगटाया जियो आनंद मंगल कल्याण निधाना सूग सहज हर नाम खाना होए कृपाल स्वामी अपना नाओ नान करम आया जियो माज महला पंजवा सुन सुन जीवा सोए तुम्हारी तू प्रीतम ठाकुर अद भारी तुम्हारे कर्तव्य तुम ही जानो तुमरी ओर गोपाला जियो गुण गावत में हरिया होवे कथा सुनत मर सगली खोवे भेटत संग सा संतन कह सदा जपो दया।

मेरा जियो पिंड सबरास तुम्हारी तेरा जोर गोपाला जियो सदा सदा तू है सुखदाई निबन लागा तेरी पाई तारक मावा जित पावा जा तू दे दयाला जियो प्रभ तुम ते लेना तू मेरा गहना जो तू दे सोई सुख सहना जिथे रखे पै कुंत साई तू सबना के प्रतपाला जियो सिमर सिमर नांग सो पाया आड़ पैर तेरे गुण गाया सगल मनोरथ पूर्ण होए कदे न होए दुखाला जियो माज महला पंजवा पार ब्रह्म प्रमेघ बिठाया जल थल महियल दहत वरसाया सांध पई बूझी सब तृष्णा अंध पया सब ठाई जियो सुखदाता दुख पंजन खारा आपे बख्श करे जी सारा अपने कीते नू आप प्रतपाले पै पैरी तसे मनाई जियो जा की शरण पया गत पाईए सास सास हर नाम ते आईए तिस बिन होर ना दूजा ठाकुर सब से की आ जाई जियो तेरा मान तन पर तेरा तू सच्चा साहिब गुणी गहेरा नानक दास कह बेनंती आड़ पैर तो त्याई जियो माज महला पनवा सबे सुख पय प्रत उठे गुरपुरे के चरण मन उठे तय समाध लगी लिप अंतर सुवरस्त हुई जाने जियो आगम अगोचर साहिब मेरा काटकट अंतर वरते नेरा स अलिप्त जिया का दाता को विरला आप पछाणे जियो प्र मिलने की ए निशानी मन इको सच्चा हुक्म पछाणी सह संतोख सदा तृप्ता से अंध खसम कै पाणी जियो हथी दित्ती प्रभ देवन हारे जन्म मरण रोग सब निवारे नानक दास पिए प्रभ अपने हर कीर्तन रंग माणे जियो माज महला पंजवा तीनी दया गोपाल गुसाई गुर के चरण वसे मनवाही अंगीकार किया तन करते दो का डेरा टहाया जियो मन तन वसया सच्चा सोई बिखड़ा थान दिसे कोई दूत दुश्मन सब सज्जन होए एको स्वामी आया जियो तुझ करे सो आपे आपे बुद्ध स्याण छूना जापे अपने संतान नु आप सहाई प्रभ परम पुलावा लाया जियो चरण कमल जन का आधारो आठ पैर आराम ना वापारो सहज आनंद गावे गुण गोविंद प्रभ नानक सर्व समाया जियो माज महला पनवा सो सच मंदर जित सज त्याई है सूर्य दा सुहेला जित हर गुण गाई है तरत सुहावी जित वस्ते हर जन सच्चे नाम मिटो कुर्बान जियो सच वडाई कीम न पाई कुदरत कर्म ना कहना जाई त्याए त्या जीवे जन तेरे सच सदु मन मानो जियो सच सलाहन वडभागी पाई है गुर प्रसादी हर गुण गाई है रंग ते तेरे तु भावे सच नाम निशानो जियो सच्चे अंत न जाने कोई हन तनंतर सच्चा सोई नानक सच ते आई गे सड़गी अंतर जामी जानो जियो माज महला पंजवा रैन सुहावड़ी दिन से सुहेला जप अमृत नाम संत संग मेला कड़ी मूर्त सिमरत पल मंजे जीवन सब तताई जियो सिमरत नाम दो सब लाते अंतर बाहर प्रसाते पय पो परम खोया गुर पूरे देखा सबनी जाई जियो प्रभ समरथ वड ऊचे पारा नौ दिना परे पंडारा आद अंत मत प्रसोई दूजा लवे न लाई जियो कर कृपा मेरे दीन दयाल जाग जाचे साधर वाला देह दान नाग जन मांगे सदा सहर त्याई जियो माज महला पंजवा ऐथे तू है आगे आपे जी जंतर सब तेरे थापे तुद मन अवर न कोई करते मैं तर ओढ़ तुम्हारी जियो रसना जप जप जीवे स्वामी पार ब्रह्मपुर अंतर जामी जिन सेवा तिन ही सुख पाया तो जन्म न जुए हारी जियो नाम अवखद जिन जन तेरे पाया जन्म जन्म का रोग गवाया हर कीर्तन गावो दिन राती सबल ए है कारी जियो दृढ़ दर अपना दास सवारिया कट कट अंतर पार ब्रह्म नमस्कारिया एक सिविन होर दूजा नाही बाबा नानक ए मत सारी जियो माज महला पंजवा मन तारता राम प्यारे सर्व दीजे अपना वारे आड़ पैर गोविंद गुण गाइये बिसर ना कोई सासा जियो सोई सजन मीत प्यारा राम नाम सा संग बिचारा साधु संग तरी जे सागर कटिये जमकी फासा जियो चार पदार्थ हर की सेवा पार जा जप लख पेवा काम क्रोध किलवे गुण काटे पूर्ण होई आसा जियो पूर्ण भाग पैस प्राणी साध संग मिले सारंग पानी नानक ना वस्यास अंतर
ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਿਸ ਕੋ ਦਾਸਾ ਜੀਓ। ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਸਿਮਰਤ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਸੋ ਪਾਇਆ, ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਭਗਤੀ ਪ੍ਰਟਾਇਆ, ਸੰਤ ਸੰਗ ਮਿਲ ਹਰ ਹਰ ਜਪਿਆ, ਬਿਨਸੇ ਆਲਸ ਰੋਗਾ ਜੀਓ, ਜਾ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਨਵਨਿਧ ਹਰ ਭਾਈ, ਤਿਸ ਮਿਲਿਆ ਸੇ ਪੁਰ ਕੁਮਾਈ, ਗਿਆਨ ਧਨ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਪ੍ਰਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਜੋਗਾ ਜੀਓ, ਖਿਨਮੇ ਥਾਪ ਥਾਪ ਨੁਹਾਰਾ, ਆਪ ਇਕੰਤੀ ਆਪ ਸਾਰਾ, ਲੇਪ ਨਹੀਂ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਡਿੱਠੇ ਲਹਿਨ ਵਜੋਗਾ ਜੀਓ, ਅੰਚਲ ਲਾਏ ਸਭ ਸਿੱਟ ਤਰਾਈ, ਆਪਣਾ ਨਾਓ ਆਪ ਜਪਾਈ, ਗੁਰ ਬੋਧ ਪਾਇਆ ਕਿਰਪਾ ਤੇ, ਨਾਨਕ ਤੁਰਸਨ ਜੋਗਾ ਜੀਓ। ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਸੋਈ ਕਰਣਾ ਜੇ ਆਪ ਕਰਾਏ, ਜਿੱਥੇ ਰੱਖੇ ਸਾ ਪਲੀ ਜਾਏ, ਸੋਈ ਸਿਆਣਾ ਸੋ ਪਤਵੰਤਾ, ਹੁਕਮ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਮੀਠਾ ਜੀਓ, ਤਾਂ ਪਰੋਈ ਇੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਏ, ਜੇ ਲਾਇ ਲੈ ਸੋ ਚਰਣੀ ਲਾਗੇ, ਊਂਦ ਕਵਲ ਜਿਸ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਾਸਾ, ਤੇਨ ਸਰਮ ਨਰੰਜਨ ਡੀਠਾ ਜੀਓ, ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਤੂੰ ਹੈ ਜਾਣੇ, ਆਪਣਾ ਆ ਤੂੰ ਆ ਪਛਾਣੇ, ਹੋਮ ਲਿਖਾਰੀ ਸੰਤਨ ਤੇਰੇ, ਜਿਨ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਪੀਠਾ ਜੀਓ, ਤੂੰ ਨਿਰਵੈਰ ਸੰਤ ਤੇਰੇ ਨਿਰਮਲ, ਜਿਨ ਦੇਖੇ ਸਭ ਉਤਰੇ ਕਰਮਲ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਤੇ ਜੀਵੇ, ਬਿਰਸਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਤੀਠਾ ਜੀਓ। ਮਾਂ ਜ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਝੂਠਾ ਮੰਗਣ ਜੇ ਕੋਈ ਮੰਗੇ, ਇੱਕੋ ਉਮਰ ਤੇ ਕੜੀ ਨਾ ਲਾਗੇ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜੋ ਸਦਗੀ ਸੇਵੈ, ਸੋ ਗੁਰਮਲ ਨਿਚਲ ਕਹਿਣਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਜਿਸਕੇ ਮਨ ਲਾਗੀ, ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਆਨੰਦ ਨਿਤ ਜਾਗੀ, ਬਾਂ ਪਕੜ ਤੇ ਸਵਾਮੀ ਮਿਲੇ, ਜਿਸਕੇ ਮਸਤਕ ਲਹਿਣਾ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਭਗਤਾਂ ਮਨ ਮੁੱਠੇ, ਵਿਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਗਲੇ ਮੁੱਠੇ, ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੀ ਤੂੜਤ ਬਾਂਚੇ, ਨਾਮ ਸਚੇ ਕਾ ਗਹਿਣਾ, ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਹਰ ਹਰ ਗਾਈਏ, ਜੇ ਸਿਮਰਤ ਵਰਨੇ ਚਿਲ ਪਾਈਏ, ਨਾਨਕ ਕੋ ਪ੍ਰਭੁ ਦਇਆ ਅੱਲਾ, ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਸਹਿਣਾ। ਰਾਗ ਮਾਝ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਕਰ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਸਬਦ ਰੰਗਾਏ ਹੁਕਮ ਸਵਾਏ, ਸੱਚੀ ਦਰਗਹਿ ਮੈਲ ਬੁਲਾਏ।

प्रकाश हुआ जी अन दिन सरगुण गावनिया रखाओ तन मन खोजे ताना ओ पाए ताप्त राखे ठाक रखाए गुर की बाणी अन दिन गावे सहजे भगत करावणिया इस काया अंदर।

माया मुई घर चेते नाही, जम पुर बद्दा दुख सराही, अन्ना बोला किश नजर न आवे, मनमुख पाप चामणिया, एक करां गराते जो तुद आप लिवलाए, पाए भगत तेरे मन पाए, सतगुर सेवन सदा सुखदाता।

प्रगट पई जप नाम मुरारा शिव सगत मिटाईया चूका अंधियारा दुरमस्तक जिन को लिखया तिन हर नाम प्यारा हर कित बिद पाई गे संत जनो जिस देख हो जीवा हर बिन कसा ना जीवती गुर मिल्यो हरस पीवा रहाव हौ हर गुण गावा नित हर सुनी हर हर गद कीनी हर अस गुर ते पाया मेरा मन तन लीनी धन तन गुर सद पुरख है जिन भगत हर दीनी जे गुर ते हर पाया तो गुर हम कीनी गुण दाता हर आए है हम आप गणयारे पापी पत्थर डूब दे गुरमुख हर तारे तू गुण दाता निर्मला हम आप गुणयारे हर शरणागत राख लेहो मूड मुग्ध निस्तारे।

प्रीत होवे अन्न खाए, गुर सिख प्रीत गुर मिल आघाए, हर दर्शन देओ हर आस तुम्हारी, हर कृपा लोज पूर हमारी रहाओ। चकवी प्रीत सूरज मुख लागे, मिले प्यारे सब दुख त्यागे, गुर सिख प्रीत गुरु मुख लागे, बचरे प्रीत खीर मुख खाए, हिरदे बिगसते देखे माए, गुर सिख प्रीत

किस रूप नहीं, किस जात नहीं, किस टंग ना मेरा, क्या मुंह ले बोले गुण बिहून, नंद पिया ना तेरा, हम पापी संग गुर उबरे, पुन सतगुर केरा, सब जियो पिंड मुख नक दिया, वर्तन को पानी, अन्न खाना कपड़ पहनन दिया, तस अन्न भुगानी, जिन दिए सो चित न आवी, पशु हो कर जानी, सब कीता तेरा वर्तदा, तू अंतर जामी, हम जंत विचारे क्या करे, सब खेल तुम स्वामी, जन नानक हाट विहाजया, हार गुलम गुलामी, गौड़ी बैरागण महला चौथा, ज्यो जननी सो जन पालती, राखे नदर मजहार, अंतर बार मुख दे ग्रास, खिन खिन पोचार, तू सतगुर गुरसिख राखता, हर प्रीत प्यार, मेरे राम हम बारक हर प्रभ के हैं आने, तन तन गुरु गुर सतगुर पांदा, जिन हर उपदेह दे किए सियाने, रखाओ जैसी गगन फिरंती उड़ती, कपरे बागे वाली, ओ राखे चीत पीछे बिच बचरे, नित हिरदे सार समाली, त्यों सतगुर सिख प्रीत हर हर की, गुर सिख रखे जी नाली, जैसे काती तीस बतीस है, विच राखे रसना मासरत केरी, कोई जानो मास काती कै किस हाथ है, साब वसगत है अद केरी, त्यों समझना की नरनिंदा करे, हर राखे पै जन केरी, पाई मत कोई जानो किसी कै किस हाथ है, सब करे कराया, जरा मरा ताप, सिर्त साप, सब हर के वस है।

तिस गुर मिल उदरे हर गुण गा वाही। महला चौथा गौड़ी पूर्वी हर दयाल दया प्रकीनी। मेरे मन तन मुख हर बोली गुरमुख रंग पया अत गूड़ा। हर रंग पीनी मेरी चोली अपने हर प्रभु की हो गोली। जब हम हर सेती मन मानिया कर दीनो जगत सब गोल अमोली। हरहाओ करो विवेक संत जन पाई खुज हिरदे देख टंडोली। हर हर रूप सब जोश सबाई हर निटवसे हर कोली। हर हर निटवसे सब जग अपरंपर पुरख अतोली। हर घर प्रटकियो गुरपूर सिर वेचो गुर पै मोली। हर जी अंतर बाहर तुम शरणागत तुम वड पुरख वडोली। जन नानक अनदिन घर गुण गावे मेले सतगुर गुर वे चोली। गौड़ी पूर्वी महला चौथा जग जीवन अपरंपर स्वामी। जगदीशर पुरख विधाते जित मार्ग तुम प्रेरो स्वामी। तित मार्ग हम जाते आराम मेरा मान हर से तीराते। सत संगत मिल राम रस पाया हर रामे नाम समाते रहाओ। हर हर नाम हर हर जग अवखद हर हर नाम हर साते। तिनके पाव दो सा बिनसे जो गुरमत राम रस गाते। जिनको लिखत लिखे तुर मस्तक ते गुर संतोख सर नाते। दुरमत मैल गई सब तिन की जो राम नाम रंग राते। राम तुम आपे आप आप ठाकुर तुम जेवड़ अवर ना दाते। जन नानक नाम लय ता जीव हर जपिए हर कृपा ते। गौड़ी पूर्वी महला चौथा करो कृपा जग जी मन दाते। मेरा मन हर से ती राते सतगुर भजन दियो अत निर्मल। जप हर हर हर मन माचे राम मेरा मन तान बेद लियो हर साचे। जे काल के मुख जग सब गरसया गुर सतगुर के बचन हर हम बाचे रहाओ। जिन को प्रीत नहीं घर सेती ते सागत मूड़ नर काचे। तिन को जन्म मरण अद पारी विच विष्टा मर मर पाचे। तुम दयाल सरण प्रतपालक मोको दीजे दान हर हम जाचे। हर के दास दास हम कीजे हम नृत्य करे कर नाचे। आपे सावडे प्रस्वामी हम वन जा रे है ताचे। मेरा मन तन जियो राज सब तेरी जन नानक के सा प्रसाचे। गौड़ी पूर्वी महला चौथा तुम दयाल सर्व दुख पंजन एक बिनो सुनो दे कान। जेते तुम्हार जाने स्वामी तो सदगुर मेर मेरा प्राने। राम हम सदगुर पार ब्रह्म कर माने। हम मूढ़ मुग्ध अशुद्ध मत होते गुर सदगुर के बचन हर हम जाने रखाओ। जितने रस अन रस हम देखे तब तितने फीक फीका ने। हर का नाम अमृत रस चाखेया मिल सदगुर मीठ रस गाने। जिनको गुर सदगुर नी पेटिया ते सागत मूड़ देवाने। तिनके कर्महीन थुर पाए देख दीप कमोए पचाने। जिनको तुम दया कर मेलो ते हर घर सेव लगाने। जन नानक हर हर हर जा प्रगटे मत गुरमत नाम समाने। गौड़ी पूर्वी महला चौथा मेरे मन तो प्रसदा ना लगे स्वामी। तो किथे हर पौ नसीए हर आपे बख्स लय पर साचा। हर आप छुड़ाए छुटिए मेरे मन जप हर हर हर मन जपिए। सदगुर की शरणाई भजको मेरे मना गुर सदगुर पीछे छुटिए। रहाओ मेरे मन सेवो सो पर सर्व सुखदाता। जित सेवे निज कर वसीए गुरमुख जाए लहु कर अपना। तस चंदन हर जस तसीए मेरे मन हर घर हर घर हर जस उत्तम। लै लह हर मन हसीए हर आप दया कर देवे ता अमृत हर हस चखीए। मेरे मन ना बिना जो दूजे लागे ते सागत नर जम कुटीए। ते सागत चोर जिन्ना नाम सारिया मन तिन के निट ना पिटीए। मेरे मन सेवो अलख निरंजन नर हर जित सेवे लेखा छुटीए।

प्रभु तुमरे, मेरा जीव पिंड सब तेरी, दया करो हर दर्श दिखाओ, मेरे मन तन लोच कन्हेरी, राम मेरे मन तन लोच मिलन हर केरी, गुर किरपाल कृपा किंचित गुर कीनी, हर मिलिया अपरा मेरी हरहाओ, जो हमरे मन चित है स्वामी, साबिद तुम घर जानो मेरी, अनदन नाम जपी सुख पाई, निज जीवा आस घर तेरी, गौर सतगुर दाते पंत बताया, हर मिलिया अपरा मेरी, अनदन अंध पया बड़पागी, सब आस पूजी जन केरी, जगन्नाथ जगदीश करते, सब वस गत गया।

राम राय की गुरमार्ग पंथ बताया। मेरा जियो पिंड सब सगुर आगे, जिन विछड़िया हर गल लाया। मेरे अंतर प्रीत लगी देखण को, गुर हिरदे नाल दिखाया। सहज आनंद पया मन मोर, गुर आगे आ विचाया। हम अपराध पाप कीने, सर दुटी चोर चुराया। आप नानक शरणागत आए, हर राखो लाज हर पाया। गौड़ी पूर्वी महला चौथा, गुरमत बाजे शब्द अनाहद। गुरमत मनुआ गावे, वड़भागी गुर दर्शन पाया। तन तन गुरु लिवलावे, गुरमुख हर लिवलावे। हरहाओ हमरा ठाकुर सतगुर पूरा, मन गुर की कार कमावे। हम मल मल धोवे पाप गुरु के, जो हर हर कथा सुनावे। हिरदे गुरमतरा मरसायण, जे वा हर गुण गावे। मन रसक रसक हर रस आघाने, फिर बोर ना पूख लगावे। कोई करे उपाप।

अंतर नाम निधान है मेरे गोविंदा, गुर शब्दी हर प्रव गाजे जियो, आपे शरण पवाएदा मेरे गोविंदा, हर भगत जना राख लाजे जियो, वडभागी मिल संगति मेरे गोविंदा, जन नानक नाम सिद्ध काजे जियो, गौड़ी माज मखला चौथा, मैं हर नामे हर बिरो लगाई जियो, मेरा हर प्रामित मिले सुख पाई जियो, हर प्रव देख जीवा मेरी माई जियो, मेरा नाम सखागर पाई जियो, गुण गावो संत जियो, मेरे घर प्रभ केरे जियो, जब गुरमुख नाम जियो भाग वडेरे जियो, हर घर नाम जियो, प्राण घर मेरे जियो, फिर बहु

तू है मेरा गहना, तुझ निपुन जाई रहना। तू मेरे लालन, तू मेरे प्राण, तू मेरे साहेब, तू मेरे खान। रहाओ जो तुम राखो तिवगी रहना, जो तुम कहो तोई मुय करना। जय पेखो ता तू बसना, निरपो नाज पोतरा रसना। तू मेरी नवर तू पंडार, रंग रसा तू मने आधार। तू मेरी शोभा तुम संग रतिया, तू मेरी ओट तू है मेरा तकिया। मन तन अंतर तू ही ते आया, मर्म तुम्हारा गुर ते पाया। सगुर ते दृढ़िया एक एक है, नानक दास हर हर हर टेक है। गौड़ी गुआरे री मोहल्ला पनवा, व्याप्त हर शोक विस्तार। व्याप्त सुरग नरक अवतार, व्याप्त तन निरतन पे शोभा। मूल व्याधि व्याप्त लोभा, माया व्याप्त बहु प्रकारी। संजीवे प्र ओढ़ तुम्हारी रघाओ। व्याप्त अंगबुद का माता, व्याप्त पुत्र कलत्र संगराता। व्याप्त हस्त कोड़े अर बस्ता, व्याप्त रूप जोवन मल मस्ता। व्याप्त भूम रंग अरंगा, व्याप्त गीत ना सुन संगा। व्याप्त सेज महल सीगार, पंच दूत व्याप्त अंधियार। व्याप्त कर्म करे हो फासा, व्याप्त ग्रस्त व्याप्त उदासा। आचार व्यवहार व्याप्त ए जात, सब व्याप्त बिना रंग रात। संतन के बंधन काटे हर राय, ताको खां व्यापे माए। कहो नानक जन तूर संत पाई, ताके निटन आवे माई। गौड़ी ग्वारे री मोहल्ला पंजवा, नैनो नींद परदेट विकार। श्रमण सोए सुनंद विचार, रसना सोई लो मीठे साध। मन सोया माया विस्माद, इस ग्रह में कोई जागत रहे। साव तवस को अपनी लय रहाओ, सकल सहेली अपने रसमाती। गए अपने की खबर न जाती, मुस्तनहार पंच बटवारे। तूने नगर परे ठगहारे, उनते राखे बाप न माई। उनते राखे मीत न पाई, सर्व सियाणप ना ओए रहते। साध संग ओए दुष्टवास होते, हर कृपा मुझ सारंग पान। संतन तूर सरबनधान, साध पूजनी सदगुर संग। नानक जागे पार ब्रह्म के रंग।

मिटे कलेस सुखी होए रही है। ऐसा दाता सबगुर कही है, तो सुख दाता जे नाम जो पावे, हर कृपा ते संग मिलावे, हरहाओ जिस होए दयाल आप मिलावे, सर्वन दान गुरु ते पावे, आप जग मिटे आमन जाना, साध के संग पार ब्रह्म पछाणा।

पाते मोय असनाहा, मीत हमारा अंतर्जामी, समरथ पुरख पार ब्रह्म स्वामी, हम दासे तुम ठाकुर मेरे, मान महत नान प्रा तेरे, गौड़ी महला पंजवा, जा को तुम पै समरथ अंगा।

रहाओ, भूमिया भूम ऊपर नित लुझे, छोड़ चले तुसे नानी बुझे, कहो नानक यो तत विचारा, बिन घर भजन नहीं छुटकारा, गौड़ी मोहल्ला पंजवा।

योग हर के मार्ग पद पुनीत पूरी शोभा पूरा लोकीक करणहार सदवसे हदूरा कहो नानक मेरा सतगुर पूरा गौड़ी मोहल्ला पंजवां संत की तूर मिटे अकोट संत प्रसाद जनमन ते छोट संत का दर्श पूर्ण इसनान संत कृपा ते जपिए नाम रखाओ संत के संग मिटिया अहंकार दिट आवे सब एक अंकार संसो प्रसन्न आई बस पंचा।

आओ चरण कमल आराध भगवंता हर सिमर ते मिटी मेरी चिंता सब तज अनाथ एक शरण आयो ऊच स्थान तब से जे पायो दुख दर्द परम पव नसया करण हर नानक मन बसया गौड़ी मोहल्ला पंजवां कर कर टहल रसना गुण गाओ चरण ठाकर कई मार्ग थाओ पलो समो सिमरन की परिया सिमरत नाम है पार उतरिया रहाओ नेत संतन का दर्शन पेख प्रभ अवनासी मन में लेख सुन कीर्तन साध पै जाए जन मरण

स्वामी सब तुमते तू अंतर जामी पार ब्रह्म पूर्ण जन ओट तेरी शरण उधरे जन कोट रखाओ जेते जीते ते सब तेरे तुमरी कृपा ते सूह कनेरे जुग वरते सब तेरा पाणा हुगम बूझे सो सच समाणा हर कृपा दीजे प्रदान नानक सिमरे नाम निधान गौड़ी महला पंजवा ताका दिस पाई गे वड भागी जाकी राम नाम लिव लागी जाके हर वसिया मन माही ताको दुख सुपने पी नाही हर हाओ सरबन धन राखे जनमाघे ताके संग केल विख दुख जाहे जनकी महिमा कसी न जाए पार ब्रह्म जन रहया सुमाए हर कृपा प्र बिनो सुनीजे दास की तूर नानक को दीजे गौड़ी महला पनवा हर सिमरत तेरी जाए बलाए सर्व कल्याण वसे मन आए।

की पाई। सोग सहज सांत आनंदा जप जप जीवे परमानंदा। नाम रास सासंग खाटी कहो नानक प्रभ अवधा काटी। गौड़ी महला पंजवा हर सिमरत सा मिटे कलेस। चरण कम मन में परवेश उचरो राम नाम लख बारी। अमृत रस पीओ प्यारी रखाओ सोग सहज रसमहा आनंदा जप जप जीवे परमानंदा। काम क्रोध लो मद खोए साध के संग किलब सब थोए। हर कृपा प्रभु दीन दयाला नानक दीजे साधर वाला। गौड़ी महला पंजवा जिसका दिया पहने खाए तिस आस क्यों बने माए। खमसार आन कम लागे हौडी बदले रतन त्यागे रखाओ। प्रभु त्याग लागत अन लोभा दास सलाम करत का शोभा।

मीत सगल मनोरथ मुक्त पादीत। ऐसा मीत करो सब कोय जाते विरथा कोई न होए। हरहाओ आपने स्वर दे ले तारिया दुख दर्द रोग सगल बदारिया। रघना गिद्धि बोल तराम पूर्ण होए सगले काम। अनक बार नानक बलिहारा सबल दर्शन गोविंद हमारा। गौड़ी महल्ला पंजवा कोट बिघन हिरे किन माहे। हर घर कथा सास संग सुनागे पीवत राम रस अमृत गुण जात। जप चरण मिटी खोतास रखाव सर्व कल्याण सुख सहज निधान। जा कै हृदय से भगवान औखद मंत्र तंस विचार। करने हार दे मैं तार तस परम पजो पार ब्रह्म। कहो नानक अटल इहो धर्म। गौड़ी महला पंजवा कर कृपा पेटे गुरसोई। तित बल रोग न व्यापे कोई। राम रमन तरण पै सागर तरण सूर पारे जमकागर। हरहाओ तगुर मंत्र दी होर नाम ए आसर पूर्ण पै काम। जब तक संजम पूरी वड़ियाई गुर कृपाल हर पै सगाई। मान मुखोए गुर परम एक नानक पसरे पार ब्रह्म। गौड़ी महला पंजवा दिखे राज ते अंधला पारी। दुख लागे राम नाम चितारी तेरे दास को तुही वड़ियाई। माया मगन नरक ले जाई रहाओ। रोग ग्रस्त चितारे नाओ दिख माते का ठौर न ठाओ। चरण कम स्यों लागी प्रीत आन सुखा नहीं आवे चीत। सदा सदा सिमरो प्रा स्वामी मिल नानखर अंतर जामी। गौड़ी महला पंजवा आड़ पर संगी पटवारे कर कृपा प्रो ले निवारे। ऐसा हार शरमो सब कोय सर्व कला पूर्ण प्रसोए। रहाओ महा तप्त सागर संसार प्रखिर में पार उतारन हार। अनक बंधन तोरे नहीं जाहे सिमरत नाम मुक्त फल पाहे। उक्त स्यानप इस्ते कशनाहे हर कृपा नान गुण गाहे। गौड़ी महला पंजवा थाती पाई हर को नाम। बिचर संसार पूर्ण सब काम वड़भागी हर कीर्तन गाई है। पार ब्रह्म तू देता पाई है। रहाओ हर के चरण हृदय उतार पाल सागर चढ़ उतरे पार। साधु संग करो सब कोय सदा कल्याण फिर दुख न होए। प्रेम भगत पर गुणी।

सोवत हर संग पैरुआ जाके सिमरन जम नि डरुआ रघाव चरण कम प्रदे निवास फगल दूका हो या नास आसा मान तान तन एक साचे सा की मन में टेक मां गरीबिन साध अनाथ नान प्रव राखे दे हाथ गौड़ी महला पंजवा हर हर नाम अजन कर सूचे कोड़ ग्रहण पुन फल मूचे रघाव हर के चरण हृदय मैं बसते जन्म जन्म के किल

को जाया हस्त पाए बसे सुख आसन गुर प्रसाद नांग सुख बासन कौड़ी महला पंजवा कोड़ मजन कीनो इसनान लाख अरब खरब दीनो दान जावनो वस्यो हर को नाम सगल पवित्र गुण गाय गोपाल पा मिटे साधु शरण दयाल हरहाव बहुत उर्तव साधन साधे अन कला मनोरथ लादे हर हर नाम रसन आराधे सिमरत सात वेद बखाने जो ज्ञान से सुख जाने नाम जप प्रस्यो मन माने आगाध बोध हर अगमे पारे नाम जपत नाम हृदय विचारे नानको प्रकृपा थारे गौड़ी महला पंजवा सिमर सिमर सिमर सुख पाया चरण कमल गुरुदेव साया गुर गोविंद पार ब्रह्मपुरा तिसे आराध मेरा मन तीरा रहाओ अनदिन जपो गुरु गुर नाम ताते सत पय सगल काम दर्शन दे शीतल मन भये जन्म जन्म के किल भग गए तो नानक कहां पे पाई अपने सेवक की आपे दिरखाई गौड़ी महला पंजवा अपने सेवक को आप सगाई नित पद पारे बाप जसे माई प्रभु की सन उभरे सब कोय करन करामन पूर्ण।

करेंगे जान पार ब्रह्म रंग राते सोग सहज आनंद तिना संग उन समसर अवर न दाते जगते उदाहरण से ही आए जो जन दर्श प्यासा उनकी शरण परे सो तरिया संत संग पूर्ण आसा ताके चरण परोता जीवा चरण के संग निहाला भगतन की रेण होए मन मेरा हो प्रभु कृपाला राजोबन अब जो दिस सबके जुग में काटिया नाम दान सर नपन निर्मल यो नान खर तन खाटिया गौड़ी महला पंजवा जो सुन आयो गुरते मोको सब गुर शब्द बुझायो रघाव नौखण पृथ्वी तन में रविया निमख निमख नमस्कारा दीख्या गुर की मुंदरा कानी दृढ़ो एक निरंकारा पंचेले मिल पाए एकत्रा एक जके भज किए दबै रागन आज्ञाकारी तब निर्मल जोगी थीए परम जराय तिराई विभूता पंथ एक कर पेखिया सही सुसु की नी पुता जो ठाकुर मस्तक लेखिया जय पो नाही ता आसन बांधियो चिंगी अनहत बानी तत विचार डंडा कर राखियो जुगत ना मन पानी ऐसा जोगी वड़पागी पेट माया के बंधन काट सेवा पूज करो जिस मूर्त की नानक तिस पग चाट गौड़ी महला पंजवा।

अनक बंधन माया परमत परमाया गुण निध नहीं गाया मान बिखे ही मैं लुजी है जाको रे कृपा करे जीवत सोई मरे।

आयो बाल बुद्ध सुखरे हरख सोग हान मृत दुख सुख चित संसार गुर मिले रहाओ जौला होक सोचो चितव तौलो दुखन भरे जौ कृपाल गुर पूरा फिटिया तो आनंद सहज जेती सियाणप कर्म हो किए तेते बंद परे जो साधु कर मस्तक तरयो तब हम मुक्त भए जौ लो मेरो मेरो करतो तौलो भे केरे मन तन बुद्ध अर्पी ठाकर को तब हम सहज सोए जौ लो पोट उठाई चलयो तौलो डान परे पोट डार गुर।

साधो एवं मन गयो न जाई। चंचल तृष्णा संग बस्त है याते थिरना रहाई रहाओ। कठन क्रोध कट ही के पीतर जे शुद्ध सब सराई। रतन ज्ञान सब को फिर लीना तस कछना बसाई। योगी जतन करत सब हारे गुनी रहे गुन गाई। जन नानक हर पय दयाला तौ सब विद बन आई। गौड़ी महला नामा साधो गोविंद के गुण गावो। मानस जन्म अमोल पायो बिरथा काय गवाव और हाओ। पतत पुनीत दीन बंद हर शरण ताए तुम आओ। गाय को त्रास मिट्यो जे सिमरत तुम काहे बिसराव। ताज अभमान मोह माया फोन भजन राम चित को माई। उल्ले ओ मन समझाए वेद पुराण साल मग सुनकर निमखन हर गुण गावे रखाओ। दुर्लभ दे पाए मानस की बिरथा जन्म सिरावे। माया मोह महासंकट बान तास्यो रुच उपजावे। अंतर बाहर सदा संग प्रभ तास्यो निहो न लावे। नानक मुक्त ताए तुम मानो जे कड़ राम सुमावे। गौड़ी महला नावा साधो राम शरण बिसरामा। वेद पुराण पढ़े को ए गुण।

कैसा डर कमन शब्द पिछाने तीन ने पावन जिन कहया तिन कहे नुखाने जिन बूझिया तिन सहज पिछाने देख विचार मेरा मन माने कीर्त सूरत मुगत इकनाई तही निरंजन रहा सुमाई निकर व्याप रहा निचाई।

एक निरंजन गुरमुख जाता, दूजा मार शब्द पछाता, एक हुकुम वरत सब लोई, एक ते सब ओपत होई, रहा दोवे खसम एको जान, गुर कै शब्द हुकुम पछान, सगल रूप वर्ण मन माही, कहो नानक एको सालाही, गौड़ी महला पहला, अध्यात्म कर्म करे ता साचा, मुक्त भेद क्या जाने काचा, ऐसा जोगी जुगत बीचार है, पंच मार साच उरथा रहे रहाओ, जिसके अंतर साच बसावे, जो जुगत की कीमत पावे, रस एको गृह उद्यान, करणी कीर्त कर्म समान, एक शब्द एक भिख्या मांगे, ज्ञान ध्यान जुगत सज जागे, पाए रच रहे न बाहर जाए, कीमत कौन रहे लिव लाए, आपे मेले परम चुकाए, गुर प्रसाद परम पद पाए, गुर की

मन त्रिवतासिया अलख अपेवा, जय जय देखो तय तय साचा, बिन बूझे झगरत जग काचा, गुर समझावे सोजी होई, गुरमुख विरला बूझे कोई, कर कृपा रख हो रखवाले, बिन बूझे पशु पय बेताले, गुर कया अवर नहीं दूजा, किस को देख करो अन पूजा, संत हेद पर्व तिरपमन तारे, आत्म चीने सो तत् विचारे, साज हृदय प्रेम निवास, परमत नानक हम ताके दास, गौड़ी महला पहला, ब्रह्मे गर्व किया नहीं जानिया, वेद की विवत पड़ी पछतानिया, जय प्रसमरे तई मन मानिया, ऐसा गर्भ बुरा संसार, जिस गुर मिले जिस गर्भ निवार रहाओ, बल राजा माया अहंकारी, जगन करे बो पारे वारी, बिन गुर पूछे जाए पयारी, हरि चंद दान करे जस लेवे, बिन गुर अंत न पाए अपेवे, आ पुलाए आपे मत देवे, दुर्मत हरनाश दुराचारी, प्रभ नारायण गर्व प्रहारी, प्रहलाद उधारे कृपा थारी, फूलो रावण मुगध अचेत, लूटी लंका सीत समेत, गर्भ गया बिन सदगुर हेत, सहस बहु मद कीट मैं खसा, हरनाश ले नहो बेदासा, दय सिंघारे बिन भगत अभ्यासा, जरा संध काल जमना सिंघारे, रक्त बीज काल नेम बिदारे, दय सिंघार संत निस्तारे, आपे सदगुर शब्द बीचारे, दूजे पाए दैत संघारे, गुरमुख साज भगत निस्तारे, बूढ़ा दुर्योधन पद खोई, राम न जानिया करता सोई, जान को दुख पचे दुख होई, जिन मेजे गुर शब्द न जानिया, क्यों सुख पावे परम भुलानिया, एक तिल पूले बौर पछतानिया, कंस केस चांडूर ना कोई, राम न चीनिया अपनी पद खोई, बिन जगदीश न राखे कोई, बिन गुर गर्भ न मिटिया जाए, गुरमत धर्म तीर्ज हर नाए, नानक नाम मिले गुण गाए, गौड़ी महला पहला, चोवा चंदन अंक चढ़ाओ, पाठ पटंबर पैर हंडाओ, बिन हर नाम कहाँ सुख पावो, क्या पैरो क्या ओट दिखावो, बिन जगदीश कहाँ सुख पावो, रहाओ कानी कुंडल गाल मोतियन की माला, लाल निगाली फूल गुलाला, बिन जगदीश कहाँ सो पाला, नैन सुनोनी सुंदर नारी, खोर सीगार करे अद प्यारी, बिन जगदीश पजे नित कुवारी, दार कर महिला से सुखाली, तैन फूल बिछावे माली, बिन हर नाम सो दे सुखाली, ऐबर गैबर नेजे वाजे, लस्कर नेब खुवासी पाजे, बिन जगदीश झूठे दिवाजे, सिद्ध कहावो हृ सिद्ध बुलाओ, ताज कुल है सिर छत्र बनाओ, बिन जगदीश कहां सद पाओ, खान मलूक हावो राजा, अबे तबे कूड़े गए पाजा, बिन गुर शब्द न सबर सकाजा, होमे ममता गुर शब्द विसारी, गुरमत जान्या हृदय मुरारी, परमत नानक शरण तुम्हारी, गौड़ी महला पहला, सेवा एक न जानस अवरे, परपंच ब्याद त्यागे कवरे, पाए मिले सच साचे सच रे, ऐसा राम पत जन होई, हर गुण गाय मिले मलत होई रहाओ, उन्दो कबल सगल संसारे, दुर्मत अगन जगत पर जारे, सो उबरे गुर शब्द विचारे, प्रेंग पतंग कुंचर अरमीना, मिर्ग मरे से अपना कीना, तिसना राज तत् नहीं बीना, काम चिते कामन हितकारी, क्रोध बेनासे सगल विकारी, पत मत खोवे नाम सारी, पार कर चीत मन मुख डोलाए, गल जेवड़ी तंदे लपटाए, गुरमुख छूट हर गुण गाए, ज्यों तन विधवा पर को दे, ताम दाम चित पार वस से, बेन पिर तृप्त न कबहू होई, पढ़ पढ़ पोथी सिमरत पाठा, वेद पुराण पढ़े सुन थाटा, बिन रस राते मन भो नाटा, ज्यों चातरक जल प्रेम प्यासा, ज्यों मीना जल भाए उलासा, नानक हर रस पी तृप्तासा, गौड़ी महला पहला, हड़ कर मरे न लेखे पावे, वेश करे बो पसम लगावे, नाम सार बोर पछतावे, तू मन हर जियो तू मन सूख, नाम सार

किसे मुकाम सा मरे संते माया दाम मैं तन दीजे हर अमृत नाम तरैयत मैर मुकदम सिकदार निचल कोई ना दिसे संसार अभरो काल कूड़ सिर मारे निचल एक सच्चा ससोई

आप हो जाओ। मानव को सूत का कभे न जाए, जितिर शब्द न पीजे हर कहे न आए। रहाओ सबो सूत के जेता मो आकार, मर मर जमे वारो वार। सूत अगन पौने पानी माहे, सूत भोजन जेता किस खाहे। सूत करमन पूजा होए, नाम रते मन निर्मल होए। सदगुर सेवे है सूत जाए, मरे न जन्मे काल न काए। सास्त सिमरत सो देखो कोए, विण नावे को मुक्त न होए। जुग चारे नाम उत्तम शब्द विचार, काल में गुरमुख उतरस पार। साचा मरे न आवे जाए, नानक गुरमुख रहे सुमाए। गौड़ी महला तीजा, गुरमुख सेवा प्राण आधारा। हर जू राखो हृदय उर तारा, गुरमुख शोभा साज दुआरा। पंडित हर पढ़त जो विकारा, गुरमुख भौजल उतरो पारा। रहाओ गुरमुख विचो हो में जाए, गुरमुख मैल न लागे आए। गुरमुख नाम से मन आए, गुरमुख कर्म धर्म सच होई। गुरमुख अंकार जलाए दोई, गुरमुख नाम रते सुख होई। अपना मन पर बुद्ध हो बुझो सोई, लोग समझावो सुने ना कोई। गुरमुख समझो सदा सुख होई, मनमुख डंप बहुत चतराई। जो कुछ कमावे सो थाए ना पाई, आवे जावे ठौर ना काई। मनमुख कर्म करे बहुत अभमाना, बागजों लाए भये नित्याना। जा पकड़िया तब ही पछताना, बिन सतगुर सेवे मुक्त न होई। गुर प्रसादी मिले हर सोई, गुरदाता जुग चारे होई। गुरमुख जात पद नामे वड्याई, सायर की पुत्री बिदार गवाई। नानक बिन नावे झूठी चतराई, गौड़ी महला तीजा। हे जो का धर्म पढ़ो तुम पाई, पूरे गुरसब सोजी पाई। ऐथ अगे हर नाम सुखाई, आराम पढ़ो मन करो विचार। गुरप्रसादी मैल उतार रहाओ, वाद विरोध न पाया जाए। मन तन फीका दूजे पाए, गुर के शब्द सच ले लाए। हौ में मैला एओ संसारा, नित तीर्थ नावे न जाए अहंकारा। बिन गुर पेटे जम करे खुवारा, सोजन साचा दे हौ में मारे। गुर के शब्द पंच संघारे, आप तरे सगले कुल तारे। माया मोहे नट बाजी पाई, मानमुख अंदर है लपटाई। गुरमुख अलिप्त रहे लिवलाई, बहुते पेख करे पेख तारी। अंतर से न फिरे अंकारी, आप न चीने बाजी हारी। कापड़ पैर करे चतराई, माया मोहे अध परम फुलाई। बिन गुर सेवे बहुत दुख पाई, नाम रते सदा बैरागी। गृह अंतर साच लिवलागी, नानक सतगुर सेवा से वड़पागी। गौड़ी महला तीजा, ब्रह्मा मूल वेद अभ्यासा। तेथ उपजे दे मोह प्यासा, त्रै गुण परमे नाही निज करवासा। हम घर राखे सदगुरु मिलाया, अन दिन भगत घर नाम दृढ़ाया। रहाओ त्रै गुण बाणी ब्रह्म जंजाला, पढ़वाद वखाणे सिर मारे जमकाला। तत न चीने बन्ने पंड पराला, मानमुख अज्ञान कुमार्ग पाए। हर नाम सारिया बहु कर्म दृढ़ाए, पवदल डूबे दूजे पाए। माया का मोहताज पंडित कहावे, विख्या राता बहु दुख पावे। जम का गल जेवड़ा, नितकाल संतावे। गुरमुख जम काल ने

मुक्त दाता सतगुर जो गुमाह गुरमुख प्राणी परम गवाए सहत उपजे हर लिवलाए अरहाओ त्रै गुण काले की सरकारा नाम न चेते उपावन हारा मर जम्मे फिर वारो वारा अंधे गुरु ते परम न जाई मूल छोड़ लागे दूजे पाई बेका माता बिखमाए सुमाई माया कर मूल जंतर फरमाए हर जीव विसरिया दूजे पाए जिस नर करे सो परम गत पाए अंतर साच बार साच वरताए साच ना छपे जे को रखे छुपाए ज्ञानी बूझे सहज सुपाए गुरमुख साज रहा लिवलाए होमे माया शब्द जलाए मेरा प्रसाचा मेल मिलाए सदगुर दाता शब्द सुनाए ताप ते राखे ठाक रहाए पूरे गुर ते सोजी पाए आपे करता सृष्ट सृजन गोई तिस बिन दूजा अवर न कोई नानक गुरमुख बूझे कोई गौड़ी महला तीजा नाम अमोलक गुरमुख पावे नामो सेवे नाम सहे समावे अमृत नाम रसना नित गावे जिसनु कृपा करे सो हरस पावे अंधन हिरदे जपो जगदीसा गुरमुख पावो परम पर सुखा रखाओ हिरदे सुख पया प्रगास गुरमुख गावे सच गुणतास दासन दास नित होवे दास ग्रह कुटुंब सदा उदास जीवन मुक्त गुरमुख को होई परम पदार्थ पावे सोई त्रैगुण मेटे निर्मल होई सहजे साच मिले प्रसोई मोह कुटुंब सो प्रीत न होए जा हिरदे वसिया ससोए गुरमुख मन बेदया अस्थिर होए हुक्म पछाणे बूझे ससोए तू करता में अवर न कोए को सेवी तुते पद होए कृपा करे गावा प्रसोए नाम रतन सजग मैं लोए गुरमुख बाणी मीठी लागी अंतर बिकसे अन दिन लिव लागी सहजे सत मिलिया प्रसादी सतगुर पाया पूरे वडभागी होमे ममता दुरमत दुख नास जब हिरदे राम नाम गुणतास गुरमुख बुद्ध प्रगटी प्रवजास जब हिरदे रविया चरण निवास जिस नाम दे सोई जन पाए गुरमुख मेले आप गवाए हिरदे सचा नाम साए नानक सहजे सा सुमाए गौड़ी महला तीजा मन ही मन सवारिया पैसा सुपाए सदमा रंगया लिवलाए नेकर वस्या प्रभ की रिजाए सदगुर सेवे जाए अब महान गोविंद पाएगे गुणी निधान हरहाओ मन बैरागी जा शब्द पौखाए मेरा प्रभ निर्मला सबते रहा सुमाए गुर कृपा ते मिले मिलाए हर दासन को दास सुख पाए मेरा हर प्रभ इन बद पाया जाए हर कृपा ते राम गुण गाए त्रिग बो जीवन जित हर नाम न लगे प्यार त्रिग से सुखाली कामन हो गुबार तिन सबल जन्म जिन नाम आधार त्रिग त्रिग गृह कुटुंब जित हर प्रीत न होए सोई हमारा मीत जो हर गुण गावे सोए हर नाम बिना मैं अवर न कोए सगुर ते हम गत पद पाई हर नाम त्याया दुख सगल मिटाई सदा आनंद हर नाम लिवलाई गुर मिले हम कौ शरीर शुद्ध पई होमे तृष्णा सा अगन बुझई बिनसे क्रोध खिमा गए लई हर आपे कृपा करे नाम देव गुरमुख रतन को बिरला लेव नानक गुण गावे हर अलख अपेव एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग गौड़ी बैरागण मोहला तीजा सगुर तेजो मुँह फेरे ते वे मुखो बुरे दसन अनदन बदते मारियन फिर वेला नाल हन हर गा राखो कृपा तार ससंगत मेलाए प्रभ हर हिरदे हर गुण सार हरहाओ से भगत हर पाम दे जो गुरमुख पाए चिलन आव छोड़ सेवा करन जीवित मोए रहन जेदा पिंड प्राण है तिकी सिरकार ओ क्यों मनो वसारी है हा रखिये हिरदे तार ना मिले पद पाईए ना मने सुख होए सगुर ते नाम पाईए तरम मिले प्रसोए सगुर ते जो मोह फेरे ओए परम दे ना टिकन तरत असमान ना चलई विच विष्टा पए पचन यो जग परम भुलाया मोए ठगो ली पाए जिन्ना सगुर फेटिया तिन नेड़।

दर्शन देख देख जीवा, गुर के चरण तोय तोय पीवा, गुर की रेण नित मज्जन करो, जन्म जन्म की होमे मलहरो, किस गुर को चूला भूपाखा, महा अग्न ते हाथ दे राखा, किस गुर के ग्रह टोबो पानी, जिस गुर ते अकल कद जानी।

हर रंग रंगो, जप जेवा हर एक मंगो, हरहाओ तज होमे गुर ज्ञान भजो, मिल संगत तुर कर्म लिखियो, जो दिसे सो संग न गयो, सागत मूड लगे पच मोयो, मोहन नाम सदा रब रहे हो, कोड़ मदे किने गुरमुख लहे हो।

तुम्हारे देख मोही उदास तन क्यों तीर है। गुणवंत ना दयाल बाला सर्व गुण भरपूर है, फिर दोष नाही सुखे दाते हो मिचड़ी बुरियारे। बिनवंत नानक दया तार हो तार आव हो ना प्यारे। हो मन अर्पी सब तन अर्पी अर्पी सब देसा, हो सिर अर्पी जमीत प्यारे। जो प्रादेश संदेसा अर्प्या ता शीस सुथान गुर पै, तंग प्रभु दुखाया खिरमाए सगला दुख मिटया। मनो चिंदया पाया दिन रैन रलिया करे कामन, मिटे सगल अंदेसा बिनवंत नानक कंत मिलया। लोड़ते हम जैसा मेरे मान अंध फया जियो, वजी वाधाई हर लाल आया प्यारा सब तिखा बुझाई। मिलया ता लाल गोपाल ठाकुर सखी मंगल गाया, ता मीत बंदप हरख उपजया दूत थाव गवाया। अनहत वाजे वजे कर्म प्रसंग सेज विशाई, बिनवंत नानक सहज रहे हर मिलया कंत सुगदाई। गौड़ी महला पंजवा मोहन तेरे ऊचे मंदर मैल अपारा, मोहन तेरे सोन द्वार जियो संत धर्मशाला। धर्मशाल अपार दयाल ठाकुर सदा कीर्तन गावे, जय साध संत एकत्र होवे ता तुझे त्यावे। कर दया मया दयाल स्वामी ओ दीन किरपारा, बिनवंत नानक दर्श प्यासे मिल दर्शन सुख सारा। मोहन तेरे बचन अनूप चाल निराली, मोहन तू माने एक जी अवर सवराली। माने ता एक अरेक ठाकुर जिने सब कल तारिया, तू बदन गुर कै वस किया आद पुरख बनवारिया। तू आप चलिया आप रहया आप सब कल तारिया, बिनवंत नानक पैज राखो तब सेवक शरण तुमारिया। मोहन तो सत संग त्याय दर्स त्याना, मोहन जम नेड़ न आवे तुद जपे निदाना। जम काल तिन को लगे नाही जो एक मन त्याग हे, मन बचन कर्म जे तुद आराध है से सबे फल पाव हे। मल मूत मूल जे मुक्त होते से देख दर्स सुगयाना। बिनवंत नानक राज निचल पूर्ण पुरख भगवाना। मोहन तू सुबल फलिया सन परवारे, मोहन पुत्र मीत भाई कुटम सब तारे। तारिया जहान लया अभिमान जिन्नी दर्शन पाया, जिन्नी तुदनु तन कहया तेन जम नेड़ न आया। बेंत गुण तेरे कथे ना जाही सदगुर पुरख मुरारे। बिनवंत नानक टेक राखी जित लगतरिया संसारे। गौड़ी महला पंजवा श्लोक पतत असंख पुनीत कर पुनः पुनः बलिहार। नानक राम नाम जप पाप को तिन किलबख दानहार। शंत जप मना तू राम नारायण गोविंदा हर माधो, त्याए मना मुरार मुकंदे कटिए काल दुख फादो। दुख हरण दीन शरण श्री तार चरण कम आराधिये, जं पंत बिखड़ा अग्न सागर निमख सिमरत साधिये।

नित सुख मनाई प्रामेरी आस पुजाए चरण प्यासी दर्स बैरागन पेखो थान सबाए खोज लो हर संत जना संग समृत पुरख मिलाए नानक तिन मिलया सुरजन सुखदाता सेवड़ भागी माए सखी नाल वसा अपने ना प्यारे मेरा मर तन हर संग हिलया सुन सवीए मेरी नींद भली मैं अपनड़ा पिर मिलया परम खोयो सांत सह स्वामी प्रगास पया कौल खिलया वर पाया प्रभ अंतर जामी नानक सुहाग ना टलिया।

पितर कर पातो ज्ञानी सोए जाके दृढ़ सो कैत सोंत कस जोग न हो ज्ञानी रहत आज्ञा दृढ़ जाके उसन सीत संसर सवता के ज्ञानी तत् गुरमुख बिचारी नानक जाको कृपा थारी श्लोक आमन आए से तुम्हें बिन बूझे पल ठोर नानक गुरमुख सो बुझे जाके पाग मथोर पौड़ी या जुग में एक है को आया जन्म तुम होयो मोहनी माया गर्भ कुंट में उर तब करते सास सास सिमरत प्रव रहते उर्ज परे सो छोड़ छिड़ाना देवन हार मने बिसराना तारो कृपा जिसे गुसाई एत उत नानक इस बिसरो नाही श्लोक आवत हुक्म विनाश हुक्म आज्ञा पिन ना कोय आमन जाना ते मिटे नानक जे मन सोए पौड़ी एओ जी बहुत गर्भ वासे मोह मगन मीड जोन वासे इन माया त्रैगुण बस कीने आपन मोह कटे कर दीने ए साजन काशिप कहो उपाया जा ते तरो बिखम ए माया कर कृपा सत संग मिलाए नानक ताके निट न माए श्लोक किरत कमामन शोभ अशोभ इन्ने तिन प्रभे आप बस आपन हो करे नानक बिन हर खां कमात पौड़ी एक है आप करा मनहारा आप है पाप उन विस्तारा या जोग जित जित आप है लायो सो सो पायो जो आप

कुसुम रंग बिरसोर नांग ते सरणी परो बिरस जाए मैं मोर पौड़ी रे मान बेनखार जह रचो तह तह बंधन पाखे जेबद कदू ना छूटी है साकत तेऊ कुमार।

एक नाम ले मने परो यैया जन्मन हारिये गुर पूरे की टेक नांग ते सुख पाया जाके हीरे एक श्लोक अंतर मन तन बस रहे ई पूत के मीत गुर पूरे उपदेसया नानक जपिए नीत पौड़ी अनदिन सिमरो तास को जो अंत सहाई होए ये बिखिया दिन चार छे छाड़ चले सब कोए ताको मात पिता सुतिया गृह बंता का संग न लिया ऐसी संच जो बिन सत नाही बासे ती अपने कर जाही सा संग काल कीर्तन गाया नानक ते बौर न आया श्लोक।

का संजमो गुर कै सबद पछान या डेरा कहो श्रम कर खाले ताक का तसु नहीं संग चाले वह डेरा की सो मित जाने जा कहो दृष्ट पूर्ण भगवान ने।

जम मरे गर्भ जोन दुख पाए, मोह मगन लपटत रहे आहो आवे जाए। टहे पर टहेद अब टहे परे, साजना सुरनाए दुके फाहे काटिया, नानक लिए सुमाए। श्लोक जय साधु गोविंद भजन कीर्तन नानक नीत, अणा हो अणा तू अण छुट, निट न जाइयो दूत पौड़ी, नाणारण ते सीजिए आत्म जीते कोए। होमे अंस लार मरे तो शोभा दू होए, मणि मिटाए जीवत मरे गुर पूरे उपदेश, मनुआ जीते हर मिले ते सूरत तनवेश। अणा को जाने अपनो एक टेक आधार, रैन दिनस सिमरत रहे ओपरा पुरखे पार। रेण सगल या मन करे एऊ कर्म कमाए, हुक्मे बूझे सदा सुख नानक लिखिया पाए। श्लोक तान मत तान अर्पो तिसे, प्रभु मिला वे मोह, नान प्रमपो काटिए चूके जमकी जो पौड़ी। तत्ता तसो प्रीत कर गुणित गोबिंद राय, हल पावे मन बाजते तप्त तुहारी जाए। त्रास मिटे जम पंथ की जास बसे मन नाओ, गद पावे मत होए परगास मैलनी पावे ठाओ। ताऊ संग न तन चले ग्रह जो बनहे राज, संत संग सिमरत रहो है तुहारे काज। ताता कछु न होई है जो तापने वारे आप, प्रतपाले नानक हमें आपे माई बाप। श्लोक थाके बोविद काल ते तृप्तना तृष्णा लाथ, संच संच साकत मुए नानक माया ना साथ। पौड़ी थत्था थेर को नहीं काय पसारो पाव, अनक बंच बल चल करो माया एक पाव। थैली संचो श्रम करो था के परो गावार, मन के कामना आवई अंते अवसर बार। सित पावो गोविंद भजो संते की सकले हो, प्रीत करो स एक स्यों या साचा असने हो। कारण करन करामनो साविद एक हाथ, जित जित लाभ हो तित तित लगे नानक जंत अनाथ। श्लोक दस एक निहारिया सबका दे मनहार, सास सास सिमरत रह नानक दर्श आधार।

दृष्टि आया उस्तद करने जोग पौड़ी खखा खरा सरा होता हु जो खिर में ऊने सुबर पराहु खरा निमाना होत परानी आनदन जापे प्रभ निर्वानी पावे खसम ता ओआ सुख देता पार ब्रह्म ऐसो आगंता असंख खते खिन बख्शन हारा नानक साहेब सदा दयारा तलोक सत कहो सुन मान मेरे तरन परो हर राय उगत सियानप सगल त्याग नानक लय समाए पौड़ी ससा सियानप शाड एयाना हिकमत हुक्म ना प्रपतियाना सहज पाद करे चतराई संग तुहारे एक ना जाई सोऊ सोऊ जप दिन राती रे जी चले तुहारे साथी साध सेवा लावे जे आपे नानक ताको दुख न व्यापे सलोक हर घर मुखते बोलना मन बूठे सुख होए नानक सब मै रव रहया शांत अनंतर सोए पौड़ी फेरो कड़ कड़ सगल कै पूर रहे भगवान होवते आए साध सदीव दुख भंजन गुर ज्ञान हौ छुटके हुए आनंद ते हौ नाही ते आप अते दुख जन्मे मरन संत संग प्रताप हित कर नाम दृढ़ दयाला संते संग होत कृपाला।

भगत जना कई मन बसराम रहाओ। प्रभ के सिमरन गर्भ न बसै, प्रभ के सिमरन दुख जम नसै, प्रभ के सिमरन काल पर हरै, प्रभ के सिमरन दुश्मन टरै, प्रभ सिमरत कछ बिघन न लागै, प्रभ के सिमरन अन दिन जागै, प्रभ के सिमरन पौ न व्यापै, प्रभ के सिमरन दुख न संतापै, प्रभ का सिमरन साध के संग, सर्ब निधान नानक हर रंग, प्रभ के सिमरन हृदय सिद्ध नौ निध, प्रभ के सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध, प्रभ के सिमरन जपता पूजा, प्रभ के सिमरन बिन सह दूजा, प्रभ के सिमरन तीर्थ इस नानी, प्रभ के सिमरन तर्क है मानी, प्रभ के सिमरन हुए सो भला, प्रभ के सिमरन सुफल भला, से सिमरे जिन आप सिमराए, नानक ताके लागो पाए, प्रभ का सिमरन सबते ऊंचा, प्रभ के सिमरन उदरे मूचा, प्रभ के सिमरन तृष्णा बुझे, प्रभ के सिमरन सबके सुझे, प्रभ के सिमरन नाही जम त्रासा, प्रभ के सिमरन पूर्ण आसा, प्रभ के सिमरन मन की मल जाए, अमृत नाम हृदमाए सुमाए, प्रभ जी बसे साध की रसना, नानक जन का दासन दसना, प्रभ को सिमरह से तनवंत, प्रभ को सिमरह से पुतवंत, प्रभ को सिमरह से जन परवान, प्रभ को सिमरह से पुरख प्रधान, प्रभ को सिमरह ते बे मोहताजे, प्रभ को सिमरह ते सर्व के राजे, प्रभ को सिमरह से सुखवासी, प्रभ को सिमरह सदा अविनाशी, सिमरन ते लागे जिन आप दयाला, नानक जन की मंगे रवाला, प्रभ को सिमरह से पर उपकारी, प्रभ को सिमरह तिन सद बलिगारी, प्रभ को सिमरह ते मुख सुहावे, प्रभ को सिमरह तिन सुख बिहावे, प्रभ को सिमरह तिन आत्म जीता, प्रभ को सिमरह तिन रमल रीता, प्रभ को सिमरह तिन अंध कनेरे, प्रभ को सिमरह बसे हर नेरे, संत कृपा ते अन दिन जाग, नानक सिमरन पूरे भाग, प्रभ के सिमरन कार्य पूरे, प्रभ के सिमरन कभो ना चूरे, प्रभ के सिमरन हर गुरबानी, प्रभ के सिमरन सहे सुमानी, प्रभ के सिमरन नित्यलयासन, प्रभ के सिमरन कमल बेगासन, प्रभ के सिमरन अनहा चुनकार, सुप्रा सिमरन का अंत न पार, सिमर है से जन जिनको प्रमया, नानक तिन जन सरणी पया, हर सिमरन कर भगत पगटाए, हर सिमरन लग बेद उपाय, हर सिमरन पय सिद्ध जति दाते, हर सिमरन नी चौकुंट जाते, हर सिमरन धारी सब तरना, सिमर सिमर हर कारण करना, हर सिमरन कियो सगल अकारा, हर सिमरन मैं आम निरंकारा, कर कृपा जिस आप बुझाया, नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया, सलोक दीन दर्द दुख पंजना, घटघट नाथ अनाथ शरण तुम्हारी आयो, नानक के प्रसाद अष्टपदी, जय मात पिता सुदमीत न पाई, मन उहा नाम तेरे संग सहाई, जय महाभयान दूध जम दलै, तै केवल नाम संग तेरा चलै, जय मुश्किल होवे अदपारी, हर को नाम खिन महे उधारी, अनक पुने चरण करतनी तरै, हर को नाम कोड पाप पर हरै, गुरमुख नाम जपो मन मेरे, नानक पावो सुख कनेरे, सरसठ को राजा दुखिया, हर का नाम जपत हो सुखिया, लाख करोरी बंधन पर, हर का नाम जपत निस्तर, अनक माया रंग तिघना बुझावे, हर का नाम जपत आघावे, जे मार्ग यो जात अकेला, तय हर नाम संग हो सुहेला, ऐसा नाम मन सदा ते आईये, नानक गुरमुख परम गद पाईये, टूटत नहीं कोट लख बाही, नाम जपत ते पार पराही, अनक विघ्न जय आए संघार, हर का नाम तत्काल उधार, अनक जून जन्म में मर जाम, नाम जपत पावे विश्राम, हो मैला मल कभू न थोवे, हर का नाम कोड पाप खोवे, ऐसा नाम जपो मन रंग, नानक पाइये साध के संग, जे मार के गने जाए न कोसा, हर का नाम उहा संतोसा, जे पैंडे महा अंध गुबारा, हर का नाम संग उजियारा, जहां पन तेरा को ना सुजानू, हर का नाम तय नाल पछानू, जय महाभयान तप्त बहु काम, तय हर के नाम की तुम्हें ऊपर शाम, जहां त्रिखा मन तुझ आकर्ष, तय नानक हर घर

रात हर हर औखद साध कुमात हर जन के हर नाम निधान पार ब्रह्म जन की नो दान मन तन रंग रते रंग एक नानक जन के बिरत विवेक हर का नाम जन को मुक्त जोत हर के नाम जन को तृप्त भूत हर का नाम जन का रूप रंग हर नाम जपत का परे न पंग हर का नाम जन की वडियाई हर के नाम जन शोभा पाई हर का नाम जन को भोग जोग हर नाम जपत

सह स्वभाव ब्रह्मज्ञानी निर्मल ते निर्मल जैसे मैल न लागे जला ब्रह्मज्ञानी के मन होए प्रगास जैसे तर ऊपर आकाश ब्रह्मज्ञानी के मित्र सत समान ब्रह्मज्ञानी के नाही अवमान ब्रह्मज्ञानी ऊंच ते ऊंचा मन अपने के सब ते नीचा ब्रह्मज्ञानी से जन पए नानक जिन प्रभ आप करे ब्रह्मज्ञानी सगल की रीना आत्मरस ब्रह्मज्ञानी तीना ब्रह्मज्ञानी की सब ऊपर मया ब्रह्मज्ञानी ते कछ बुरा न पया ब्रह्मज्ञानी सदा समंदर सी ब्रह्मज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी ब्रह्मज्ञानी बंधन ते मुक्ता ब्रह्मज्ञानी की निर्मल जुगता ब्रह्मज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक ब्रह्मज्ञानी का ब्रह्म ध्यान ब्रह्मज्ञानी एक उपरयास ब्रह्मज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्मज्ञानी का गरीबी समाह ब्रह्मज्ञानी परे उपकार्यो माह ब्रह्मज्ञानी कह नागी तंदा ब्रह्मज्ञानी ले तावत बंदा ब्रह्मज्ञानी कह हो सो फला ब्रह्मज्ञानी सोफल फला ब्रह्मज्ञानी संग सगल उधार नानक ब्रह्मज्ञानी जपे सगल संसार ब्रह्मज्ञानी कह एक कह रंग ब्रह्मज्ञानी कह बसे प्रसंग ब्रह्मज्ञानी कह नाम आधार ब्रह्मज्ञानी कह नाम परवार ब्रह्मज्ञानी सदा सजागत ब्रह्मज्ञानी अंगबोध त्यागत ब्रह्मज्ञानी कह मन परमानंद ब्रह्मज्ञानी कह घर सदा आनंद ब्रह्मज्ञानी सुख सहज निवास नानक ब्रह्मज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म का बेता ब्रह्मज्ञानी एक संहेता ब्रह्मज्ञानी कह होए अचिंत ब्रह्मज्ञानी का निर्मल मंत ब्रह्मज्ञानी करे प्रव्याप ब्रह्मज्ञानी का बड़ प्रताप ब्रह्मज्ञानी का दस बड़ भागी पाई है ब्रह्मज्ञानी को बल बल जाइए ब्रह्मज्ञानी को खोजे महेश्वर नानक ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर ब्रह्मज्ञानी की कीमत ना है ब्रह्मज्ञानी का सगल मन माह ब्रह्मज्ञानी का कौन जाने भेद ब्रह्मज्ञानी को सदा आदेश ब्रह्मज्ञानी का तथ्या न जाए अधाखेर ब्रह्मज्ञानी सर्व का ठाकुर ब्रह्मज्ञानी की मित कौन बखाने ब्रह्मज्ञानी की गत ब्रह्मज्ञानी जाने ब्रह्मज्ञानी का अंत न पार नानक ब्रह्मज्ञानी को सदा नमस्कार ब्रह्मज्ञानी सब सिद्ध का करता ब्रह्मज्ञानी ता जीवे नहीं मरता ब्रह्मज्ञानी मुक्त जुत जी का दाता ब्रह्मज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता।

कबहु होए बहे बड़ राजा, कबहु पेखारी नीच का साजा, कबहु अब कीर्त में आवे, कबहु पला पला कहावे, यूं प्रवरा के तिव ही रहे, गुर प्रसाद नांग सच कहे, कबहु होए पंडित करे बखियान, कबहु मोन तारी लावे ध्यान, कबहु तड़ती स्नान, कबहु सिद्ध साधक हो ज्ञान, कबहु कीड़ हस्पतंग हो जिया, अनक जोन परमे परमिया, नाना रूप जो स्वांगी दिखा।

निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी ताड़ कर सुनी श्रवण बखियाणी पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत नाम जपे नानक मन प्रीत श्लोक संत शरण जो जन पर हो जन उदर निहार संत की निंदा नानका बौर बौर अवतार अष्टपदी संत के दुख निहार जा कटे संत के दुख न जमते नहीं छुट्टे संत के दुख

का दुखी जन्म मरे तनकी दुख ना सुखते टरे तनके दुखी को ना गीटाओ नानक संत पावे ता लहे मिलाए संत का दुखी अद बीज ते टूटे संत का दुखी किते काज ना पहुंचे तनके दुखी को उद्यान फरमाइए तनका दुखी उजड़ पाईए तनका दुखी अंतर ते थोता जो साथ बिना मृतक की लोता संत के दुखी की जड़ किश ना गए आपन बीज आपे ही खा गए तनके दुखी को अवर न रखन हार नानक संत पावे ता ले ओबार तनका दुखी यों बिल लाए ज्यो जल बिहून मछली तड़फड़ाए तनका दुखी भूखा नहीं राजे ज्यो पावक ईतन नहीं तापे तनका दुखी छुटे अकेला ज्यो बुआड़ तेर खेत मैं दोहेला तनका दुखी तर्म ते रहत तनका दुखी थल मिथ्या कहत किरत निंद का तुरही पया नानक जोत पावे सोई थे संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए संत के दुखी तो दरगह मिले सुजाए संत का दुखी सदा सहकाई है संत का दुखी ना मरे ना जीवाई है तनके दुखी की पूजे नयासा संत का दुखी उड़ चले निरासा संत के दुख ना तृष्ट को

गत नानक जब एक हर नाम रूपवंत होए नाही मोह है, प्रभु की जोत सगल कड़ सोह है, तनवंता होए क्या को गर्भ है।

गैर गंभीर गहीर सुजाना पार ब्रह्म परमेश्वर गोबिंद कृपा निधान दयाल भगसंद साथ तेरे की चरनी पाओ नानक कै मन एव अनराओ।

अनद रूप मंगल सदजाक सर्व थोक सुनहे करताक राजमय राज जोग मय जोगी तप मय तपीसर गृहस्थ मय भोगी त्याय त्याय भगते सुख पाया नानक थ पुरख का किने अंत न पाया जाकी लीला की मित नाग सगल देव हारे अवगाह पिता का जन्म के जाने पूत सगल परोई अपने सूत सुमत ज्ञान ध्यान जिन दे जन दास नाम त्यावे से त्यो गुण मै जा को फरमाए जन्म मरे फिर आवे जाए ऊंच नीच इसके स्थान जैसा जनावे तैसा नानक जान नाना रूप नाना जाके रंग नाना पेख कर एक रंग नाना विद तीनो विस्तार प्रभ अवनासी एक अंकार नाना चलत करे खिन माहे पूर रहे।

कै रंग सेवक को प्रपालन हारा सेवक की रखे निरंकार सो सेवक जे दया प्रवतार नानक सो सेवक सास सास सुमार अपने जन का पर्दा ढाके अपने सेवक की सर पर रखे अपने दास को दे वडाई अपने सेवक को नाम जपाई अपने सेवक की आप पत रखे ताकि गत मित कोई ना लख प्रभ के सेवक को ना पहुंचे प्रभ के सेवक ऊजते ऊचे जो प्रभ अपनी सेवा लाया नानक सो सेवक दैत से प्रगटाया निकी कीरी में कल रख पसम करे लस्कर कोट लख जिसका साधन काटते आप ताको राखत दे कर हाथ मानस जतन कर्तव पात जिसके कर्तव्य व्यर्थ जात मारे ना रखे अवर न कोय सर्ब जिया का रखा सोय काहे सोच करे रे प्राणी जप नानक प्रभ अलख विडाणी बारंबार बार प्रभ जपीए ई अमृत यो मन तन त्रपीए नाम रतन जिन गुरमुख पाया तिस किश अवर नाही दृटाया नाम तन नम रूप रंग नमो सुख हर नाम का संग नाम रस जो जन त्रिवतान ने मर्तन नामे नाम सुमाने।

करै भगत आत्म कैचाए प्रभ अपने सो रह सुमाए जो होआ होवत सो जान प्रभ अपने कहो पछान तिसकी महिमा कौन बखानो तिसका गुण कै एक न जानो आठ पैर प्रभ से हजूरे कहो नानक से ही जन पूरे मन मेरे दिन की ओट लेहे मन तन अपना तिन जन देहे जिन जन अपना प्रभु पछाता सो जन सर्व थोग का दाता इसकी शरण सर्व सुख पावे।

निर्गुण आप सरगुण पी ओही कला तार जिन सगली मोही अपने चित प्रभ आप बनाए अपनी कीमत आपे पाए हर बिन दूजा नाही कोय सर्व निरंतर एको सोय ओत पोत रव्या रूप रंग पय प्रगास साध कै संग रच रचना अपनी कलतारी अनकबार नानक बलिहारी श्लोक साधना चले बिन भजन बिखिया सगली शार हर हर नाम कुमावना नानक यो तनसार अष्टपदी संत जना मिल करो विचार एक सिमर नाम आधार अवर उपाव सा मीत बसारो चरण कमल हृदमय उर तारो करण कान सो प्रसमरथ गिरड़ कर गहो नाम घर वथ यो तन संचो हो वो भगवंत संत जना का निर्मल मंत एक आस रखो मन माहे सर्व रोग नानक मिट जाए ये तन को चार कुण टुड़तावे सो तन हर सेवा ते पावे जिस कोवनत बाछे मीत सो सो साधु संग परीत जे सोभा को करे पली करनी सा सोभा पज हर की सरनी अनको पावी रोग न जाए रोग मिटे हर अवख दलाए सर्वनदान मै हर नाम मनदान जप नानक दरगह परवान मन पर बुद्ध हर कै नाए दैस ताव ते आवे ठाए ताको बिगन ना लागे कोए जा कर दे बसे घर सोए कल ताती ठंडा हर नाओ सिमर सिमर सदा सुख पाओ भव बिन से पूर्ण होए आस भगत पाया तुम परगास जित कर जाए बसे अविनाशी।

जो लोहा पारस पेटी है मिल संगत स्वर्ण होए जाए जन नान के प्रा तू तनी जो पावे तेरे चिलाए पौड़ी जिन घर गिर दे सेवया तिन घर आप मिलाए गुण की सांझ तिन स्यों करी तब अवगुण शब्द जलाए अवगुण विकण पलरी जे देश सच्चे पाए बलिहारी गुरे अपने जिन अवगुण मेट गुण प्रगटी आए वड्डी वड्याई वड्डे की गुरमुख आ लाए श्लोक महला चौथा सतगुरु विच वड्डी वड्याई जो अनदिन घर घर नाम त्यावे हर घर नाम रमत सो संजम हर नामे की तृप्तावे हर नाम तान हर नाम दीवान हर नमो रख करावे जो चित लाए पूजे गुरमूर्त सो मान इच्छे फल पावे जो निंदा करे सब गुर पूरे की ते करता मार देवावे फिर ओ वेला ओ सत न आवे ओ अपना बीजिया आपे खावे नरक कोर मुए काले खड़िया जो तस्कर पाए गलावे फिर सतगुर की सरणी पवे ता उबरे जा हर घर नाम त्यावे हर बाता आ सुनाए नानक हर करते ए वे पावे महला चौथा पूरे गुर का हुक्म ना मनने ओ मनमुख अज्ञान मुठा दुखमाया उस अंदर कूड़ कूड़ कर बुझे अणहोंदे झगड़े दईये उस दे गल पाया ओ गल भरोसी करे बो तेरी उस दा बोलिया किसे ना पाया ओ कर कर हंडे जोरन दुहागन उस नाल मोजोड़े उस पी लक्षण लाया गुरमुख होए सो अलिपतो वरते उस दा पास छड गुर पास बह जाया जो गुर गोपे अपना सो पला नाही पंचो उन ला मूल सब गवाया पहला आगम निगम नानक आग सुनाए पूरे गुर का बचनी ऊपर आया गुर सिखा वड्याई भावे गुर पूरे की मन मुखा ओ वेला हथ ना आया पौड़ी सच सच्चा सबदू वड्डा है सो लय जिस सतगुर टिके सो सतगुर जे सच ते आएगा सच सच्चा सतगुर इके सोई स गुर पुरख है जिर पंजे दूध कीते वस शिके जे बिन सतगुर सेवे आप गणाए दे तिन अंदर कूड़ फिट फिट मोह फिके ओए बोले किसे ना पावनी मोह काले सतगुर ते चुके श्लोक महला चौथा हर प्रभु का सब खेत है हर आप कृष्णा नी लाया गुरमुख भगस जमाइयन मन मुखी मूल गवाया सब को बीजे अपने पले नू हर पावे सो खेत जुमाया गुरसिखी हर अमृत बीजया हर अमृत नाम हर अमृत पाया जम चूहा कृष्णित कुरकदा हर करते मार कढाया किरसाणी जम्मी पाओ कर हर बोल बगस जुमाया तिनका काड़ा अंदेसा सब लायोन जिलनी सतगुर पुरख ते आया जन नानक नाम आराध्या आप तरया सब जगत तराया महला चौथा सारा दिन लाल चेटिया मनमुख हो रे गल्ला राती उगे दबिया नवे सो सब ठिल्ला मन मुखा दे सिर जोरा अमर है ने देवे फला जोरा दा आख्या पुरख कमाम दे से अपवित अमेद खला कामया पेक सुध नर से जोरा पुछ चला हर गुर के आख्या जो चले सो सद पुरख फल फला जोरा पुरख सब आप हो पायन हर खेल सब खिला तब तेरी बंत बनावनी नानक फल फला पौड़ी तू वे प्राओ अथाओ है अतुल क्यों तुलिये से बड़पागी ये तुद ते आए दे जिन सतगुर मिलिये सतगुर की बाणी सत स्वरूप है गुरबाणी बणिये सतगुर की रिसे होर कच पिच बोल दे से कूड़ियार कूड़े चढ़ पड़िए ओ न अंदर होर मुख होर है बिख माया नू जगमर दे करिए श्लोक महला चौथा सतगुर की सेवा निर्मली निर्मल जन हो सो सेवा काले जिन अंदर कपट विकार झूठ ओए आपे सच्चे वक कढे जनु माले सच्चा सिख बै सतगुर पास कालन कूड़ियार ना लभनी किते थाए पाले जिन्ना सतगुर का आख्या सुखावे नाही तिना मोह भलेरे फिरे दईये गाले जिन अंदर प्रीत नहीं घर केरी से किचरक वेराइयन मनमुख बेताले सतगुर नू मिले तू अपना मन थाए रखे ओ आ वरते अपनी वत नाले जन नानक इकना गुरमेल सुख देवे एक आपे वख कढे ठगवाले महला चौथा जिन्ना अंदर नाम निदान घर तिनके काज दईगे अंधेरास तिन चूकी मोहता जी लोकन की हर प्रभ अंग कर बैठा पास या करता वल
ਤਾਂ ਸਭ ਕੋਵਲ ਸਭ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਕਰੇ ਸਾਬਾਸ ਸਹੋ ਪਾਸਾਓ ਸਭ ਹਰਕਾ ਕੀਆ ਸਭ ਜਨ ਕੋ ਆਏ ਕਰੇ ਰਹਿ ਰਾਸ ਗੁਰਪੂਰੇ ਕੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹਰ ਵੱਡਾ ਸੇਵ ਅਤੁਲ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਗੁਰਪੂਰੇ ਦਾਨ ਦੀ ਹਰ ਨਿਚਲ ਨਿਤ ਬਖਸੇ ਚੜੇ ਸਵਾਇਆ ਕੋਈ ਨਿੰਦਕ ਵਡਿਆਈ ਦੇਖ ਨਾ ਸਕੇ ਤੋ ਕਰਤੇ ਆਪ ਪਚਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਬੋਲੇ ਕਰਤੇ ਕੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਪੌੜੀ ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਅਗਮ ਦਿਆਲ ਹੈ ਵੜਦਾ ਤਾ ਦਾਣਾ ਤੂੰ ਜੇਵੜ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੋ ਦਿਸ ਨਾ ਆਵਈ ਤੂੰ ਹੈ ਸੁਗੜ ਮੇਰੇ ਮਨ ਪਾਣਾ ਮੋਹ ਕੁਟੰਬ ਦਿਸ ਆਮਦਾ ਸਭ ਚੱਲਣ ਹਾਰਾ ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਜੋ ਬਿਨ ਸੱਚੇ ਹੋਰ ਚਿੱਤ ਲਾਏਂਦੇ ਛੇ ਕੂੜਿਆਰ ਕੂੜਾ ਤਿਨ ਮਾਣਾ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਧਿਆਏ ਤੂੰ ਬਿਨ ਸੱਚੇ ਪਜ ਪਜ ਮੋਏ ਅਜਾਣਾ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਅੱਗੋਂ ਦੇ ਸਦਭਾਉ ਨਾ ਦਿੱਚੈ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇ ਆਖਿਆ ਕੰਮ ਨਾ ਆਵੇ ਆਦਜ ਫਿਰੇ ਮਨਮੁਖ ਵਿਚਾਰਾ ਗੱਲੀ ਕਿਉਂ ਸੁਖ ਪਾਵੇ ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੋ ਕੂੜੀ ਆਵੇ ਕੂੜੀ ਜਾਵੇ ਜੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਰ

लोभ मोह संग साधा पखे पर कृपा प्रवे अपनी हर आप परखे नानक चलतना जापनी ओ सके ना लखे। सलोक महला पंजवा नानक सोई दिन सो सुहावड़ा जित प्रवे आवे चित जित देन विसरे पार ब्रह्म हिट पलेरी रुत महला पंजवा नानक मित्राई ते स्यो सब किश जिसके हाथ पुमित्रा से ही कंडी है एक वेखना चल है साथ पौड़ी अमृत नाम निधान है मिल पी वो पाई जिस सिमरत सुख पाई है सब तिखा बुझाई कर सेवा पार ब्रह्म गोर ओख रह ना काई सगल मनोरथ पुन्या अमरा पद पाई तुल जेवड़ तू है पार ब्रह्म नानक सरनाई। सलोक महला पंजवा डिठड़ो हबठाए ऊन ना काई जाए नानक लद्दा तिन सुवाओ जिन्ना सदगुर पेटिया महला पंजवा दामनी चमतकार त्यों वरतारा जग खे वथ सुहावी साए नानक नावज पंदो तिस्तनी पौड़ी सिमरत सातर सोध सब किने की मना जानी जोजन पेटे साध संग सो हर रंग माणी सच नाम करता पुरख ए रतना कानी मस्तक होवे लिखया हार सिमर पुराणी तुसा दिचे सच नाम नानक मेहमानी। सलोक महला पंजवा अंतर चिंता नैनी सुखी

केवल राम। गौड़ी कबीर जी, नगन फिरत जाओ पाईए जोग, बन का मिर्ग मुक्त सब होग, क्या नांगे क्या बाधे चाम, जब नहीं चीन सयात्म राम, हरहाओ मूड मुडाए जो सिद्ध पाई, मुक्ति पेड़ न गई आकाई, बिंद राख जाओ तरिये पाई, खुसरे क्यों ना परमगत पाई, कहो कबीर सुनो नर पाई, राम नाम बेन किन गद पाई। गौड़ी कबीर जी, संध्या प्रात स्नान कराही, ज्यों पै दादुर पानी माही, जाओ पै राम राम रत नाही, ते सब धर्म राय कै जाही रहाओ, काया रत बहुरू पर चाही, तिन को दया सुपने पी नाही, चार चरण कह बहु अगर, साधु सुपावे कल सागर, कहो कबीर बहु काय करी जय, सर्ब छोट महारस पी जय, कबीर जी गौड़ी क्या जप क्या तप क्या व्रत पूजा, जा कर दे पाओ है दूजा, रे जन मन माधव स्यों लाई है, चतराई ना चतर पुज पाई है रहाओ, पर हर लोभ हर लोकाचार, पर हर काम क्रोध अहंकार, कर्म करत बदे अमेव, मिल पाथर की कर ही सेव, कहो कबीर भगत कर पाया, ओले पाए मिले राग राया। गौड़ी कबीर जी, गर्भवास में कुल नहीं जाती, ब्रह्म बिन ते सब उत्पाती।

सुख मांगत दुख आगे आवे, सो सुख हमो न मांगया पावे। बिखिया अजो सुरत सुख आसा, कैसे हुई है राजा राम निवासा। रहाओ इस सुखते से ब्रह्म डराना, सो सुख हमो साज कर जाना। सनकादक नारद मुन सेखा, तिन पी तन मैं मन नहीं पेखा। इस मन को कोई खोजो पाई, ता छूटे मन कहां सुमाई। गुर प्रसादी जय दो नामा, भगत के प्रेम इन ही है जाना। इस मन को नहीं आवन जाना, जिसका परम गया तिन साज पछाना। इस मन को रूप न रेख्या काई, हुक्मे होया हुक्म बूझ सुमाई। इस मन का कोई जाने पेओ, ए मन लीन पय सुख देओ। जियो एक अर सगल शरीरा, इस मन को रब रहे कबीरा। गौड़ी गुवारेरी अहे निस एक नाम जो जागे, केतक सिद्ध पय लिव लागे। रहाओ साधक सिद्ध सगल मुनहारे, एक नाम कल्प तरतारे। जो हर हरे सो होए न आना, कहे कबीर राम नाम पछाना। गौड़ी पी सोठ पी रे जी न लज, लाज तोय नाही। हर ताज कद काहू के जाही। रहाओ जाको ठाकुर ऊंचा होई, सो जन पर कर जातन सोही। सो साहेब रहा पर पूर, सदा संग नाही हर।

या तत लियो शरीर बिचारी, कहे कबीर ठग सो मन मानिया, गई ठगौरी ठग पहचानिया। आ मोको पए राजा राम सुहाई, जन्म मरण कट परम गद पाई। हरहाओ साधु संगत दियो रलाए, पंच दूत ते लियो छिड़ाए। अमृत नाम जपो जब रसना, अमोल दास कर लीनो अपना। सतगुर कीनो पर पुकार, काढ लीन सागर संसार। चरण कमल स्यों लागी प्रीत, गोविंद बसे निता नदचीत। माया तप्त बुझिया अंग्यार, मन संतोख नाम आधार। जल थल पूर रहे प्रस्वामी, जत पेखो तत अंतर जामी। अपनी भगत आप ही दरड़ाई, पूर्व लिखत मिलिया मेरे पाई। जिस कृपा करे जिस पूर्ण साज, कबीर को स्वामी गरीब निवाज। जल के सूतक थल के सूतक, सूतक ओपत होई। जन्मे सूतक मुगे फुन सूतक, सूतक परज बगोई। कौरे पंडिया कौन पवीता, ऐसा ज्ञान जपो मेरे मीता। रघाओ नयनो सूतक बयनो सूतक, सूतक श्रवनी होई। उठत बैठत सूतक लागे, सूतक परे रसोई। फासन की बेद साव को जाने, छूटन की एक कोई। कहे कबीर आराम हृदय बेचारे, सूतक तिने ना होई गौड़ी। झगड़ा एक नबे रहो राम, जो तुम अपने जन सो काम। हरहाओ यो मन बड़ा के जासो मन मानिया, राम बड़ा कै रामे जानिया। ब्रह्मा बड़ा के जास उपाया, वेद बड़ा के जाते आया। कहे कबीर हो पया उदास, तीर्थ बड़ा के हर का दास। अराग गौड़ी चेती, देखो पाई ज्ञान की आई आंधी। सबे उड़ानी प्रम की टाटी, रहे ना माया बांधी। हरहाओ दुचित्ते की दो थून गिरानी, मोह बलेंडा टूटा। तिसना शान परी तारी ऊपर, दुर्मद पांडा फूटा। आंधी पाचे जो जल बरखे, ते तेरा जन पीना। कहे कबीर मन पया परगासा, उदय पान जब चीना। गौड़ी चेती एक ओंकार, सदगुर प्रसाद। हर जस सुने ना हर गुण गावे।

चल ले आप गए और न हूँ काले शाड़ को चर्चा आन न जाने ब्रह्मा हूँ को कयो न माने आप गए और न हूँ खोवे आग लगाए मंदिर में सोवे आवर नभस्त आप है काने तिनको देख कबीर ले जाने राग गौड़ी बैरागण कबीर जी एक ओंकार सदगुर प्रसाद जीवत पितर ना माने को मुए सराध कराही पितर पी बपरे को क्यों पावे कौआ कुकर खाही मोको कुशल बतावो कोई कुशल कुशल करते जग बिनसे।

पूछे ते क्या कहिए, राग गौड़ी पूर्वी। कबीर जी एक ओंकार सदगुर प्रसाद, जय कश आहा ता किश नाही, पंच तत तय नाही, इड़ा पिंगला सुख मन बंदे, ए आवगान कत जाही। तागा टूटा गगन बिरस गया, तेरा बोलत कहां सुमाई, ए संसार मोको अन दिन व्यापे, मोको ओ ना कह समझाई। रघाओ जैवर पंड पिंड तय नाही, रचनहार तय नाही, जोड़न हार उसदा अतीता, ए कही ए किसमाही। जोड़ी जुड़े ना तोड़ी टूटे, जब लग होए बेनासी, ताको ठाकुर ताको सेवक, ओ काहू कह जासी। कहो कबीर लिव लाग रही है, जहां बसे दिन राती, हुआ का मर्म ओही पर जाने, ओ तो सदा अविनाशी। गौड़ी सुरत सिमरत दो कन्नी मुंदा, पर मित बार खिंता, सुन गुफा में आसन बैसन, कल्प विवर्जित पंथा। मेरे राजन मैं बैरागी जोगी, मर्तना सोग बेयोगी। रहाओ खंड ब्रह्मांड में सिंगी, मेरा बटुआ सब जग पसमा तारी, ताड़ी लागी त्रिपल पलटी है, छूटे होए पसारी। मन पवन दे तूंबा करी है, जुग जुग सार दसा जी, फिर पीतंती तूट सुनाही। अनहद किंगुरी बाजी, सुन मन बगन पए गए पूरे, माया डोल ना लागी। कहो कबीर ता कहो पुनरब जन्म नहीं, खेल गयो बैरागी। गौड़ी गज नाव गज दस गज इक्कीस, पुरिया एक तनाई, साठ सूत नवखंड बहत्तर, पाड़ लगो अधकाई। गई बुनामन माहो, कर छोड़े जाए जुलाहो। रहाओ गजी ना मिनिये तोल ना तुलिये, पाचन शेर अठाई, जो कर पाचन बेग न पावे, जगर करे कर गाई। दिन की बैठ खजम की बरकस, ए बेला कते आई, छूटे कुंडे पीगे पुरिया, चलो जलाओ रीसाई। शोशी नली तंत नहीं निकस, नतर रही उर जाई, छोड़ पसार इहां रो बपरी, कहो कबीर समझाई। गौड़ी एक जोत एका मिली, किंबा होए महोए, जित कड़ नाम ना उपजे, हूट मरे जन सोए। सावल सुंदर रामैया, मेरा मन लागा तोहे। हरहाओ साध मिले सिद्ध पाईए, के यो जोग के भोग, दो मिल कार्ज उपजे, राम नाम संजोग। लोग जाने यो गीत है, यो तो ब्रह्म विचार, ज्यो कांसी उपदेश होए, मानस मरती बार। कोई गावे को सुने, हर नामा चित लाए, कहो कबीर संसार नहीं, अंत परमगत पाए। गौड़ी जेते जतन करते डूबे, बल सागर नहीं तारे ओरे, तर्म तर्म करते बो संजम, अंग बुद्ध मन जा रे ओरे, साध ग्राज को दा तो ठाकुर, तो क्यों मनो बसारे ओरे। हीरा लाल अमोर जन्म है, कौडी बदले हारे ओरे। रहाओ तृष्णा त्रिखा पूफ प्रम लागी, हृदय नहे बीचारे ओरे, उन मतमान हिरे ओ मन मागी, गुर का शब्द ना तारे ओरे। स्वाद लुभत इंद्री रस प्रेरे ओ, मद लयत बकारे ओरे, कर्म पाद संतन संगा ने, काष्ट लो उधारे ओरे। तावत जोन जन्म प्रमथा के, आप दुख कर हम हारे ओरे। कहे कबीर गुर मिलत महारस, प्रेम भगत निस्तारे ओरे। गौड़ी काल भूत की हस्तनी मन बौरारे, चलतर चो जगदीश काम सुवाए, गज पद परे मन बौरारे। अंकस सहे ओ शीस, बिखे बाच हर राज, समझ मन बौरारे, निरपय होए न हर पदे मन बौरारे।

इस माटी में पवन सुमाया, झूठा प्रपंच जोर चलाया, किन्हु लाख पांच की जोरी, अंत की बार गगरिया फोरी, कहे कबीर एक नीव सारी, खिन में बिनस जाए अंकारी, गौड़ी राम जपो जी ऐसे ऐसे, त्रू प्रहलाद जप्यो हर जैसे, दीन दयाल परोसे तेरे, सब परिवार चढ़ाया बेड़े, रहाओ जत पावे ता हुक्म मनावे, इस बेड़े को पार लंघावे, गुर प्रसाद ऐसी बुद्ध समानी, चुग गई फिर आमन जानी, कहो कबीर भज सारंग पानी, उरवार पार सब एको दानी, गौड़ी नावी जोन छाड़, जो जग में आयो लागत पवन खसुम बिसरायो, जियरा हर के गुना गाओ रगाओ, गर्भ जो में उर तब करता, तो जठर अग्न में रहता, लगत रसी जोन प्रमे आयो, अब के शुड़के ठौर न ठायो, कहो कबीर पर सार्ग पानी, आर्त दिसे जात न जानी, गौड़ी पूर्वी सुर्गवास ना बाची है, डरकिन नरक निवास, होना है सो होई है, मने न की जे आस, रमैया गुण गाइये, जाते पाइये परम निधान रखाओ, क्या जप क्या तव संजमो, क्या व्रत क्या स्नान, जब लग जूत न जानिए, पाओ भगत भगवान, संपे देख न हरखिए, विपत देख न रोए, जो संपे त्यो विपत है, विद ने रचिया सो होए, कहे कबीर अब जानिया, संतन हृदय मजार, सेवक सो सेवा पले, जे कड़ बसे मुरार, गौड़ी रे मन तेरो कोई नहीं, खिंच ले जिन पार, बिरख बसेरो पंख को, तैसो यो संसार, राम रस पिया रे, जे रस बिसर गए रस और रखाओ, और मुए क्या रोई है, जो आपा थिर ना रखाए, जो उपजे सो बिनस है, तो करोवे बलाए, जय की उपजी तै रची, पीवत मर्दन लाग, तय कबीर चित चेतया, आराम सिमर बैराग, राग गौड़ी पंथ निहारे कामनी, लोचन परी ले उसासा, और ना पीजे पग ना खिसे, हर दर्शन की आशा, उड़ो ना कागा कारे, बेग मलीजे अपने राम प्यारे रहो, कहे कबीर जीवन पद कारण, हर की पगत करीजे, एक आधार नाम नारायण, रसना राम रवीजे, राग गौड़ी ग्यारहवीं, आस पास कण तुरसी का बिरवा, माज बनारस गाऊ रे, हुआ का स्वरूप देख मुई ग्वारन, मोको छोड़ न आऊ न जाहू रे, ओहे चरण मन लागो सारंग तार, सो मिले जो बड़ भागो रघाओ, बिंद्राबान महरन मनोर, कृष्ण चिरावत गाऊ रे, जाका ठाकुर तुई सारंग तार, मोहे कबीरा नाऊ रे, गौड़ी पूर्वी बारहवीं, बेपल बस्तर केते हैं पैरे, क्या मन बदे बस, कहां पया नर देवा तोखे, क्या जल बोरे ज्ञाता, जियरे जाएगा मैं जानना, आगत समझ ए आना, जब जब देखो बौर ना पेखो, संग माया लपटा ना रखाओ, ज्ञानी त्यानी ब उपदेसी, यो जग सुग लो तंडा, कहे कबीर एक राम नाम बेन, या जग माया अंधा, गौड़ी बारहवीं मारे छाडो परम, पलट होए नाचो, या माया के डांडे, सूर के सन्मुख रन ते डर पे, सती के सांचे फांडे, डग मग छाड़ रे मन बौरा, अब तो जरे मरे सिद पाइये, लीनो हाथ संधौरा रहाओ, काम क्रोध माया के लीने, या फिर जगत बिगूता, कहे कबीर राजा राम न छोड़ो, सगल ऊंच ते ऊंचा गौड़ी तेरहवीं, फुरमान तेरा सिरे ऊपर, फिर न करत भी चार, तुही दरिया तुही करिया, तुझे ते निस्तार, बंदे बंदगी एक तैयार, साहिब रोज तरो के प्यार रखाओ, नाम तेरा आधार मेरा, जो फूल जई है नार, कहे कबीर गुलाम कर का, जियाए पावे मार, गौड़ी लग चौरासी जी जोन में, प्रमत नंद बोथा कोरे, भगत हेत अवतार लियो है, आग बड़ो बपरा कोरे, तुम जो कहत हो नंद को नंदन, नंद सो नंदन का कोरे, तरण आकाश दसो दस नाही, तब वो नंद

करे प्रगास, हृदय कामल में हर का वास, गुर मिल दो एक सम तरे, उर्द पंकले सुधा करे, बृहस्पति दिखिया देव बिखाए, तीन देव एक संगलाए, तीन नदी ते त्रिगुटी नागे, अहस कसमल तो वे नागे, सुकृत सहारे तो ए व्रत चढ़े, अंत ने आप स्यों लड़े, सुरखी पंचो राखे सबे, तो दूजी दृष्ट न पैसे कबे, थावर थिरकर राखे सोए, जोत दी वट्टी कड़ में जोए, बाहर पीतर पया परगास, तब हुआ सगल कर्म का नास, जावला कट में दूजी आन, तौलो महल ना लाभे जान, रमत राम स्यों लागो रंग, कहे कबीर ता निर्मल अंग, राग गौड़ी चेती बाणी नाम दियो जियो की, एक ओंकार सदगुर प्रसाद, देवा पान तारियले, राम कहत जन कसना तरे, रघाओ तारियले गनका बिन रूप कुबजा, ब्याल अजामल तारियले, चरण बदक जन तेऊ मुक्त पहे, औ बल बल जिन राम कहे, दासी सो जन बिदर सुदामा, उग्रसैन को राज दिए, जापहीन तपहीन कोलहीन क्रमहीन, नामे के स्वामी तेऊ तरे, राग गौड़ी रविदास जी के पदे, गौड़ी गुवारेरी एक ओंकार, सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद, मेरी संगत पोत सोज दिन राती, मेरा कर्म कुटिलता जन्म कुभांति, राम गुसैया जी के जीवना, मोहे नाम सारो मैं जन तेरा, रहाओ मेरी हरो विपत जन करो सुपाई, चरण ना छाडो शरीर कल जाई, कहो रविदास परो तेरी सांबा, बेग मिलो जन करना बिलंबा, बेगमपुरा शहर को नाओ, दुख अंधो नहीं तेठाओ, ना तस्वीस खिराज ना माल, खोब ना खता न तरस जवाल, आ मैं खूबतन गए पाई, ऊहा खैर सदा मेरे भाई, रघाओ कायम दायम सदा पातशाही, दो मना सेम एक सो आही, आबा दान सदा मशहूर, ऊहा गनी बसे मामूर, त्यों त्यों सैल करे जो पावे, महरम महल न को अटकावे, कहे रविदास खरा चुमारा, जो हम सहरी सो मीत हमारा, एक ओंकार सदगुर प्रसाद, गौड़ी बैरागन रविदास जियो, काट आव काट डूगर कणा, एक निर्गुण बैल हमार, रमैये सो एक बेनती।

मोसो को ना कह समझाए, जाते आवा गम बिलाए, रहाओ बौद्ध धर्म न रूपी है, करता दिसे सब लोए, कम कर्म ते छूटी है, जे साधे सब सिद्ध होए, कर्म अकर्म बिचारी है, शंका सुन वेद पुराण, संसा साध हृदय बसे, कौन घेरे अवमान, बार उदक पखारिये, कर पीतर बेबद बेकार, शुद्ध कमन पर होए बो, सुज कुंचर वेद व्यवहार, राव प्रगास रजनी जसा गात

नदर करे जो कुछ करना सो कर रहा अवरण करना जाई जैसा वर्ते तैसो कही है सब तेरी वड्याई काल कलवाली माया मद मीठा मन मतवाला पीवत है आपे रूप करे बो भांति नानक बपड़ा एव कहे आसा महला पहला वाजा मत पखाव जपाओ होए आनंद सदा मन चाओ एह भगत एहो तपताओ ए तरंग नाचो रख रख पाओ पूरे ताल जाने साला और नचना खुशियां मन माह हरहाओ सत संतोख वजे दोए नाल पैरी वाजा सदा निहाल राग नादनी दूजा पाओ ए तरंग नाचो रख रख पाओ पौ फेरी होवे मन चीत बहद्या उड़द्या नीता नीत लेटन लेट जाने तन स्वाहो ए तरंग नाचो रख रख पाओ।